उसी इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Hey, RJ Rebecca, still saying a very warm good morning. ये आवाज़ सुनो भाई, जाके गूंज के आ रही है आवाज़ में, कुछ मसला है बड़ा सख्त वाला. साहिल मुस्कुराए नहीं. अस्सलाम वालेकुम. आप बोले
1: जी. वालेकुम अस्सलाम. मेरी आवाज में आपको कोई इशू नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने अपने देखें, एक तो उम्र का तकाजा आज पकड़ा गया.
0: इधर ही रुको.
1: और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात मेरे साथ तो नहीं हुआ करते, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली एक्सपायरी के करीब.
0: आई डोंट नो, अजीब सा ब्लास्ट कर रहा है ऐसे, जैसे किसी खाली कमरे से गूंज के आवाज आती है. नहीं आ रही, सही आ रही है. ये हेडफोन चेंज कर दो.
1: अच्छा, ये आप मुझे दिखाएं जरा, आप मुझे जरा हेडफोन दिखाएंगे, मैं आपको बताता हूं.
0: हां हां, क्योंकि यहां पर तो चीजें, ये इसकी वजह से तो नहीं है. जरा ये देखिए, आप फर्क पड़े.
1: नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं, इसको खोले तो सही ना.
0: अरे ये
1: बंद करें वापस.
0: ये
1: हेडफोन नीचे सही लगे नहीं है,
0: मतलब मैं वही कह रही हूं, देयर इज अ प्रॉब्लम. हां, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
1: सेट करें.
0: नहीं, सही पाया उसने, बिल्कुल ठीक लगे हमें. हाँ, बिल्कुल.
1: थोड़े से पिन को इन आउट करेंगी तो उससे थोड़ा बेहतर होगा. इसके लिए जान चाहिए.
0: ये देखें,
1: बंद हो गया.
0: अब देखें,
1: अब वापस थोड़ा सा बाहर करें इसको, एक जगह पे अटकेगा ये.
0: अब देखें आवाज आ रही है.
1: नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है. मेरे ख्याल से इसको रहने देते
0: हैं, ये कोई मामला खराब हो गया.
1: ये इसीलिए निकाल
0: के, मेरी आवाज ठीक आ रही है, इनको तो छोड़ ही दो. खैर है मेरे तो.
1: हाँ जी, मुझे तो छोड़ ही दें, मुझे तो छोड़ ही चुकी है दुनिया सारी, तो आप भी छोड़ दें.
0: तौबा साहिल, आपको मैं बताती हूँ, कल एक लिसनर, अस्सलाम वालेकुम लिसनर.
1: हां जी,
0: आज रिबेका अब्दुल
1: ओपनिंग शुरू कर देते आते ही.
0: आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि मेरे हेडफोन में मुझे जो मेरी आवाज आ रही थी ना, इट वाज लाइक कि आप किसी खाली हॉल में खड़े हैं.
1: हां जी,
0: आपके वो हाथ में वो तार वाला लंबा सा माइक नहीं होता, वो आपने
1: पकड़ा था,
0: जब वो एक आवाज आती की और लोग कार पकड़ लेते, भाई ये कौन बोल रहा है.
1: सही
0: जी, अपने एंड से ऐसी आवाज आ रही थी.
1: ठीक हो गया.
0: लिसनर्स बेचारे का ड्राइव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे.
1: ठीक हो गया.
0: घर वाले तो चलो स्विच ऑफ कर सकते हैं, कोई अदर चैनल को ट्यून
1: कान बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं घर वाले तो. बेचारे लोगों का क्या कसूर.
0: एनी हाउ जी, मुझे कल एक लिसनर का फोन आया, मैं नाम उनका भूल गई, बड़े प्यारे से हमारे लिसनर है, रेगुलरली कॉल करते हैं, वो मुझे कहते हैं आप साहिल को तंग करती हैं.
1: और आपको पता, मैं आपको कह रहा था कि कल किसी ने मुझे मैसेज करके ये बोला कि आप लोग वीकडेज में शो नहीं करते. फिर मैंने कहा कि यार एक वीकडेज ही है जिसमें हम काम करते हैं तो हमें वो तो करने दे. आप वर्किंग डे में हम वो कर सकते हैं. फिर उन्होंने ये भी बोला कि आप दोनों का प्रोग्राम कोई लड़ाई झगड़ा अपनी बहस चल रही होती ना, तो ये सुनने के बाद हम रिलैक्स हो जाते. क्या दुनिया में और भी कुछ पागल है जो खुश रहते हैं, मतलब ये कहने का मकसद तो यही है.
0: मुझे नहीं, मेरा दिल चाह रहा था, मुझे एक जगह ट्रैवल करना था, और मैं कहती मैंने कहा यार अगर मेरा ट्रैवल प्लान हो गया, व्हाट विल आई डू, कि मुझे दो हफ्ते, ज्यादा नहीं, दो हफ्ते, 14 दिन ही बनती है वैसे तो, देखा तो 4 शोज है. मैंने कहा चले जाएंगे. चलो आप देखें, आप एक्चुअल में अल्लाह मियां से जो विश करते हैं ना, या आपके कोर हार्ट में विश होती है वो गॉड पूरी करता है. वो मेरा शेड्यूल ऐसा बना है कि एवरीथिंग इज अ वर्किंग डे. मैंने कहा वाओ दैट्स अमेजिंग, क्योंकि वो आदत हो गई है. आदत बदली ना जाए तो वो जरूरत
1: बन जाती
0: है. अब ये शो इसमें देखिए, अब देखिए, कभी कभी ऐसा था ना, मेरे घर का माहौल, मेरे जिस जगह पे मैं जाके काम करती हूँ, इतना डिसेंट सोबर सा माहौल है, लेकिन जब मैं वीकेंड्स पे आके यहाँ आपके पास बैठती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि लोगों की और भी एक क्लास है.
1: हमें चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, हमें सुनने वाले लोग मौजूद हैं, प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं. अच्छा, मैं एक और बात भी यहाँ पे बता दूं, ऑब्वियसली 101 तो हमारा जो है वो मेंटोर ही है, हम शुरू से इसके साथ काम कर रहे हैं. लेकिन अगर कल को कभी 101 पे खुदा ना खास्ता हम नहीं भी होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो ये शो इसी तरह ही आपको मिलेगा, किसी भी चैनल से मिलेगा. लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, कुछ सुन ले, अगर सुनना है किसी ने तो सवाई मैम सदफ के, क्योंकि वहां से तो जाल आ जाएगी हमें सही वाली. तुम लोग को बताती हूँ, तुम्हारी हड्डियां तोड़ती, तुम जरा गुजरो. शुक्र है मैं मैम की गली में नहीं रहता, मैम की गली से 2 गलियां दूर हो गया हूँ, तो जरा ईजी हो गया. इसके लिए मैंने एक मासी रखी हुई है जो सुबह 8 बजे आ जाती है, आज वो थोड़ी सी लेट होगी, नो प्रॉब्लम. यार आज आप बहुत कमजोर लग रही है मुझे, आज आप मुझे बहुत ही पतली लग रही है, आपका मुंह तो मुझे बहुत ही छोटा लग रहा है. अच्छा, इसको ना एक अजीब सा वो पड़ गया कि जितनी मैं पतली दिखूंगी मैं स्क्रीन पे अच्छी दिखूंगी,
0: नहीं,
1: और इसने मुझे भी इसमें डाल दिया. 3 दिन से मैं एक्सरसाइज और वॉक पे दिन रात लगा हुआ. हाँ, या इट्स फैक्ट, आई नो.
0: मुझे लिटरली लोगों ने कहा, मैं आपको इंटरेस्टिंग ऑन एयर ही ना आपको एक मैसेज दिखाती हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि ये देखिए जी, ये मुझे किसी ने क्या लिखा है, नाइस डीपी सेम लुक चाइनीज.
1: कल मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी चाइनीज वाली, जिसमें खाना लेके आती है और आप उसे कुछ कहती है, बस थोड़ा सा वो थोड़ा क्लिप देखा था, लेकिन ये कि मुझे बहुत मजा आया वो देख के, बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस बनाई हैं आप लोगों ने।
0: ओह दैट वाज सो फन, कितना मजा आया था हमें ये करते हुए। खैर मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ, दुबला पतला होने का ना मुझे नहीं पता था, अब मैं अपनी कुछ ज्यादा पुरानी पिक्चर्स नहीं, मैं अपनी सिर्फ 1.5 साल पुरानी तस्वीरें और वीडियोस देख रही हूँ और अभी देख रही हूँ, मुझे वो लग रहा है मैं अपनी ही बड़ी बहन थी।
1: आप पता मैं आपको बताऊं, आप अपनी बड़ी बहन मुझे कहां लगी हैं? जब मैंने और आपने एक दो टिकटॉक्स बनाए थे इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश वाले, उसमें और अब की रिबेका में बहुत फर्क है। पहली चीज़ें वो बहुत ही घर घराना गृहस्थी बेलन वाली माई थी आप, अब जो है आप एक बाकायदा मॉडर्न कल्चर की एक को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को आप बड़े बड़े लेवल पर प्रमोट कर रही हैं, चीजें कर रही हैं, तो वो वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो ग्रूम हो जाता है।
0: मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई वाज राइजिंग पाकिस्तान तौसीक के साथ, तो ऑफ कोर्स आपको एक पता नहीं होता क्योंकि टेलीविजन का जो उठना बैठना, मैं अच्छे ही कपड़े पहनती थी, लेकिन टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कपड़ों का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, वो ज्यादा फ्लोरल में हम नहीं जाते हैं।
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है, क्योंकि वो टेलीविजन में एट वंस आपको बहुत से फ्लोरल कलर्स नजर आते हैं तो आपकी आंखों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपने देखा ज्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं वो विद प्लेन कलर्स और सॉलिड कलर्स में जाते हैं, है ना? तो वो उसकी कुछ एक एस्थेटिक होती है, हर जगह का अपना एक एम्बियंस होता है जिसको आपने कैरी करना होता है, वो उस वक्त पता नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने सीखा, अपने पे काम किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बाकायदा कहती हूँ मैं ऐसी नहीं थी, अब मैं ऐसी हूँ। ये बात तौसीक साहब ने मुझे कही थी, तौसीक कहते हैं कि रिबेका ने अपने आप को ग्रूम किया है और हम सब ग्रूम करते हैं, सबको आप देख ले, सब ग्रूम करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, आई डू एक्सेप्ट इट कि हाँ मैंने ग्रूम किया है। मैं आज शायद साहिल से, अब जब मैं वापस आई थी तो साहिल, हमारी मुलाकात 2.5-3 साल बाद हुई थी ना, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर चली गई थी, तो ऑफकोर्स हमारा मुलाकात नहीं थी, फोन पे तो हम लोग रबते में होते थे। व्हेन आई केम बैक एवरीबडी, आप सोचें कि तौसीक साहब, और ये मैं इनका नाम इसलिए नहीं कि इन लोगों को, ऑफकोर्स हमारे बहुत से सुनने वाले तौसीक साहब को कौन नहीं जानता, एवरीबडी इज लाइक रिबेका यू आर सो डिफरेंट, तुम चाइनीज दिख रही हो, क्यों दिख रही हो, मैं शक्ल तो रिबेका की वही है ना, तो मेरे पाकिस्तानियों वाले हैं, पहले मैं बिल्कुल पाकिस्तानी लोग कहते थे दिखते हो अब जी, क्यों? क्योंकि मैं वहां पर उन लोगों का रहना सहना सीख कर आई। और वो आप कह रहे हैं, मुझे अगर कोई कहता है ना, हमारे यहाँ पर ना लोगों को जबान वो अल्फाजों का इस्तेमाल करना नहीं आता, हाँ कितनी कमजोर होगी हो, क्यों?
1: आजकल ये आपने देखा होगा, एक वीडियोस भी चल रही है कुछ इस तरह की, एक बंदा इंग्लिश में बोलता है और साथ उसको उर्दू में या पंजाबी में बताया जाता है,
0: है ना? किसका मायने है,
1: तो वो उसमें ये कहेगा यू लुक सो ब्यूटीफुल, तो वो अगला उसको बताता है तू तो लग ही नहीं रहा तू, है ना? मतलब हमारे ये वाला बड़ा है ये चीज और है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे खुशी पता है किस बात की होती है कि आपने ना अकेले ने ये सफर काटा है।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: बांदा दूध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ अपने बच्चे नू पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दूध पिलाना शुरू कर दियो। पहले 6 महीनों तक बच्चे नू सिर्फ अपना दूध दियो, इत्थों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दूध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दूध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दूध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। यह पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

तो न था, इस घर का फर्क था, कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मादा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। माँ अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू करते वे। पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, एथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तो परहेज करो, क्यों जे माँ ने दुध दा कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफाद आमली पेश कीता गया है।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है। माओ अपने बच्चे नूं पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर दियो। पहले 6 महीनियां तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दियो, इत्थों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीनियां बाद मुनासिब इजाफी गजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वल्लों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन तआवुन जारी रखेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को उसके हिस्से के पानी से महरूम करने की कोई भी कोशिश इलाकाई अमन पर गहरे असरात मुरतब करेगी। मारूफ गुलूकार परवेज मेहदी की 21वीं बरसी आज मनाई जा रही है। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल कल के स्कोर 81 रन 3 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन तआवुन जारी रखेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे और बैन अल-अक़वामी कानून के तहत अपने कानूनी हुकूक और मुफादात का तहफ्फुज़ करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के दौरे के दौरान इसकी पैदावारी सलाहियतों और मुल्क के दिफाई सनती शोबे में इसके किरदार का जायजा लिया। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल गुज़श्ता रोज के स्कोर 81 रन 3 खिलाड़ी आउट से आज फिर शुरू करेगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 101 हिट्स एफएम का लाहौर स्टेशन और एफएम 101 के लाहौर स्टेशन से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे और आपकी प्रेजेंटर निमरा अरूज। जनाब क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, ज़िंदगी को बहुत बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा फिर से आप लोगों के साथ हूँ एक और छुट्टी के बाद। और उम्मीद करती हूँ जी कि आप लोग भी मेरे साथ साथ होंगे। आज है दिन सैटरडे का और वीकेंड पे मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है 11 से लेकर 1 बजे तक इस प्रोग्राम में, जिसमें जिसको हम कहते हैं लेडीज लाउंज। लेडीज़ लाउंज के नाम से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा, ख़ास तौर पर हम उन टॉपिक्स को, उन बातों को डिस्कस करते हैं जो रेगुलर रूटीन में हम करते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं, झिझकते हैं या उनको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाय हम ये बात कैसे करें, क्यों करें, नहीं नहीं ये बात नहीं होनी चाहिए भाई, क्यों? ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को, दोनों को साथ साथ चलने के लिए बनाया है और उनके इश्यूज़ जो है ना वो डिस्कस करना, उनको रिजॉल्व करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और बहुत अशद ज़रूरत है। इसीलिए जो है ना हम लेडीज़ लाउंज में आते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आते हैं जिसे मेरी वो तमाम बहनें, वो तमाम माएँ, वो तमाम बेटियाँ, वो तमाम ख़वातीन जो किसी मसले का शिकार हो वो सुनती हैं, समझती हैं, कहीं ना कहीं किसी के लिए कोई ना कोई जो है ना वो गुर की बात जिसे कहते हैं ना वो डिलीवर होती है। तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ है मेरे पास आप लोगों के लिए। और छुट्टी क्यों की थी, छुट्टी, अच्छा मैं एडवांस में ही बता देती हूँ इससे पहले कि लोग आके मुझे कहना शुरू कर दें कि जी आप तो बहुत छुट्टियाँ करती हैं, थोड़ी सी मेरी मसरूफियत थी, ठीक है। और सैटरडे को जो है वैसे तो ऑफ होता है, बट मेरा ऑफ नहीं था लास्ट सैटरडे, इसलिए जो है ना मैं नहीं आई थी। और अब चूंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो छोटे बच्चों के जो है ना वो ऑफ होते हैं, बट बड़ी क्लासेस जो है ना उनके ऑफ नहीं होते, जिसकी वजह से मुझे आज भी 6:30 बजे उठना पड़ा है। Oh my God! खैर जनाब बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ, मेरा साथ दीजिएगा। और साथ देने के लिए क्या करना है, आपने जाना है हमारे फेसबुक पर, ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर FM 101 लाहौर का, उस पेज पर जाइएगा, जाकर हमारी पोस्ट पर कमेंट कीजिएगा और शामिल हो जाइएगा मेरे प्रोग्राम में। इसके अलावा जी आप लोग हमें 4471 पर ज्वाइन कर सकते हैं। 4471 पर ज्वाइन किस तरह से करेंगे, आप जाएंगे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे, वहां जाकर लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर। वल जी कुछ सुनना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट कोशिश करूंगी ऑन एयर करूं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपने मुझे नए नए जो लेटेस्ट आजकल गाने चल रहे हैं ना, जो मार्केट में लेटेस्ट म्यूजिक आया हुआ है, आपने मुझे वो बताना है, ठीक है, वो नाम बताने हैं, वो सिंगर्स बताने हैं जिनके गाने बहुत जबरदस्त, बहुत हिट जा रहे हैं, और गाना जो है ना वो थोड़ा सा शो होना चाहिए, स्लो स्लो रोने धोने वाले गाने बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज है सैटरडे, वीकेंड है आज और वीकेंड हम इंजॉय करना चाहते हैं, छुट्टी इंजॉय करनी है जी। मेरे साथ दीजिएगा, मुझे कहते हैं निमरा अरूज। अगर आप लोग इस टाइम उठ गए हैं या उठना चाह रहे हैं, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, अब तो 11:10 हो गए हैं, और मेरा साथ दें। Enjoy this track, I will be right back, stick around to FM 101.

वेलकम बैक वंस अगेन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। 11 बज के हो चुके हैं 17 मिनट्स, मेरा और आपका साथ रहेगा 1 बजे तक लेडीज लाउंज में। जी अभी जब मैं आ रही थी ना तो रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हुई। यूजुअली जो है सैटरडे को इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, बट आज जो है ना मुझे ट्रैफिक ज़्यादा फील हुई। और ऊपर से गर्मी, ओह माय गॉड, गर्मी तो लग रहा है जा ही नहीं रही है, गर्मी लग रहा है एक दफ़ा फिर से वापस आ गई है। और शदीद धूप थी इस वक्त। अगर आप लोग भी कहीं प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, वैसे ही जाने का मतलब है बिला वजह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल मत निकले, लेकिन अगर किसी काम से जाना है तो ऑब्वियसली उसमें हम फिर रोक टोक बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको हम डिले नहीं कर सकते। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर रखिएगा, सनब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ भी आपके लिए मतलब अगर आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, अजीब सा मौसम है, गंदा सा, और आप मतलब कुछ सोच ही नहीं सकते कि यार आपने कहीं जाना है, कोई प्लान करना है, दिल कर भी रहा होता ना तो बंदा गर्मी की वजह से जो है वो घर बैठ जाता है। क्योंकि बाहर निकलना है तो आपको साफ़ सुथरे प्यारे से कपड़े पहनने पड़ेंगे, प्यारा सा तैयार होना पड़ेगा। तैयार हुए बगैर तो ख़वातीन तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही नहीं जाती, और मर्द हज़रात थोड़ा बहुत जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन मर्द हज़रात भी बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अपनी ड्रेसिंग पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो अपनी ड्रेसिंग को वैसे ही ख्याल उसका रखते हैं जिस तरह के लेडीज़ रखती हैं हर चीज़ का, भाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए है, ऐसी स्टिचिंग हो, ये कमीज शलवार हो या ये कपड़ा हो। मींस के कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट नॉर्मली ये होता है कि जी लड़के या करते हैं कि जो 4 दिन पुरानी जीन्स होती है ना वही पहनी, ऊपर से शर्ट पहनी और बस निकल गए। बट भाई अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना चाहिए, वैसे तो अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखना चाहिए, यही फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जब हम किसी के साथ मिलते हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी को भी इंटरेक्शन करते हैं फर्स्ट टाइम पे जो है ना वो यही चीज़ें नोट की जाती हैं, ना चाहते हुए भी नोट की जाती हैं, जो आप जिस तरह से गए होते हैं, आपने जिस तरह से तैयारी की होती है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना कहते हैं जी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब इसमें कितनी सच्चाई है, बाज़ूकात इसमें सच्चाई होती भी है और बाज़ूकात मुझे लगता है कि नहीं होती, डिपेंड करता है जब आप किसी के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा रियलाइज़ होता है कि यार ये बंदा क्या है। बट ये एक अंडरस्टूड सी बात है, एक नेचुरल चीज़ है कि जब आप कहीं जाएंगे, किसी भी जगह पे जाएंगे तो पहली बारी में आपको ही देखा जाएगा, आपके लुक को ही देखा जाएगा कि भाई आपने क्या वेयर किया हुआ है, आप किस तरह से ड्रेसिंग करके आए हैं। ठीक है, पहली दफ़ा में कोई आपके दिल के अंदर तक नहीं पहुंच जाता, पहली दफ़ा जो आपने पहना होता है वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात होती है कि जो आपकी आउटलुक नज़र आ रही होती है पहली दफ़ा में, लोग उसी पर जाते हैं, उसी को सोचते हैं, उसी को माइंड में रखते हैं। तो इसलिए कहीं भी आना जाना होना तो पहली कोशिश आपकी ज़रूर ये होनी चाहिए कि साफ़ सुथरे होकर जाएँ, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। गर्मी है, गर्मी में तो लाजमी शावर लें, अच्छा सा परफ्यूम लगाएँ, अच्छा सा डिओड्रेंट यूज़ करें और उसके बाद कहीं जाएं, ताकि लोग आपसे मिलने के लिए जो है ना वो वाकई बेताब हो, ना कि वो कहें कि नहीं तू पिछों ही रह दूर रह। फासला मेंटेन रखें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे साफ़ सुथरे होकर जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल जी हम बात कर रहे थे गर्मी के हवाले से, जब आप बाहर निकलें तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के ज़रूर जाएं। लेकिन इस गर्मी में ना बिल्कुल दिल नहीं करता, दिल करता है जी घिसे हुए फटे पुराने कपड़े होते हैं ना मेरा ख्याल है हर ही लेडी का ये हाल है घर में कि एक दो जोड़े रखे होते हैं, एक दो टी शर्ट्स रखी होती हैं जिसमें उन्होंने गर्मियां गुजारनी होती हैं। मैं भी यही काम करती हूँ, मैंने भी घर में जो है ना वो एक दो सूट रखे होते हैं, बस उन्हीं को पहनना है, उन्हीं को रगड़े लगाना है। अगर नया कपड़ा कोई आ गया घर में, आपने अच्छा सा सूट हैंग किया होता है लेकिन फटाफट आपने चेंज किया है, वो चेंज करने में इतने पसीने आ जाते हैं, लगता है कि पता नहीं आप कब से जो है ना वो इसी हुलिये में फिर रहे थे। तो दिल नहीं करता, इसलिए कह रही हूँ कि बिला वजह जो है ना वो घर से निकलने को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपने निकलना है तो अपने साथ पानी ज़रूर रखें, पानी की बॉटल ज़रूर रखें, पसीने इतने आ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो सकती है आपको, इसलिए अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें।
लीमू पानी पिए। इस मौसम में वैसे लीमू पानी ही अच्छा लगता है, जो दूसरे हम ड्रिंक्स वगैरह यूज करते हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती। वेल जी, ये गाना जब मैंने पहली दफा सुना था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। फिर सुनते हैं, मेरा साथ दीजिएगा। रोड्स पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको कहूंगी ड्राइव रियली वेरी केयरफुली और मेरा साथ दें। फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 लाहौर का। इसके अलावा जी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं 4471 पर 101 स्पेस अपना नाम अपना मैसेज सेंड कर दें उसको 4471 पर। www.radio.gov.pk हमारा वेबसाइट एड्रेस है। दुनिया के किसी भी कोने पर मौजूद हैं आप, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टिक अराउंड।

0: ठीक है जी, वेलकम बैक. शफकत अली खान मेऊ हमारे साथ मौजूद हैं. और क्या कह रहे हैं जी? कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मेऊ नंबरदार. अच्छा, ओके, लिसनर क्लब कह रहे हैं आपके साथ आपके वालिद साहब शौकत अली मेऊ भी और चचा जी भी सुन रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से सलाम. और बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया. फिरोज आलम जान हैं जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया. वालेकुम अस्सलाम, इतनी प्यारी सी जगह से बैठकर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. और आपने कहा जी नदीम अब्बास का बिस्मिल्लाह करा. ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी रिक्वेस्ट चलाऊं. फिरोज आलम जान, अच्छा वेलकम आप ही. दोबारा भी इन्हीं का मैसेज है और कह रहे हैं जी ऑलवेज नाइस एंट्री, नाइस सॉन्ग प्ले अब्रार उल हक. हाँ जी बिल्कुल, मैंने अब्रार का सॉन्ग स्टार्ट किया था. ओके, आपका शो बहुत अच्छा होता है, हम रूटीन से सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपके शो को, थैंक यू सो मच. रेहाना खान भक्कर, रेहाना खान भक्कर से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. मोहम्मद हफीज़ुर रहमान भक्कर से मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, बाकी तमाम लिसनर्स कहाँ हैं? इतनी देर में आधा घंटा हो गया और सिर्फ मेरे पास जो है ना वो थोड़े थोड़े से कमेंट्स आ रहे हैं. जी जल्दी जल्दी उठ जाइए, अगर आप लोग इस टाइम सो रहे हैं तो जल्दी से उठिए और मेरे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए. मुझे लगता है कि वो छुट्टी की वजह से लोग समझते हैं कि अच्छा इसने आज भी नहीं आना. बस क्या करें जी, कभी कभी जो है ना वो चीज़ें आगे पीछे हो जाती होती हैं. कहते हैं ना हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना चाहिए. कोशिश तो मैं भी पूरी यही करती हूँ कि मैं बैलेंस लेकर चलूँ हर चीज़ को, लेकिन आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं. और अगर ये बैलेंस ख़राब हो आपका आपके ताल्लुकात में, तो मेरा ख्याल है कि मामलात जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं. तो इसलिए हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस में अच्छी लगती है, हर चीज़ जो है वो मतवाजन तरीके से चलाएँ तो अच्छी लगती है. कोई भी चीज़ जो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उस पे अमल करते हुए जो है ना वो हमें अपने ताल्लुकात को भी चलाना चाहिए. और ताल्लुकात को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हम कौन कौन से 7 steps हैं मेरे नज़दीक, ठीक है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू 7 steps कौन से हैं जिनके थ्रू हम अपने कोई भी रिलेशन है, कोई भी हमारा ताल्लुक है, उसको हम बेहतर तरीके से चला सकते हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. इसके अलावा जी आपने एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए. वो क्या है कि जी हम बाज़ूका ख़रीदारी करते हैं, ख़रीदारी करने जाते हैं, तो माइंड में ये होता है कि अच्छा जी बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोच रहे होते हैं कि जैसे कहीं पे सेल लगी है, इंतज़ार में होते हैं कि जी सेल लगी है तो हम जाके ना कपड़े लेकर आएंगे. और बहुत दफ़ा शायद ये बात मैंने पहले भी की होगी कि मैंने अपने खुद कलीग्स को देखा है कि वो जब सेल लगती है ना, एंड ऑफ सीज़न सेल लग रही होती है किसी भी ब्रांड पर, तो वो जाती हैं और वहाँ से अपने नेक्स्ट सीज़न के कपड़े ला के रख लेती हैं, गर्मियों के कपड़े ला के जैसे रख ली हैं, और फिर जब नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होता है साथ ही वो स्टिच करवाए और वो पहन लिए. इसी तरह जब सर्दियों का, क्योंकि गर्मियों सर्दियों की जो सेल है वो गर्मियों में लग रही होती है, तो तबके जो है वो स्टफ़ उठाया और उसको साइड पर रख दिया, तो अपनी तरफ से वो ये चीज़ मुझे लगता है कि वो समझदारी वाली कर रही होती हैं. अब मुझे नहीं मालूम है उसमें कितनी समझदारी है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि कभी कभी आपके साथ कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ कि आपने कोई चीज़ सस्ती समझते हुए ख़रीदी, आप बड़ा इंतजार में थे, आप मार्केट गए हैं, आपने बड़ा मार्केट घूम फिर के कोई चीज ली है और आपको लग रहा है कि आप बड़ी सस्ती चीज ले आए हैं, सस्ता ला के जो है ना वो आपको वाह वाह आपकी हो गई हो कि यार वाह जी वाह बड़ा कमाल चीज लेकर आए हो आप. और इसी तरह कभी कोई ऐसी चीज जो आप महंगी ले आए हैं लेकिन आपको नहीं पता था और उसमें जो है ना आपको हो गया हो लॉस और आपका तरा निकल गया हो, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, इतने महंगी चीज, इतने ज्यादा पैसों का ज़िया, ये कैसे हो गया? कभी कुछ ऐसा हुआ है कि अपनी तरफ से आपने समझदारी का मुजाहरा किया है, सस्ता आपको गले सस्ता आपको अच्छा हो गया हो, सस्ता गले भी पड़ जाता होता है वैसे तो और कभी जो है वो महंगा आप पे रोना पड़ गया हो. कहते हैं वैसे तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, लेकिन बाज़ुकात समटाइम्स ये चीज़ जो है ना वो गलत भी हो जाती होती है. कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपने शौक में सस्ती चीज़ खरीदी हो, सेल से जाके चीज़ खरीदी हो और उसके बाद जाके आप बता रहे हो कि यार वाह जी वाह मैं तो जो है ना वो 5,000 के 2 या 3 जोड़े जूते के ले आए हूँ, खुश हो गए हो आप, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हो, उसके बाद आप कहते हो यार एक ही जोड़ा मैं जूतों का ख़रीद लेता तो मैं फ़ायदे में रह जाता, गलती हो गई, कभी ऐसा कुछ, वो मेरा ख्याल है रेगुलर हो रहा होता होगा, लेकिन फिर भी होता ना अपना अपनी तरफ से सियाने बनने के चक्कर में चीज़ें उलट जाती हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लाइव कॉलिंग सेशन होगा 12 बजे के बाद, उससे पहले आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू और इसके अलावा जी 4471 के थ्रू। अच्छा, मैं इस गाने को थोड़ा सा पॉज करने लगी हूँ क्योंकि घड़ी की सुइयां मुझे कह रही हैं कि आपने बढ़ना है एक अदद छोटू से नन्ने मुन्ने से कमर्शियल ब्रेक की जानेब, और कमर्शियल तो मैंने निकाल के रखा हुआ था लेकिन यस कहाँ गया, ओके लेट मी फाइंड आउट, मैंने निकाला था, बिल्कुल निकाला था, गायब हो गया, नहीं गायब नहीं हुआ, ये रहा। चलें जी हम कमर्शियल प्ले करते हैं, उसके बाद जो है ना आप लोगों के साथ गपशप लगाते हैं, बल्कि ये गाना हमने प्ले करना है, ठीक है? सो स्टिक अराउंड टू एफएम 101, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे कहते हैं निमरा रोज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

All right, welcome back. 11:40 ہو گئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے تعلقات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے. اچھا, ہر بندے کی نا اپنی رائے ہوتی ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے, میں نے جو سیکھا ہے یا یوں کہہ لیں کہ جو میرا ایکسپیرئنس ہے اس میں نا, مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جب آپ کچھ باؤنڈریز طے کر لیتے ہیں نا کسی بھی ریلیشن میں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی سسرالی رشتہ دار ہوں یا مطلب آپ کا کوئی ہسبینڈ وائف ہوں, بہن بھائی ہوں, کوئی بھی ہو, آپ نے کوئی بھی تعلق نبھانا ہے نا, چاہے آپ کا کوئی پروفیشنل تعلق ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ آفیشیل کہیں پہ کام کر رہے ہیں, کوئی آپ کا گروپ ہے, کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ٹیم ورکنگ کرنی پڑ رہی ہے, کوئی بھی جگہ ہے, وہاں پہ نا کچھ باؤنڈریز طے کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, اور وہ باؤنڈریز آپ نے خود طے کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کسی دوسرے کو آپ اتنی ضرورت نہیں دینی ہوتی کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کی پرسنل لائف میں آ کے انٹرفیئر کرے یا پھر وہ آپ کو مینٹلی کوئی سٹریس دے, اس طرح کے معاملات ہوں. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود بھی آپ سکون سے رہیں اور دوسرے بھی سکون سے رہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جی آپ وہ چیزیں, وہ باتیں ساری جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیں پہلے ہی, ٹھیک ہے, وہ باؤنڈریز جو ہے نا وہ پہلے ہی اپنی کلیئر کر لیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو اس میں بہتر طریقے سے تعلقات چلانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا, ایک تو رسپیکٹ, ٹھیک ہے, رسپیکٹ بہت ضروری ہے. کوئی بھی تعلق ہے, آپ نے کسی بھی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں, رسپیکٹ ضرور دیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کے آفس کا ٹی بوائے بھی ہے تو اس کو بھی رسپیکٹ ضرور دینی ہے آپ نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایون جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے ہماری, ہم ان کو بہت سارے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پانی تک نہیں پوچھا جاتا, اور بہت سارے ایسے گھر بھی ہیں جن کو جو وہ بہت اچھا ان کو رکھتے ہیں, ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے بہت خوش ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہر طرح سے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں, صرف اسی لیے کہ ان کا جو جن کے انڈر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں, ان کو وہی رسپیکٹ دیتے ہیں جو ایک انسان کو ملنی چاہیے. اس لیے آپ کہیں بھی ہیں, کسی بھی جگہ پر ہیں, کوئی بھی تعلق آپ کا ہے, کسی بھی طرح کا تعلق ہے, رسپیکٹ ضرور دیں. چاہے آپ کو کوئی کسی بات پہ کسی کے ساتھ آپ کو ڈس ایگری کرنا پڑا ہے, کوئی بھی چیز ہے جو آپ کو آپ کی اختلاف رائے ہو رہا ہے, کہیں پہ بھی رسپیکٹ جو ہے نا وہ آپ نے نہیں چھوڑنی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم کمیونیکیشن کی بات کریں, تو بہت دفعہ نا تعلقات اس لیے بھی خراب ہوتے ہیں کہ ان میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی. کوئی بات ہے, ہم خود سے ازیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو یہی چاہ رہا ہوگا یا چاہ رہی ہوگی یا تو یہ سوچ رہا ہوگا, مطلب اچھا اب اس کا ریئیکشن یہ ہوگا, اس طرح سے ہم ازیوم کرنے لگتے ہیں, چاہے وہ اگلا بندہ اس کے وہم و گمان میں نہ ہو کہ یار یہ بات بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی معاملہ ہے, کوئی ناراضگی ہے, کوئی گلہ شکوہ ہے, کوئی رائے دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ ضرور آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ضرور دیں, ایک دوسرے کو مشورہ ضرور دیں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی میرا, میں یہ چاہ رہا ہوں, یہ چاہ رہی ہوں, ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا تو پھر معاملات حل ہوتے ہیں, پھر آپ کو دوسرے کی رائے کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہا تھا اصل میں وہ بندہ یا بندی, اس سے آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو رسپیکٹ ہے, اس کے بعد کمیونیکیشن بہت ضروری ہے, اس کے بعد اپریسیشن جو ہے نا وہ بڑی مسٹ ہے بھائی. ہمارے یہاں اپریسیٹ کرنے والوں کی بڑی کمی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں لیکن اپریشیٹ بہت کم کرتے ہیں. بہت کم لوگوں کے اندر یہ جگرہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی تعریف کر سکیں, اس بات کی تعریف کر سکیں جو آپ سے بھی زیادہ اچھی ہو اس کے اندر, یا وہ اس کا کام کرنے کا انداز یا اس کی اچیومنٹس جو ہے نا وہ آپ سے زیادہ ہوں. اس چیز کو ماننا, اس چیز کو ایڈمٹ کرنا نا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ بہت کم, یہ میں کہتی ہوں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں نا وہی اس چیز کو مانتے ہیں, اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اپنے ساتھ والے کو, اپنے کو ورکر کو, اپنے کلیگ کو سراہتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ہمارے سے زیادہ اچھا پوٹینشیل ہے اس کے اندر, اس کو نہ گرانے کی ہر بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ یار اس کو کسی طرح جو ہے نا وہ لیٹ ڈاؤن کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے سے آگے نہ چلا جائے. بھائی کوئی کسی سے آگے, جو بندہ مطلب پروموٹ ہو رہا ہے, جو آگے جا رہا ہے, وہ اپنے محنت سے جا رہا ہے,
ठीक है, वो अपने किए से जाएगा। यकीन माने ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी भी जगह पे कोई रेफरेंस के थ्रू किसी वो कहते हैं ना आपको ऑफिस में जाके वो थोड़ी सी चापलूसी थोड़ी सी बटरिंग करनी पड़ती है, आप बिलीव करें इस तरह से जो कोई भी आके आता है ना वो उतना ही जल्दी नीचे भी जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है चीज़ों को कि जो लोग शॉर्टकट लेकर आगे आते हैं वो यकीनन जल्दी नीचे भी जाते हैं, लेकिन जो बंदा या बंदी अपने मेहनत से आगे आता है वो उतनी ही देर उस जगह पे कायम रखता है, वो अपनी उस चीज़ को उस जगह को अपनी अचीवमेंट को मेंटेन रखता है क्योंकि उसने मेहनत की होती है और वो मतलब कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा होता है। जिसको शॉर्टकट की आदत है उसने कहाँ मेहनत करनी है। तो इसलिए अप्रिशिएट ज़रूर करें एक दूसरे को, कोई आपका आपके फैमिली मेम्बर है, आप कहीं काम कर रहे हैं, कोई आपका मतलब पर्सनल है प्रोफेशनल है कहीं पर भी हैं, अप्रिशिएट करना सीखें लोगों को, तारीफ़ और अच्छी तारीफ़ मतलब ट्रू तारीफ। एक होता है ना आपको नज़र आ रहा है कि यार ये चीज़ अच्छी, खाने की बात कर लेती हूँ, एक ना एक फैमिली मेरी तरफ आई थी, मुझे याद है बड़ी पुरानी बात है, मैंने निहारी बनाई थी आई गेस, तो वो इतनी अच्छी बनी नहीं थी, मुझे खुद मतलब पता लग गया था कि अच्छी नहीं बनी है, मेरे मियाँ साहब को भी पता लग गया था, लेकिन अब वो फैमिली बस तारीफ़ कर ही जा रही थी, अरे ये बड़ा मज़ा आया, बड़े मज़े का खाना है। अब मुझे नहीं मालूम है मतलब वो एक आपको फील हो जाता है ना कि यार ये बंदा जो है ना वो ऐवी तारीफ़ें कर रहा है, ये ओरिजिनल तारीफ़ नहीं है, ये ट्रू नहीं है, और वो मुस्तकिल जो है ना वो आपके मुंह पर आपको करना कि नहीं जी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। भाई एक होता है आपने दिल रखना है किसी का, ठीक है, आई नो हम किसी भी जगह पे जाके ये नहीं कह सकते एक बंदे ने मेहनत से खाना बनाया है मेहनत से कुछ किया है और उसको आप बिल्कुल भी मायूस नहीं कर सकते, उसको आप उसकी बदतारीफ़ी करके उसका दिल नहीं तोड़ सकते, वो समझ में आती है, लेकिन जब ओवर हो जाती है ना कोई चीज़ या वो मिठास जो है ना वो हज़म नहीं होती, वो नज़र आने लग जाती है, वो पता लगने लग जाता है कि यार ये जो है ना ये क्या चीज़ है, ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ठीक है दिल रखने की हद तक तारीफ़ ओके फाइन, लेकिन इतना ज़्यादा कर देना कि यार एक चीज़ है ही नहीं ओरिजिनल और आप उसको जो है ना वो बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो चीज़ भी गलत हो जाती है। तो अप्रिशिएट ज़रूर करें जो किस जिसकी वैलिड बनती है, जो डिज़र्व करता है उसकी तारीफ़ ज़रूर करें, किसी के काम की तारीफ़ कर देना ठीक है, ये एक दूसरे का ना हौसला बढ़ाती हैं। मैं घर की बात करती हूँ अगर, तो एक बीवी के लिए शौहर के चंद अल्फाज जो उसकी तारीफ़ में बोले जाते हैं, सारा दिन औरत काम करके थकी होती है, सारा वक्त काम कर रही होती है, आप यकीन माने किचन का काम ख़त्म ही नहीं होता, घरों के काम ख़त्म ही नहीं होते, वो मेरी ख़वातीन वो मेरी माएँ बहनें जो हाउसवाइफ्स हैं जो घरों में रहती हैं घर संभालती हैं, यकीन माने उनकी बड़ी टफ़ ड्यूटी है कि वो छुट्टी वाले दिन भी उनकी छुट्टी नहीं होती है और अपने लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है, तो उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें, उससे उनका दिल बहुत बढ़ जाता है, उससे उनका खून बहुत बढ़ जाता है और उनका दिल करता है कि यार अपने घर वालों के लिए अपनी फैमिली के लिए ना वो इसी तरह काम करती रहें, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाती रहें और अच्छे तरीके से घर संभालती रहें। फिर उसके बाद कोई भी ताल्लुक बेहतरीन बनाने के लिए ना कुछ बाउंड्रीज़ इस तरह की तय करना कि आप हर वक्त अवेलेबल होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है कि यार अगर आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे तो ही आप अच्छे हैं, तो ये एक गलत सोच है। आप यकीन माने जब आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल होते हैं ना फिर अगला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो बाउंड्री ज़रूर सेट करें, हर वक्त अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ना कह देना जो है ना वो बड़े ज़रूरी होता है। अपनी आपकी जो अपनी पहचान है ना वो कभी नहीं ख़त्म करनी है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आ जाता है वो आता है ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी, कि आपको अपने पार्टनर पर आपको अपने उस ताल्लुक पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है, और सिर्फ कहना नहीं उसको फुलफ़िल करना उसको इम्प्लीमेंट करना ये ज़रूरी है। आपका अमल आपके एक्शंस बता देते हैं कि आप अगले बंदे पर कितना ट्रस्ट करते हैं, आपको उस पर कितना यकीन है कि भाई ये बंदा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक, ये आप अगर मुंह से कह रहे होंगे ना वो नहीं शो कराता, आपके अमल आपके एक्शन से पता लगता है कि यार वाकई आप उस पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं।
एंड सिक्स वन इज कॉन्फ्लिक्ट को जीतना. ठीक है, आपका कहीं पे किसी भी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो मेन चीज ये नहीं है कि अगर आप उसको डिसएग्री कर देंगे, अगर आप अपनी गलती मान लेंगे तो आप हार जाएंगे. नो, जब आपका मकसद एक है ना तो फिर हार जीत मैटर नहीं करती. आपका मकसद जिंदगी का एक होना चाहिए. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो फिर आपके लिए उस ऑर्गेनाइज अपने काम को बेहतरीन करने के लिए, बेहतरीन करके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ प्रोड्यूस करना, उसकी तरक्की के लिए उस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको अडॉप्ट करना. बेशक आप गलत हैं लेकिन अगर कोई दूसरा ठीक है तो उसको इसलिए अडॉप्ट कर लेना कि यार ये हमारे इदारे के लिए एक बेहतरीन चीज़ साबित हो सकती है. तो ओके, इट्स फाइन, मैं इस रास्ते पर चल लेता हूँ या चल लेती हूँ. इसी तरह घर की अगर हम बात करें तो आप का जो भी पार्टनर है, आप उसकी उस बात पे सिर्फ इसलिए अड़ जाएं कि यार ये मेरी बात से जो है ना वो ना कर रहा है, अब मैं गलत भी हूं ना तो मैंने ये बात मनवा के छोड़नी है, ये चीज़ गलत हो जाती है. यहाँ पे ईगो आ जाती है जिससे मामला जो है ना ख़राब हो जाते हैं. फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कि फिर ना आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप का कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद आपके लिए ये मैटर ना करे कि भाई मैं जीत रही हूँ या मैं हार रही हूँ. मैटर ये करना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है, जो बात अगला बंदा कर रहा है वो उसका मकसद क्या है. और 7 पे है जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, छोटी छोटी जो एफर्ट्स होती हैं. ठीक है, हम अपने जो भी पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी मामले में किसी भी तरह से, उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना. ठीक है, अगला बंदा अगर आपको आपकी बर्थडे याद रख रहा है, आपको विश कर रहा है, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख रहा है, तो ये मत सोचें कि यार ये तो इतनी छोटी सी चीज़ है. या यूं कह लें कि अगर उसने आपको एक छोटी सी चीज़ गिफ्ट में दे दी है तो आप कह लें ऐ भी कोई दिन वाली चीज़ सी. मतलब इस तरह की बातें बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो उनको प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ दी जाए ना तो वो उनको माइंड में होता है यार ये तो इतनी सस्ती सी चीज़ इसने ला के दे दी है मुझे. उनके नज़दीक ये खलूस, जिस खलूस से वो चीज़ दी जाती है वो मैटर नहीं करती, इससे भी मामलात ख़राब होते हैं. तो इसलिए जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उनको सराहें, उनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें, उनको इग्नोर बिल्कुल ना करें. अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो यकीन माने कि बड़ा कुछ खो देंगे. अपनी वो वर्थ होती है ना, फिर अगला बंदा कहते हैं यार इसने तो कभी खुश होना ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बंदा फिर कह लें कि बस वो कहता है यार इसने खुश नहीं होना तो चलो जी अब मैंने इसके लिए कुछ नहीं करना, फिर ये बात उस बंदे के जहन में आ जाती है. तो इसलिए प्लीज़ अपनी अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं. और कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, हर जगह पे होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप कहें ना कि भाई मैंने इस फलाने टाइम पे इस बंदे के साथ जो है या इस बंदी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया था तो मैंने कोई एहसान किया था, तो ये एहसान नहीं है. हाँ, उस कॉम्प्रोमाइज़ को, उस कुर्बानी को ज़रूर एडमिट करें, उसको अप्रिशिएट करें, ये ज़रूरी है. जनाब नुमान खालिद की आवाज है, एंजॉय की जगह इसको, इसके बाद वापस आती हूँ. स्टिक अराउंड टू एफएम 101, मुझे कहते हैं निमरा रूज. 12 बजने में है 5 मिनट. 12 बजे के बाद लेंगे आप लोगों के लाइव कॉल्स, लाइव कॉलिंग सेशन के लिए. जी, आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना है, कौन सा एक्सपीरियंस, ये मैं आपको 12 बजे के बाद बताऊंगी. स्टिक अराउंड टू एफएम 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन तआवुन जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान सिंतास मुआहदे और बैन अल-अक़वामी कानून के तहत अपने कानूनी हुकूक और मुफादात का तहफ्फुज़ करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के दौरे के दौरान इसकी पैदावारी सलाहियतों और मुल्क की दिफाई सनअती शोबे में इसके किरदार का जायजा लिया। तालिबान हुकूमत की नाकिस इक्तसादी पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान का मुआशी बहरान हर गुजरते दिन के साथ मजीद संगीन हो रहा है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन तआवुन करती रहेगी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

I love FM 101. मुझे कहते हैं निम्रा रूज. एक दफा फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ जी. 12:05 हो गए हैं. अब हम बढ़ेंगे आप लोगों की लाइव कॉल्स की जानिब. लेकिन लाइव कॉलिंग सेशन से पहले ना मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं प्रोग्राम में शामिल जरूर करूंगी. कौन कौन हमारे साथ है जी? एम एजाज अली हैं शरकपुर शरीफ से. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताएं, आप ठीक हैं? वेलकम कह रहे हैं, खुशामदीद बोल रहे हैं जी. आई एन यू, थैंक यू सो मच जी. शमसी रेडियो लिसनर क्लब लाहौर की जानिब से खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया. सज्जाद अली राडला और रजा चौधरी साहब को आपने ओके बेस्ट फ्रेंड बोला है, चलें, थैंक यू सो मच जी. फिरोज आलम जान हैं जी, कह रहे हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन, कोई गम ना आए आपकी ज़िंदगी में. बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें आप. बस दुआओं में याद रखा करें जी, हम सबको ही मेरा ख्याल है कि दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कहे कि जी मुझे दुआओं की ज़रूरत नहीं है. हर बंदे को दुआ की ज़रूरत होती है और याद रखना चाहिए एक दूसरे को. बहुत शुक्रिया आपका. और एम एजाज अली कह रहे हैं जी, हमेशा छोटी छोटी खुशियों का अच्छे दिल से इस्तकबाल करो, क्योंकि इनके पीछे, इन्हीं के पीछे मोहब्बतों का समंदर होता है. बिल्कुल जी, छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर उनको वेलकम कहना चाहिए. बहुत अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों को ना, या छोटे छोटे मोमेंट्स को इन्जॉय नहीं करते. इसलिए नहीं करते, यार ये भी कोई बात है, बोला चलो अगली दफ़ा कर लेंगे. मैं कहती हूँ यार ऑन द स्पॉट होना चाहिए, जो भी कुछ है ना उसी वक्त उसको इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है. कल क्या है, कल क्या नहीं है, आपको नहीं मालूम है, अगले पल की खबर नहीं है. तो इसलिए जो है अभी है उसको ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए, उस लम्हे को ज़ाया नहीं करना चाहिए. Anyways, thank you so much. और फिरोज आलम जान कह रहे हैं जी, आपका BGM is also good, not boring, show is going awesome. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. अब मैं वैसे BGM सोच रही थी मैं थोड़ा सा चेंज करूं, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रही, चूज नहीं हो रहा मुझसे कि मैं कौन सा BGM लाऊं. मुझे चाहिए है इसी तरह कोई फास्ट सा, लेकिन डिफरेंट सा, यूनिक सा, और अभी तक मैं उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई हूँ. तो लेट्स सी कब तक कामयाब होती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह खैर हैं जी. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम कोयटा, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच. कह रहे हैं जी, जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझो सच बोला जा रहा है, और अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ खुदा हाफिज कहा जा रहा है. वाह जी वाह, इतनी गहरी बात. लहजे तो जी पता लग जाता है लोगों को कि क्या कर क्या रहे हैं. मुझे तो ये समझ नहीं आती है, हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा नफसा नफसी फैल गई है, एक दूसरे को बिल्कुल कह लें कि मौका चाहिए किसी को मार गिराने का, किसी को वो करने का, डाउन करने का. पता नहीं कहाँ से इतना कुछ आ गया, इतनी जेलसी, इतना हसद क्यों आ गया हम तमाम लोगों में, हमारे माशरे में, कि हम एक दूसरे के जो अखलाकियात है, एक दूसरे के इज़्ज़त एहतराम है, उसको ही पामाल करने पे तुले हुए हैं. अल्लाह रहम करे सबके ऊपर, आमीन सुम्मा आमीन. और मलिक मोहम्मद आदिल हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका भी. रजा चौधरी साहब मौजूद हैं जी, कह रहे हैं अच्छा बहुत सारे लोगों को आपने सलाम दुआ भेजा है, और स्पेशल सलाम आपने हमारा बेग मोहम्मद हफीज़ भक्कर वाले, गुल यासीन, नाज, रफ़ीक अंसारी, उस्ताद जीरा, हनी ड्राइवर साहब, सबको आपने सलाम दुआ दिया है जी. सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका. रजा चौधरी साहब के आगे भी मैसेजेस हैं. नंबर वन, बहुत आला, बहुत शुक्रिया आपका, सदा सलामत रहें, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका. नज़ीर खोसो साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और यार आज कितनी मज़े मज़े के आप लोग कोटेशन शेयर कर रहे हैं. कह रहे हैं जी, किसी का ज़र्फ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो. बात तो आपकी ठीक है जी. हमारे इर्द गिर्द ना अजीब तरह के लोग हैं, मैं बड़ा परेशान होती हूँ. इंसान अपनी मेहनत से कुछ अचीव कर रहा है, लेकिन अगले बंदे को ना बज़ाहिर तो वो आपकी उस अचीवमेंट पे खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों से, उसके लहजे से आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यार इस बंदे के दिल में आपके लिए कितना बोझ है, कितनी ज़्यादा मुनाफ़कत है उस शख्स के लिए, दिल में आपके लिए, और वो जेन्युइनली खुश नहीं हो रहा. वो आप अच्छा पहन रहे हैं,
अच्छा खा रहे हैं उसको वो भी फील हो रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों इतना अच्छा है, ये क्यों इतना आगे जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द ये चीज़ फैल गई है। हर दूसरा शख्स ये कहता है कि भाई मुझे हसद नहीं हो रहा, मुझे जेलसी नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली वो हसद भी कर रहा है, वो जेलसी भी कर रहा है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना प्यार की नज़र भी लग जाती है, तो वो नज़र लगती है, इसमें कोई शक नहीं है, नज़र बरहक है और नज़र लग जाती है। तो अगर कोई आके अपनी मेहनत से आ रहा है, अगर कोई अपनी मेहनत से कुछ अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, तो प्लीज़ उस पर हसद करने के बजाय, उसको उसका जेलिसी रखने के बजाय आप भी मेहनत करें। जब आप मेहनत करते हैं ना तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है, देर से वेट ज़रूर हो जाती है, लेकिन या उसकी नौीयत चेंज हो जाती है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, लेकिन यकीन माने फल ज़रूर मिलता है और बेहतरीन अंदाज़ में उसका फल आपको मिल सकता है। तो इसलिए मेहनत पर यकीन रखिए और बाकी मामला जो है ना वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं होने देता। मैं थक गई। अच्छा ऐसा करते हैं, नहीं मेरा ख्याल है कि मैं मैसेजेस को शामिल कर लूँ, ये ना हो कि फिर मैं भूल जाऊँ और आप लोगों की कॉल्स में फिर एक ही दफ़ा कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फरहाद मेमन साहब भी मौजूद हैं और कह रहे हैं जी मुझे वो लोग पसंद हैं जो दिल के अमीर होते हैं, ना बातों में बनावट रखते हैं। अच्छा जी ऐसा भी है, मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पे नहीं किया हुआ। ओके मैसेजेस आए हैं तो पता लगा है। खैर जनाब कह रहे हैं मुझे वो लोग पसंद हैं जो दिल के अमीर होते हैं, ना बातों में बनावट रखते हैं ना रिश्तों में मतलब, जो खामोश रहकर भी इज्जत देना जानते हैं, सादगी को अपनी पहचान बनाते हैं, तन्हाई में भी अपने असूल नहीं बदलते, वफा को हर हाल में निभाते हैं और दूसरों के लिए अपने दिल में रहम रखते हैं। ऐसे लोग आज के दौर में बहुत कम मिलते हैं, मगर जब मिल जाएं तो इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि साफ दिल और मुखलिस इंसान किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। ट्रू कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उस्मान अली हैं जी, सलाम आरजे निमरा, आई एम फ्राम फैसलाबाद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका, कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करती हैं आप, खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपकी हुस्ने समात है और आपने मुहाफिज ड्रामे का ओएसटी बोला है। अच्छा जी चले मैं क्यों करती हूँ, एक रिक्वेस्ट पहले भी आई थी मेरे पास नदीम भूल गई। अच्छा मैं देखती हूँ कौन सी रिक्वेस्ट थी फिर उसको भी चलाते हैं। और फिरोज आलम, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट देखें मैसेज जो है ना वो इन्हीं का है। फिरोज आलम साहब ने रिक्वेस्ट की थी नदीम अब्बास का ट्रैक था, चले मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं इसको लगाती हूँ क्यू पे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम चलाते हैं इसको। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मेरा ख्याल है कि अभी हम एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, उस ट्रैक के बाद जब वापस आऊँगी ना बस फिर जो है ना आप लोगों की रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों की कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। कॉलिंग सेशन में जी आप लोगों ने मुझे क्या बताना है, आप लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तरफ से जी बड़ी अकलमंदी का मुजाहरा किया है, और या यूं कह लें कि आपके नज़दीक सस्ता अच्छा होता है या महंगा अच्छा होता है, या आपका जो भी एक्सपीरियंस है, कोई आपकी ऐसी लाई हुई सस्ती सी चीज़ जो बहुत काम की निकल गई हो, वाह वाह हो गई आपकी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत महंगी लेकर आए थे लेकिन आपको बाद में बड़ा पछताना पड़ा, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? वो कहते ना बिस्ती होके रह गई बिस्ती। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि अपनी तरफ से आप बड़े पन्ने खाब बन रहे थे, आप बड़ा जो है ना वो कह रहे थे ओए होए होए मैं तो बड़ा अकलमंदी से शॉपिंग करके आया हूँ या आई हूँ, फलानी चीज़ में बहुत अच्छी लेकर आया हूँ, लेकिन जब आप लाए हैं ना इतने सस्ते में, 5,000 वाली चीज़ आप 500 रुपए में ले आए हैं, आप बड़ा खुश हैं इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद वो बताने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 111000101 हमारा टेलीफोन नंबर है, 042 का इजाफी कोड ज़रूर मिलाइएगा। स्टिक अराउंड टू FM 101।

0: तो थे साहिर अली बग्गा हमारे साथ और लैला खान। बस जो ट्रैक आप लोग सुन रहे थे 1111001 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पर कौन है हमारे साथ, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम बानोवान के सभी सुनने वाले को, मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। निमरा रूज कैसी हैं आप?
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं शमीमा पीछरा से हमारे साथ मौजूद हैं, कैसी हैं आप?
1: सबसे पहले तो खुशी मुझे इस बात के नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: बिल्कुल आपका अंदाज बता देता है कि आप हमारे साथ हैं।
1: यकीन करो निमरा जी, सब भी जिसके कॉलर के साथ या आरजे के साथ बात होती है ना, बहुत बहुत काम ऐसा होकर नाम बताया मैंने, वो खुद ही इसी तरह ही बोल।
0: जबरदस्त जबरदस्त,
1: तो मेरे लिए ये तो ये भी बड़ी बात है एक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र।
0: जानते हैं लोग आपको प्यार करते हैं, इतने अरसे से माशाल्लाह हमारे साथ हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता सेहत के साथ जो है हमारे साथ रखे।
1: आमीन सुम्मा आमीन।
0: शमी मापी अपना एक्सपीरियंस बताएं, कभी हुई है
1: हमेशा की तरह? हमेशा की तरह ये हो जाता है, अक्सर ही होता रहता है घर में, क्योंकि आजकल ना बच्चियां जन ऑनलाइन कपड़े मंगवाती हैं, तो फोन कर देते हैं कि उनको कह देते हैं आप घर आके दे जाओ। तो वो जब भाई आए थे, दो सूट मंगवाए थे, तो वो क्या ना जब वो चले गए बाद में चेक किए सूट, तो उनमें एक वो ना धागा सा निकला जिसको पता नहीं डोरा हम लोग कहते हैं क्या क्या कहते हैं, और वो कटे हुए भी थे, कट लगे हुए थे दो दिन। तो फिर इतना दिल बुरा हुआ, इतना दिल बुरा हुआ।
0: नहीं वो तो आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस हो गया ना, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने सस्ती शॉपिंग की, या फिर यूं कह लें कि आपको लगा कि यार ये चीज़ मैं बड़े मतलब 5000 वाली चीज़ 500 में ले आई हूँ, बड़ा मैंने अच्छा काम कर दिया, लेकिन वो फिर आपको पछताना पड़ा हो? या ऐसा भी हो सकता है कि हम कभी कोई महंगी चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, ये सोच के लेते हैं कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, ब्रांड की चीज़ है तो फलाना है ऐसे वैसे, बट समटाइम वो भी ख़राब निकल आती है।
1: हाँ जी निमरा जी, कहते हैं वो किसी ने कहा कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे इको बार।
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
1: ये बड़ों की मिसालें तो जो है ना बिल्कुल सही है। तो ये हो जाता है अक्सर। हाँ। मैं सबको भी सुनने वालों को कहूंगी कि ये कभी ना देखें कि हमें सस्ती चीज मिल गई है, इसमें कोई ना कोई मसला होता तो वो सस्ती देते हैं ना, हालांकि जो ब्रांड के होते हैं वो तो एक रुपया भी कम नहीं, उन्होंने पहले से चिट लगाई होती है लिख के, तो उसे ना वो कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो ये कभी ना कहें कि ये हमें चीज सस्ती मिल रही है, हम ये ले लें, उसको देखभाल के अच्छी तरह, उसमें कोई ना कोई नुक्कस कोई मसला होता तो वो सस्ती दे रहे होते हैं ना, ऐसे कौन किसी को सस्ती देता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गया शमीमा भी।
1: तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बल्कि प्रोग्राम आप जबरदस्त कर रही हो,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: तो निमरा जी वो गाना एक है हुमैरा, निमरा हुमैरा का जिंदड़ी सारी सारी तेरे तो वारी वारी,
0: हुमैरा अरशद का
1: नहीं, मेरा शरीर निमरा मेरा का,
0: निमरा मेरा, ओके निमरा मेरा, ठीक हो गया।
1: तो अगर प्ले कर दोगी तो आपके प्रोग्राम,
0: एक मिनट आप मुझे दोबारा बताती हैं
1: इसके बोल हैं, निमरा जिंदड़ी सारी सारी तेरे तो वारी वारी, मैं तेरे तो वख नहीं रहना, मैं ए होई कहना, ये बोल है गाने के,
0: मैंने सर्चिंग पर डाला है इसको, मिलता है ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
1: तो बाकी ये है कि जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है, सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
0: ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़,
1: अल्लाह हाफिज़।

0: अच्छा वैसे मैंने शमीमा पी साथ साथ ही इसको मैंने सर्च पर डाला है, बट मुझे इस ट्रैक का, इस तरह का कोई ट्रैक इन द वॉइस ऑफ निमरा मेहरा नहीं मिला. हाँ, हुमैरा चन्ना के नाम से ना काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, बट निमरा मेहरा का मुझे कोई ट्रैक सामने नहीं आया है. सो क्या किया जाए, अब देखते हैं जी. अरे जी, 111-000-101 पर हमारा नेक्स्ट कॉलर. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अरुज आपकी शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है.
0: बहुत शुक्रिया जी. हमदुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं. हाँ हाँ
1: बिल्कुल, बात यहाँ पे मेरे ख्याल से महीने में आपको दो शो होता है, एक वीक शो कर लेते, दूसरे वीक आपका शो नहीं होता, फिर तीसरे वीक आप शो कर ले.
0: देखिए, रोज का आना जाना कदर खो देता है ना, तो मैं इसलिए फिर कोशिश करती हूँ मेरी कदर कायम रहे.
1: रोज तो दूर की बात है, आप वीक के लिए नहीं आ रहे.
0: सॉरी, क्या कह रहे हैं
1: आप? वीक में नहीं आ रहे, आप तो रोज आने की बात कर रहे हो.
0: मैं असल में बस मैं माजरा चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं कह सकती. ठीक है.
1: नहीं, मैं मैंने चीज नोट किया हुआ है. तमाम हर चीज इसी तरह है. मैं अच्छा? देख रहा हूँ ये दो महीने से मैंने हर चीज इसी पे गौर किया हुआ है.
0: ओके, अच्छा चले मैं भी गौर करती हूँ वैसे ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन यकीनन कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई मसरूफियत चल रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा. ठीक है, बाय चांस.
1: अर्जुन ज़ैनब हो गया था, आप हो गए, तीन चार अर्जुन और इसको हम नोट कर रहे हैं.
0: ठीक हो गया, चले. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे बताएं आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि आपने सस्ती चीज ली लेकिन आपको बाद में पछताना पड़ा, या फिर आप क्या समझते हैं सस्ता अच्छा होता है कि महंगा अच्छा होता है?
1: मैं एक बात बता दूं, महंगा चीज जो है तो आपको बहुत ज्यादा टेम निकालते हैं. महंगा चीज जब आप पहनेगा लोग भी आपसे मुतासिर रहेगा.
0: बिल्कुल.
1: सस्ता चीज लेगा बार बार, एक महीने के बाद खत्म हो जाएगी, फिर जाके आप दूसरा लेगा. सस्ते की बजाय लोग महंगे ले रहे. अभी सूट कर जब हम लोग शूज वगैरह ले, वही सॉरी कपड़ा लेगा. कपड़ा जब आप सस्ता कपड़ा लेगा, जब आप टेलर के पास जाएगा खैर के पास, वो आपसे 1500 रुपए लेगा. अगर आप महंगे वाला कपड़ा ले लो, सस्ता वाला कपड़े ले लो, खैर दर्जी तो वही पैसे लेगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं.
1: तो यहाँ सीधा हमें अंदाजा लगाना चाहिए, ये शूज हो गए चाहे जो भी चीज हो गए, सस्ता वाला चीज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. एक ही बात है, और जब भी हम चीज लेते हैं नए लेते हैं, फेंक लेते हैं. मैंने जितना ज्यादा ना जिंदगी में, चाहे मैंने वॉच लिया हुआ है, चाहे मैंने मोबाइल लिया हुआ है, चाहे मैंने बाइक लिया हुआ है, जो भी चीज है हम अच्छे क्वालिटी वाला लेते हैं.
0: वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त चीज. चले, बहुत अच्छी बात है. ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह.
1: मेरे आप सस्ता शूज लेगा 1500 रुपए का होगा, 500 रुपए का होगा, वो एक महीने में पड़ जाएगा. अगर 4-5000 रुपए चलेगा आप सालों सालों तक आपके साथ.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. अच्छा ये तो थे अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे साथ, और शूज़ की बात की तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा मज़े की बात यह है कि कुछ अरसे से ना मेरे साथ भी इसी तरह की चीज़ हो रही थी. मैं एक मतलब ब्रांड से जो है वो जूता ख़रीदती हूँ. पहले ही होता था कि आप मैचिंग शूज़ आपको चाहिए होते हैं. एक टाइम हर औरत पे मेरा ख्याल है कि इस तरह का आता है कि जब वो हर चीज़ मैचिंग की पहनती है, बट शादी के बाद या बच्चों के बाद जो है ना होता है कि यार नहीं, हमने अपना कंफर्ट देखना है. तो मैं भी उसी में फॉल करती हूँ. तो मैंने ना एक ही ब्रांड रखा हुआ है, वहाँ से मैं जब जूता ख़रीदती हूँ ना, तो मैंने एक तो मेडिकेटेड, एक तो मेरी कमर का इशू था तो जिसकी वजह से मैं मेडिकेटेड ही पहनती थी. तो मैंने क्या किया, बड़ा एक्सपेंसिव जूता होता था, तो मुझे मैंने जब लोगों से सुना कि यार सेल लगती है, आप सेल से क्यों नहीं ले लेती चीज़ें और ऐसे वैसे ना, तो मैं ये कहती थी यार मैं सेल के दिनों, मतलब मैं वेट नहीं करती कि सेल लगेगी तो मैं सूट लूँगी या मैं कोई चीज़ लूँगी, कोई भी वो बाई चांस अगर मुझे सेल से मिल जाए तो वो एक और चीज़ है. अच्छा अब इसी तरह ना मैंने जब जूता लेना था, ये मेरा ख्याल है ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तब की बात है, तो मैं बड़े मज़े से जी ब्रांड पे चली गई उसी, और स्पेशल क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है कि मैंने हर महीने जाना है और 10 जगहों से मैंने घूमना है उसके बाद मैंने चीज़ लेनी है. मुझे ये पता है यार मैंने 2 लेने हैं, 3 जोड़े लेने हैं, जितने भी लेने हैं मुझे ये बस ये पता है कि यार यहाँ से चीज़ अच्छी मिलती है, बंदा चीज़ उठाए और घर को आए. तो मुझे फिरने की बिल्कुल आदत नहीं है बाज़ार में कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, ना मैं जल्दी बारगेनिंग करती हूं. और अगर आप उस पे चले जाते हैं, किसी ब्रांड पे चले जाते हैं, तो वहां तो इस सवाल ही पैदा नहीं होता बारगेनिंग का. तो बहरहाल मैं चली गई और जी मैंने कहा अच्छा यार सेल लगी हुई है, मतलब ब्रांड्स पे ऑलमोस्ट 4 सीज़न ही सेल चल रही होती है कुछ सेलेक्टिव आइटम्स पे. मैंने ना अपनी तरफ से उसमें से बेहतरीन चीज़ मैंने कहा यार वाकई ये मतलब 6000 वाली चीज़ है या 7000 वाली चीज़ है, और नॉर्मल जो मैं चीज़ ले रही थी ना वो 8,000-9,000 मीन्स टू से कि 10,000 से कम का मेडिकेटेड जूता अच्छा वाला नहीं मिल रहा था जो उसकी रियल प्राइस थी. बट चूंकि वो सेल था तो सेल में मुझे आराम से शायद 3,500-4,000 का वो जूता मिल गया. मैंने ना ले भी लिया, लेकिन क्या हुआ जी, जब मैंने उसको पहना फिर मैं बड़ा पछताई, बहुत पछताई, इतना पछताई मैंने कि यार क्यों मैंने उस टाइम पैसे बचाने की कोशिश की. मैं उस टाइम एक चीज़ ले लेती और उस जूते के बाद मुझे दो मज़ीद जूते और ख़रीदने पड़े. और चूंकि वो मेरा टाइम इस तरह का चल रहा होता है, मेरा मई जून जो है ना वो काफ़ी बिज़ी गुजरता है, उस टाइम पर हमारा सेशन चल रहा होता है जहाँ मैं जॉब करती हूँ, तो वहाँ पर ना मुझे कम्फर्टेबल चीज़ चाहिए होती है जिसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल रह सकूं और मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं. अब मैं उसमें जो है ना बड़ा मैं इतना इरिटेट हुई कि मुझे जाके मैं मॉल नहीं जा सकती थी, तो मैं नियरेस्ट शॉप से ही जो है ना वो दो मज़ीद जूते ख़रीद के लाई उस एक के पैसे बचाने के चक्कर में. मैं बड़ा पछताई. बहरहाल जी, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं. और हालांकि ना मैंने बड़ा अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं यार, मतलब जो है मैं वही ले लेती हूँ. बट फिर मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, लोग कहते तो हैं कि यार सेल में, मतलब क्योंकि मेरे साथ मेरी कलीग्स होती हैं समटाइम, आप दोनों, आपका होता है ना, आपने एक जैसा जूता पहना हुआ फिर हम कहते हैं अच्छा मैंने तो इतने का लिया था, मैंने तो इतने का लिया था. उसी ने मुझे कहा था कि यार वहाँ पर सेल में भी बड़े आराम से जूते मिल जाते हैं और बड़ी आदोआत सेल लगती है. तो उस सेल के चक्कर में जो है ना मैं फंस गई और मेरा हो गया नुकसान. उसके बाद मुझे दो अदद जूते खरीदने पड़ गए और वो जूता मैंने यकीन करें शायद 2-3 दफा पहना. उसके बाद मैंने वो 2-3 महीने रखा हुआ था और मैंने अभी शायद कल परसों की बात है, थर्सडे की बात है, यस, मैंने वो जूता फिर पहना. मैंने कहा अच्छा यार, मतलब मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, पहन के देखती हूँ शायद मुझे ठीक रहे, कंफर्टेबल रहे. लेकिन मैं वहाँ पे कह लो कि आधा घंटा मुश्किल से गुजरा है और मैं बड़ा पछताई. मैंने कहा यार नहीं, ये मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी. तो बाज़ुकात आपको सस्ती चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है, बाज़ुकात जो है ना आपको इस तरह का जो है वो ब्रांड से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो इट डिपेंड्स की चीज़ क्या है आपकी. एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन, वो बहुत ज़रूरी है. बाज़ुकात मेंटली आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ घूम रही होती है ना, तो वो भी फिर आपके साथ उलट हो जाता होता है. तो इसलिए जो चीज़ आपको लग रहा है कि यार नहीं इसमें आप कंफर्टेबल हैं, या आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर देखा करें कोई भी चीज़ खरीदते वक्त. फिलहाल जी, हमसे रिक्वेस्ट किया था फिरोज़ आलम साहब ने, आपकी रिक्वेस्ट. इनके बाद हम प्ले करेंगे किसकी रिक्वेस्ट, उस्मान अली की रिक्वेस्ट. स्टिक अराउंड FM 101.

अरे जी वेलकम बैक. आप लोगों के मैसेजेस भी साथ साथ मैं ऑन एयर करती चलूँ. फखरुल हसन साहब मौजूद हैं, मिसेस आरिफ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अच्छा ओके, मिसेस आरिफ हैं हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बहुत दुआएं आप और सब के लिए. वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए. आप सैटरडे को नहीं आती तो वीकेंड बहुत उदास रहते हो. सो स्वीट, बस ये दुआओं में याद रखा करें. कभी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं जिसकी वजह से जो है ना छुट्टी करनी पड़ जाती है. फरहाद मेमन साहब अगैन, बहुत शुक्रिया आपका. और ओए होए होए, सुबह सुबह जलेबी, मिठाई और क्या है, मिठाइयाँ हैं बल्कि ढेर सारी. और ये पतीसा लग रहा है मुझे. थैंक यू सो मच. रुमान अरशद साहब मौजूद हैं जी, एफ एम 101 लाहौर. माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त आरजे साहिबा, तुसी ग्रेट हो. आज की पोस्ट कमाल लग रही है. बहुत शुक्रिया जी. एआई ने एआई की मतलब एक अच्छी बात ये है कि आपको जो है ना वो हेल्प बहुत हो जाती है, लेकिन शक्ल पता नहीं क्यों वो चेंज कर देता है. मैं कल भी कोशिश करती रही हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा उसको कमांड्स दिए हैं कि भाई प्लीज़ मेरी शक्ल मत चेंज करना, जो मेरा फेस है वही उस पर लगाना. लेकिन ना जी ना, एआई साहब हमारी थोड़ी सुनते हैं. वो कौन सा हमारा छोटा भाई है जो दो चपेड़े लगाएंगे और ठीक हो जाएगा. है ना. बार आर जी कोशिश की थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बन गई, बेहतर बन गई. और कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा खुश और आबाद रहें. आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू. ब्यूटीफुल शो हमेशा की तरह. कीप इट अप डियर, लिसनिंग योर शो फ्रॉम शाहदरा लाहौर. बहुत शुक्रिया आपका. और प्लेलिस्ट की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल फेसबुक पर मेरी ना पर्सनल आईडी है, ठीक है. फेसबुक पर मैंने अपनी कोई ऑफिशियल अपना पेज नहीं बनाया हुआ, बट क्योंकि मुझे लगता है यार वो बड़ा मतलब बहुत उसको टाइम देना पड़ता है. हाँ, इंस्टा पर भी जो बना हुआ है, इंस्टा पर भी मेरा पर्सनल ही बना हुआ है. पता नहीं मुझे, मैं इन चीज़ों से ना बड़ा दूर भागती हूँ. जो चीज़ मेरी पर्सनल है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पर्सनली रखूँ. मैं उसको जो है ना यहाँ पे, मुझे हालांकि बड़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं ऐड करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करती क्योंकि वो मेरी पर्सनल आईडी है. वहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरे मतलब प्रोफेशनल मेरे वहाँ पे, जो ऑफिशियल मेरा है वहाँ पे, वो लोग जिनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं उनको मैंने ऐड किया हुआ है. बाकी मैंने जो है मतलब इस तरफ से एफएम की लाइन से ना उस तरह से लोग ऐड नहीं है मेरे पास. वो काफ़ी पर्सनल आप कह सकते हैं उसको तो. बट ठीक है, ओके, आई ट्राई कि मैं कुछ बनाऊँ. हाँ, यूट्यूब पे ज़रूर मेरा मैंने चैनल बनाया हुआ है अनफिल्टर्ड निमरा के नाम से, उसको ज़रूर आप जाके सब्सक्राइब कीजिएगा. बनाया मैंने, मेरा ख्याल है 2024 में था आई गेस, बट उसको फिर मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया क्योंकि वहाँ पे भी मुझे यही लग रहा था कि काफ़ी उसको टाइम देना पड़ता है. लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से उसको कंटिन्यू करूँ. मुश्किल से 4-5 मैंने वीडियोस उस पर डाली हुई और नॉर्मल सी रेगुलर रूटीन की वीडियोस हैं. तो आप उस पर जाएं, अनफिल्टर्ड निमरा के नाम से उसको सर्च कीजिएगा और उसको फिर आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिले. उसको शेयर कीजिएगा ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हूँ कि नहीं यार मैंने इस पर काम करना है. मैं टाइम के चक्कर में ना उसको छोड़ देती हूँ फिर, लेकिन अब जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और उसको शेयर करेंगे तो मैं फिर यकीनन उस पर मेहनत करूँगी. बाकी जी अच्छा जी, तारीफ़ कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका. रुमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारे मैसेजेस हैं आपके. और हाँ हाँ हाँ हाँ, फरहाद मेमन साहब कह रहे हैं जी आपकी टॉपिक के बारे में, मेरा ये तजर्बा है कि दिल की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, ख़ासतौर पर कारोबारी सरगर्मियों में बहुत मोहतात रहना चाहिए. कुछ अरसा पहले मुझे एक चीज़ ख़रीदनी थी, मैंने एक दोस्त से मशवरा लिया, इसने मुझे वो चीज़ ख़रीदने से रोका और 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि वो चीज़ ख़ुद इस मेरे दोस्त ने ख़रीद ली है. ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. इसके बाद मुझे तजर्बा हुआ कि राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए. फिर वो आपका दोस्त थोड़ी हुआ. देखिए बहुत दफ़ा ना हमें लग रहा होता है कि जो सामने वाला बंदा है ना वो शायद हमारा दोस्त है, लेकिन इसी तरह की चीज़ों से पता लगता है कि वो एक्चुअली हमारा दोस्त नहीं होता. वो जस्ट हमारे पास हमारे राज लेने के लिए बैठा होता है, या हमारा आप कह लें कि उसको टो होती है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है.

0: मेरे जी एक जरूरी कॉल थी जो मैंने लेना जरूरी थी, नहीं तो मेरे बच्चों ने ना पीछे पड़ जाना था। एनीवेज जी, मैं बात कर रही थी दोस्ती के हवाले से। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग रोज़ डेली रूटीन में उठते बैठते हैं जिनको सिर्फ इस बात की टेंशन होती है कि यार हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हम क्या पहन रहे हैं, कितने का पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, उनको इस बात की बहुत टेंशन होती है। और आप उस टाइम आपको रियलाइज़ नहीं होता, आप समझते हैं यार ये हमारा बड़ा सगा है, हमारे साथ बड़ा सिंसियर है जिसकी वजह से ये हमसे पूछ रहा है। लेकिन ना कहीं जाके आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लिक करना शुरू कर देती हैं, और जब आपके अंदर से कोई रेड फ्लैग्स आ रहे हो ना, तो उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, उसको ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्यों है। और फिर कोशिश वाकई यही करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को अवॉइड करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं अगर आप अपना मेंटल पीस चाहते हैं। पहले हमें यही लगता है, मुझे पता है कि मेरी जैसी और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि हर एक को खुश करने के चक्कर में लगी रहती हैं, या यूं कह लें कि उनको तैयार मतलब इसकी पसंद भी हो, खाना बन रहा है ना, अगर उसने मतलब घर में पांच लोग हैं, पांच लोगों में से दो बंदों ने या तीन बंदों ने उसमें से वो चीज़ नहीं खानी जो आपने बनाया है, फिर होता है कि यार हम ये भी बना लें, चलो यार बेचारा कोई नहीं वो ये खा लेगा। मतलब हम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार नहीं, हर बंदे की पसंद देखनी है, हर बंदे के लिए हमने अलग से खाना भी बना देना है, चार चार डिशेस बना के रख देनी है। किसी ने आपके घर आना है तो भाई उसको ये अच्छा ना लग जाए, उसको ये बुरा ना लग जाए, इस तरह की चीज़ें हमने नोट करनी है। और उस चक्कर में ना हम अपना फिजिकल अपना रेस्ट भी कुर्बान करते हैं, अपना मेंटल रेस्ट भी, मेंटल पीस अपना कुर्बान कर देते हैं। हम इस बात पर जाते ही नहीं है कि यार हमें क्या सहूलत है, हमारे लिए क्या ईजी है करना, हम इस तरफ आते ही नहीं है। हमें होता नहीं यार कोई बात नहीं, चल खैर है, चल खैर है, उसने तो कभी कभी आना है, या चलो कोई बात नहीं, बड़ी हैं छोटी हैं जो भी आपका ताल्लुक चल रहा होता है उसमें क्या होता है। जो ऐसे लोग होते हैं ना वो कभी भी खुश नहीं होते, वो कभी भी मुतमईन नहीं होते, उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो सेटिस्फाई होते नहीं है। और हम दिन रात एक करके अपने आप को जला जला के जो है ना अपनी हर तरह की सेहत गिरा लेते हैं, अपनी मेंटल सेहत पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ भी कुर्बान कर देते हैं। तो मुझे यही समझ आई है कि यार कुछ बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आपका मेंटल पीस कुर्बान ना हो। आप बीमार ही उस वक्त होते हैं जब आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को जो है ना, जो आपको लग रहा है कि यार नहीं ये बंदा आपसे सिंसियर नहीं है, और मैं हमेशा कहती होती हूँ जो दोस्त यार होते हैं ना, कोई एक आधा मतलब कुछ लिमिटेड सिलेक्शन जो है ना आपकी लिमिटेड होनी चाहिए, सिलेक्टिव लोग होने चाहिए जो आपके दोस्त के पैरामीटर्स पर आते हों, जिनको आप कहते हो यार ये जेन्युइन आपका दोस्त है। कहते ना एक अच्छा हो तो वो भी दस के बराबर होते हैं, और बस दस जो होते हैं ना वो भी किसी काम के नहीं होते। तो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्वान्टिटी ना देखें, क्वालिटी होनी चाहिए। एनीवेज जी, जल्दी से आप लोगों की कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। 1111001 पर हमारे साथ कौन है, टाइम शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक
0: है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहजाद साहब आप बताइए, आप ठीक हैं?
1: बस ठीक है जी, आपकी दुआएं। बहुत अच्छी बातें कर रही है जी। हम पैसे लगा के मेहमान आते हैं, कोई आते है जी तो वो कह देते हैं कि इसमें थोड़ा नमक कम है, दूसरा कहते थोड़ी मिर्च तेज है। हम इतने पैसे लगा लेते हैं, हमारा दिल तोड़ देते।
0: बिल्कुल ऐसे है, या ये भी कह देते हैं ना, मैं तो ये खाता ही नहीं हूँ।
1: हाँ जी, ये भी होता है। तो माशाल्लाह, तो आप बात कर रहे हैं ना, तो आपकी चाची जो है ना वो बहुत अच्छी चीजें खरीद लेती, सस्ती खरीद लेती है।
0: अच्छा, और फायदा होता है उसका?
1: हाँ जी, वो एक दुकानदार के पास रेडीमेड बच्चों के कपड़े लेने थे, उसके पास गई, एक सूट लेना था। वो कह रहे इतना वो भी दिखाओ, इससे अच्छा दिखाओ, इससे वो काफी देर पाती रही उसको। तो जब रेट बना ना, वो कहता चलो तुम ले लो, इतने में ले लो। कहने नहीं, आप दो लूंगी, एक की बजाय दो लूंगी, दो दोगे चलो। ये सस्ता काम कर लेती है।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई। ये गुर भी किसी किसी में होता है, पता है आपको?
1: हाँ जी जी, हम भी हमें जो गुड़ मिला है ना वो भी हम जमाते हैं। जब पैसे ज्यादा तारे लेने हो फिर ज्यादा तारीफ करते हैं।
0: वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, गुड हो गया।
1: अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत दुआएं आपके लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: बहुत दुआएं,
0: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जी ये तो थे शहजाद साहब हमारे साथ, और वाकई बार्गेनिंग का भी जो गुर है ना वो हर एक के अंदर नहीं होता। बाज़ लोग तो बस चीज़ देखते हैं और पैक कराते हैं जिनके पास वादू पैसा है। एनीवेज ही चेक करते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, नाम बताइएगा।
2: जी लाहौर से इरम बात कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश थी आपसे बात करना, शुक्र है कॉल लगी।
0: वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इरम क्या करती हैं आप, पहली दफा कॉल किया आपने?
2: जी अभी मैंने पहली दफा कॉल की नहीं, कॉल तो रोज आपके प्रोग्राम में, जब भी आपका प्रोग्राम होता कॉल करते, लेकिन लगती नहीं कॉल,
0: लगती नहीं है। ओके चले, वेलकम कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में।
2: आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बातें करती है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरम मुझे ये बताएं, कभी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है सस्ती और महंगी चीज का?
2: नहीं नहीं आप, ऐसा हम कभी ऐसी पंगे में पड़े ही नहीं।
0: पंगे नहीं पड़े, ठीक हो गया। तो शॉपिंग खुद नहीं करती हैं आप, मम्मा करती हैं?
2: नहीं जी जी, मम्मी करते हैं, मम्मा पापा करते हैं।
0: वेरी नाइस, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
2: और आप सब सुनने वालों को सलाम, और मखसूद भाई को भी सलाम मेरी तरफ से।
0: वालेकुम
2: अस्सलाम। और माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहें।
2: एक शायरी सुनाऊं आपके? आपको
0: शायरी, कोई शायरी का टाइम है भला?
2: नहीं वो थोड़ी सी फनी है। वो कहते हैं कि असील तुम हो तो बुरे हम भी नहीं, असील तुम हो तो बुरे हम भी नहीं, महलों में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं, सैर करके कहती हो कि शादी शुदा हूँ, कान खोल कर सुन लो कवारे हम भी नहीं।
0: वाह जी वाह, जबरदस्ती, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा इरम, ठीक है?
2: आप एक सॉन्ग एक सॉन्ग प्ले कर देना।
0: बताइएगा कौन सा?
2: सजना दा बू आप इपला दी चावे मेनू।
0: चलिए ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हाय ओए कितने जावा मैं। एनीवेज जी, रुमान अरशद कह रहे हैं स्पेशल सलाम टू सज्जाद अली लाडला, बहुत शुक्रिया आपका। बीजीएम की तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे मैसेजेस हैं आगे रुमान अरशद के, रुमान अरशद बहुत बहुत शुक्रिया। और फिरोज आलम जान ने जो है ना वो मुझे एक अदद वो बना के भेजा है, हमारा पोस्टर जो था ना उसको मजीद चेंज कर दिया है। चलें जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारा बेग साहिबा को सलाम दे रहे हैं रुमान अरशद, बहुत शुक्रिया रुमान आपका, वालेकुम अस्सलाम हमारा की जानिब से। और ओके अच्छा, अब आपने भी मेरा पोस्ट नहीं, आपने चेंज नहीं किया, आपने एज इट इज़ मुझे शेयर किया है, ओके थैंक यू। और शमीम आपी को कह रहे हैं जी तुसी ग्रेट और रसगुल्ले दी प्लेट, और हमेशा खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन, थैंक यू। आगे सारे के सारे मैसेजेस जो है ना वो रुमान साहब के हैं, बहुत शुक्रिया रुमान आपका। फिरोज आलम जान कह रहे हैं थैंक यू, प्ले माय रिक्वेस्ट, यू आर ऑलवेज नाइस एंड रिस्पेक्टफुल पर्सन, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। भाई असल में टाइम शॉर्ट है तो मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी जल्दी ना मैसेजेस ऑन करूँ, किसी का कोई मैसेज ना रह जाए। और सज्जाद अली लाडला साहब भी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु और वेलकम टू द शो, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू सलाम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगी और आपको सुन के अच्छा लग रहा है, सलामत रहें आप। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाडला, बहुत अरसे के बाद आज आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। गुलाब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी वेरी नाइस शो, थैंक यू। And what next? Next फिर सज्जाद अली लाडला, रुमान अरशद साहब मौजूद हैं, फिर सज्जाद अली लाडला साहब मौजूद हैं। तमाम सुनती समातों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, पाकिस्तान पंजाब एंड पाक आर्मी को सलाम। कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल, अगली बात आपने भी यही की है जो मैंने की है जी, कि आज काफ़ी दिन बाद आपको सुन पा रहा हूँ, माशाल्लाह हमेशा की तरह ग्रेट शो और नाइस वॉइस, थैंक यू। और रुमान अरशद कह रहे हैं जी लास्ट वीक नहीं आई आरजे, बिल्कुल मैं नहीं आई थी लास्ट वीक, मैंने पहले भी बताया मैं थोड़ा सा बिजी थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई थी। और क्या कह रहे हैं जी, अच्छा ये आपस में शुरू हुए हैं, आज इतनी लेट, खैरियत है ना? ओके ये आपस में बातें करें, मेरे साथ नहीं करें। और कौन है जी? हाँ हाँ हाँ एम एजाज अली हैं जी, कह रहे हैं ज़ैनब अरशद आएंगी स्टूडियो में, क्यों बताऊं? एम ही बताऊं, प्रोफेशनल जेलेसी। मुंह पे कह रही हूँ मैं प्रोफेशनल जेलेसी। हो देखो जी, ऐसे भी होते हैं लोग जो मुंह पे जेलेस करते हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बहुत अच्छी सी प्यारी सी दोस्त है, और मैं जेलेस भी होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अच्छा जी, अल्लाह ताला ऐसा कोई वक्त ना लाए, अल्लाह ताला ऐसे ही साथ साथ रखे। और देखें, मैंने पहले भी कहा कि क्वालिटी जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दोस्त एक हो वो दस के बराबर, लेकिन अच्छा हो तो वो दस के बराबर होता है। और अगर दस हैं, आपका हल्का एहबाब बहुत वसी है, बट उसमें एक भी काम का नहीं है ना, तो यकीन माने आप बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं आप। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा और इतना पुराना साथ है। 12:49 हो गए हैं। और अच्छा जी, उस्मान अली, ओके उस्मान अली कह रहे हैं जी, शो गोइंग रियली वेल, अमीर लोग बार्गेनिंग नहीं करते जैसे आप। ओ ना जी, मैं कितों दी अमीर, मैं भी सब जैसी हूँ, आप सब जैसी, हम सब एक जैसे हैं। देखिए, बात कॉम्प्रोमाइज़ की भी है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जूता आपका हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए, इस पर मैं इवन आपकी जो ड्रेसिंग है ना वो भी इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, दूसरे के मतलब शौक़ में या दूसरे को दिखाने के लिए या अपने आप को वो दिखाने के लिए कि भाई हमने तो बड़ा खूबसूरत सूट पहना हुआ है, चाहे वो मुझे सूट ना करा हो, चाहे वो मुझे अंदर से काट रहा हो, मुझे चुभ रहा हो, तो ऐसी ड्रेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा चीज़ वो वेयर करें जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप रिलैक्स हो, अब वो महंगी हो या सस्ती हो। मेरी बस एक चीज़ है कि मैं फिर कोशिश करती हूँ, जहाँ मैंने 5 जोड़े बनाने हैं मैं वहाँ 2 बना लूँगी, लेकिन मेरी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए जो एक तो देर पा चले, और मैं बड़ा ख्याल से पहनती हूँ मेरे कपड़े, मतलब 2-2, 3-3 साल जो है ना, ये आप लोग हैरान भी होंगे इस बात पे कि बड़े आराम से निकल जाते हैं। एक तो मैं, वही बात है, मेरा साइज़ मैं बढ़ती नहीं हूँ, मतलब मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ एक अरसे से, और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं उसको एहतियात से चलाती हूँ, ठीक है? बाहर वाले कपड़े मैंने अलग रखे होते हैं, उनको मैंने माया लगानी होती है, जो हमारे लॉन के कपड़े होते हैं, और उसको प्रेस करके मैंने अलग सेपरेट रखना होता है। जो घर वाले कपड़े हैं वो मैंने अलग, मतलब आप तरीके से चलें ना, आप बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। बात होती है तरीके की, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 जोड़े होंगे और हर दफ़ा आपने नया जोड़ा पहनना है। लोगों के अंदर ये चीज़ भी होती है कि आपने अगर एक इवेंट पर एक जोड़ा पहन लिया है ना, तो फिर नहीं ये तो सबने देख लिया है, इसमें ये हमने नहीं पहनना, ये चीज़ बड़ी गलत होती है। मैं कहती हूँ यार, या तो फिर आप उतने पैसे ही ना लगाएं ना, इतने इतने भारी भारी महंगी महंगी चीज़ें लेके उनको रखने का क्या फ़ायदा है? तो बेहतर है कि बंदा इकोनॉमिकल चीज़ ले ले, जो आपकी पार्टी वेयर भी हो। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे माइंड में ये होता है कि यार, अगर किसी की शादी आ रही है, मैं पहली कोशिश ये करती हूँ कोई करीबी शादी है ना, उस पर मैं नया जोड़ा बनाऊँगी, और उस जोड़े को ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफ़ा पहनने के बाद उसको रख देना है। मैं कोशिश ये करूँगी कि उस जोड़ा मैं वो जोड़ा ऐसा बनाऊँ जो मैं बाद में कहीं इधर उधर पहन सकूं, ठीक है? पहले मेरे माइंड में ये चीज़ होती है। मैं टिपिकल वो हैवी किस्म की और इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, बिल्कुल नहीं पहनती, बहुत कम है। शायद कोई बहुत ही अपने भाइयों वाइयों की शादियों पे शायद वो जो टिपिकल काम वाले और इस तरह के कपड़े होते हैं ना वो पहन लिए होंगे, अदरवाइज जो है ना मैं नहीं पहनती। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं ऐसा सूट लूँ, ऐसी चीज़ लूँ जो मेरी आगे भी चल सके, जो मुझे बाद में भी फ़ायदा दे सके। और पार्टी वेयर वैरायटी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, अगर आप जाएँ ना, एम्ब्रॉयडर्ड और हर तरह की आपको चीज़ मिल जाएगी जो आप बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो जहाँ मैंने 10 जोड़े बनाने हैं, वहाँ मैं उतने पैसों में अच्छी चीज़ ख़रीद के थोड़े कम कर लूँ, लेकिन मेरी चीज़ अच्छी हो जाए, जो मुझे पता हो कि यार ये मैं जब भी पहनूंगी ये नया ही लगेगा। कैरी करने की भी बात होती है। हाय, बस हो गई अब, आज बस पता क्यों हो गई है, मुझे ना जॉ में पेन थी, और अब जो है ना वो थोड़ा सा, हाँ, बोलना जो है ना फिर ऐसे बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने अपने साथ पानी की बोतल भी रखी है, और रात को ना मैंने पैनिडोल टैबलेट भी ले ली थी, और उसके अलावा जो है जो भी मैं इसके लिए करती होती हूँ वो सारा कुछ कर लिया था। थोड़ी सी उर्दू भी ख़राब हो रही है। एनीवेज जी, लास्ट ट्रैक ऑफ माई शो, 12:53 हो गए हैं। और अब मैंने आप लोगों से इजाजत लेनी है. आई नो लोगों की शिकवे शिकायत होंगे कि मैंने बड़ी कम कॉल्स ली हैं, लेकिन अब क्या करें क्या करें, टाइम जो शॉर्ट है. अपनी बातें जब आप काफी टाइम के बाद आते हैं ना, फिर अपनी बातें नहीं खत्म होती. अच्छा मैं चेक कर लूँ किसी और के तो नहीं है. अच्छा जी यस, आपने रुमान आपने मुझे बहुत अच्छा याद कराया. मैंने भी दर्रे निजात का OST जो है ना वो चलाना था और मैं भूल गई हूँ, बट मैं अभी निकालती हूँ. जस्ट अ सेकेंड.

0: Melissa.
1: अच्छा कल जब मैं अपनी

अच्छा वो ट्रैक नहीं था, वो ये वाला था, दर निजात का हिजरे मोहब्बत यारा, उस पे ये दिल बेचारा। हिजरे मोहब्बत यारा, यस दिस वाज द सॉन्ग। जी 12:56, अब मजीद मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी, सो तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।

0: This is FM 101.
1: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?
1: Come on people, come on, get original.

0: This is FM 101.
1: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: This is FM 101.
1: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

0: This is FM 101.
1: आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

जी जनाब जी आए कहने वेलकम ते खुश आमदीद। तुसी सुन रहे हो देसी बीट अपनी मेज़बान ज़ैनब अरशद नाल रेडियो पाकिस्तान 101 एफएम दे लाहौर स्टूडियोज़ तो। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया मोहब्बतां दा चाहतां दा। मेरी माँ गई है गुलबर्ग तो, सलाम अलैकुम। वालेकुम असलाम, थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक बेहतरीन अलहमदुल्ला। एजाज अली कह रहे ने, मोहम्मद एजाज अली, वाओ माई फेवरेट सॉन्ग। बिल्कुल मैं अंदाजा है जी, वन ऑफ माई फेवरेट्स। साहू वीर कह रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान पाकिस्तान, मेरी शान पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान। रब ताला सलामत रखे, टेरों खुशियां देवे, हमेशा खुश रहो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आला शो, नाइस। आर जे वसीम अहमद साहब साढ़े नाल मौजूद ने, बहुत ही साढ़े वास्ते काबिल एहतराम। ते वसीम भाई लोग कह रहे हैं कंबाइंड शो करो, की ख्याल है जी? मेरे वास्ते तो बहुत ही फखर दी गल होएगी, मेरे वास्ते वाकई बड़ी प्राउड दी गल होएगी जिस वेले तुहाडे नाल कंबाइंड शो होएगा। ईद तो असी कीता सी लेकिन उस तरह नहीं हो पाया क्योंकि वेला बड़ा घट सी। खालिद मलिक साढ़े नाल मौजूद, सलाम जाना मैम। वालेकुम असलाम। मैं बड़ा ही औखा सरनामा लग रहा है, अगर यह मामला खूनी रिश्ते च आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ना ही छड़ सकते हाँ, ना ही ताल्लुक ख़त्म कर सकते हाँ। यह अपने आप से जबरे मुसलसल जारी हो जाता है, तो अपने आप से जबरे मुसलसल जारी हो जाता है। यह मेरे ख्याल से एक बहुत वड्डी आजमाइश की शक्ल है। रब ताला सब नू महफूज रखे, आमीन। गुड शो ते थानू गुड दोपहर। थैंक यू जी। फिरोज आलम जान सानू कह रहे हैं कि हुन ठीक हो गया आप ही जी, हुन राजी हो, साडा सोंग चला दो। पश्तो सोंग ओ की जी कोशिश कर दे हां। बिल्कुल जी, हुन बेहतरीन हो गया, देसी बीट्स लिखिया गया। साहूवीर कह रहे ने, तहसील मेलसी तो थोड़ा प्रोग्राम सुनदा वा, मिस यू लाहौर। शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब दी टीम नु मेरे वालों अस्सलाम वालेकुम। एफएम 101 दी सारे अमले नु मेरे वालों सलाम। बड़े लोगों की मोहब्बत ने मैनु मजबूर किया है कि मैं शो च कमेंट करा। साड़ी तस्वीर नु बड़ा पसंद किया जा रहा है जी, खानी क्या बात है जी। ठीक हो गया, ऐ मेहरबानी है जी AI दी। यकीन मनो इहो जे फिल्टर्स लांदे ने, इहो जे इफेक्ट लांदे ने, इहो जी तस्वीर बनाउंदे ने कि तुसी अपने ताई आप ही यकीन नहीं कर सकते कि मैं के कौन है। ए कौन है जी? तस्वीर जेड़ी है ना, वो थोड़ी हकीकत तो नेड़े होनी चाहिदी है ताकि कोई भी मिले तो परेशान ना होए। जेड़े लोग हमेशा शिकवा करते रहते ने, उन्होंने हवाले नाल गलबात करेंगे, उन्होंने किस तरह डील किया जाए, किस तरह का वर्ताव रखा जाए, किस तरह का जनाब सलूक किया जाए, तुसी अगर दसना चाहते हो तो कोई आसान जिहा हल, कोई आसान जी गल साडे नाल शेयर कर सकते हो। लाइव कॉल्स भी कोशिश करेंगे, जे पॉसिबल होइयां तो जरूर लेंगे, ज़्यादा तो ज़्यादा लवेंगे क्योंकि स्पोंसर शो ने साढ़े को तकरीबन दो। असी सोच रहे हैं कि न्यूज़ का वेला हो चलेगा तो उस तो पहले असी आप ही बोलते रहिए। होर सुनाओ, ठीक हो, वल हो? जिस वेले कोई गल ना होए ना उस वेले इंजी हुंदा है, होर सुनाओ ठीक हो। न्यूज़ हेडलाइंस तो बाद मुड़ के वापस आने हैं। स्टे ट्यून टू 101 FM रेडियो पाकिस्तान। थोड़े सब नाल मुखातिब ते मौजूद ज़ैनब अरशद ठीक 3 बजे ताईं।

0: फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और बेहतरीन गजा है। माँ अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे ही से दूध पिलाना शुरू करें। पहले 6 माह तक माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध दें, यहाँ तक के पानी भी नहीं। 6 माह के बाद मुनासिब इजाफी गजा के साथ 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना जारी रखें। बिला जरूरत डब्बे के दूध और फीडर के इस्तेमाल से गुरेज करें। माँ के दूध का कोई नैमल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ये पैगाम FM 101 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुफाद आमा के लिए पेश किया गया।
1: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: 4 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Deputy Prime Minister says Pakistan will safeguard its legitimate rights and interests under the Indus Waters Treaty and the international law. The Senate Chairman speaking in the general debate at the Inter-Parliamentary Speakers Conference in Cambodia has called for the resolution of conflicts to secure peace and shared prosperity. The Minister for Information Technology says effective steps are being taken to strengthen digital economy in the country. The second cricket test of the three-match series between Pakistan and England is underway at Lord's.
1: This is FM
2: 101. माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और बेहतरीन गजा है. माएं अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे ही से दूध पिलाना शुरू करें. पहले 6 माह तक माएं बच्चे को सिर्फ अपना दूध दें, यहाँ तक के पानी भी नहीं. 6 माह के बाद मुनासिब इजाफी गजा के साथ 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना जारी रखें. बिला जरूरत डब्बे के दूध और फीडर के इस्तेमाल से गुरेज करें. माँ के दूध का कोई नैमल बदल नहीं. सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान. ये पैगाम FM 101 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुफाद आमा के लिए पेश किया गया.
1: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad,

0: एयरपोर्ट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: क्या कह रही थी तुम, एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is FM 101.

0: बाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: लेट
2: सुनते रहिए FM 101।

Big Radio, Big Style. FM 101.

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: सुनते रहिए FM 101.
3: FM 101.

इतना बता करके दीवाना मुझे।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: Six Stone Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Deputy Prime Minister says economic stability and international standing of the country have improved significantly. The Chief of the Defence Forces has visited the Pakistan Ordnance Factory in Wagh Cantonment and reviewed its contributions toward the country's defence industrial base. Pakistan and Hong Kong have explored opportunities for cooperation in artificial intelligence and cyber security. The Punjab Chief Minister has proposed to enhance Pakistan-China cooperation in artificial intelligence, digital innovation and smart agriculture. The All Parties Hurriyat Conference has urged the Kashmiri people to pay glowing tribute to the veteran resistance leader Sayyid Ali Gilani on his martyrdom anniversary on Tuesday.
2: This is FM 101.
3: Hey, we'll be back after this short commercial break.
4: माँ का दूध बच्चे की पहली मुकम्मल और बेहतरीन गजा है। माँ अपने बच्चे को पैदाइश के पहले घंटे ही से दूध पिलाना शुरू करें। पहले 6 माह तक माँ बच्चे को सिर्फ अपना दूध दें, यहाँ तक के पानी भी नहीं। 6 माह के बाद मुनासिब इजाफी गजा के साथ 2 साल की उम्र तक दूध पिलाना जारी रखें। बिना जरूरत डब्बे के दूध और फीडर के इस्तेमाल से गुरेज करें। माँ के दूध का कोई नैमल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान। ये पैगाम FM 101 रेडियो पाकिस्तान की जानिब से मुफादे आमा के लिए पेश किया गया।
2: This is FM 101.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: Sunte rahiye FM 101.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: जी वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी, वो लौटाने आया हूँ।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: Sunte rahiye, FM 101.
3: मादा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। माँ अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर देवे। पहले 6 महीनों तक बच्चे नू सिर्फ अपना दुध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तो परहेज करो, क्यों जे मां ने दुध दा कोई नेमुल बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमाले पेश कीता गया है।
4: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। मावां नूं अपने बच्चे दे पैदाइश दे घंटे दे विच विच दुध पिलाना शुरू कर देना चाहिदा है। पहले 6 महीनों तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दिओ, इत्थों तक कि पानी भी ना दिओ। 6 महीनों दे बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मुफादे आमा लई पेश कीता गया है।
2: सुनते रहिए एफएम 101।
5: मां दा दुध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है। माओ अपने बच्चे नूं पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दुध पिलाना शुरू कर दियो। पहले 6 महीनों तक बच्चे नूं सिर्फ अपना दुध दियो, इत्थों तक के पानी भी ना दियो। 6 महीनों बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दुध पिलाना जारी रखो। बिला वजह डब्बे दे दुध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दुध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा, रोशन पाकिस्तान। ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वालों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
2: सुनते रहिए एफएम 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो

इतना सब कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने पिम्स आतिशजदगी के वाक़े 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा।

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above.

my dear good lovely and smartest one is assalamu alaikum from 101 and bonjour. आपको दिल पसंद रेडियो स्टेशन FM 106 से आपका अपना मसूद अहमद आपके साथ वेलकम. आज हो गई है जनाब अगस्त की 29 तारीख, सन है 2026, वक्त हुआ चाहता है 10:12. आज के प्रोग्राम जिसका नाम है जनाब शब खेजियां, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक, बदलती तारीख तक हमारा आपका साथ रहेगा. अगर आप हमारे पास आना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं इस तरह कि आप हमें डायल करेंगे, हमें हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, द नंबर इन माई स्टाइल इज 1700 0017 1, एंड इन योर स्टाइल द नंबर इज 1111001. दिस इज द मैजिकल मिस्टिकल एंड द म्यूजिकल नंबर ऑफ लाहौर, और यू कैन से द MMM नंबर.

वेल जो टाइम किसी काम को करने का होता है, अगर उस टाइम पे उस काम को ना किया जाए तो फिर चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी होती है, ये जानना, ये समझना और इस चीज़ का अंदाज़ा होना, अंदाज़ा रखना या अंदाज़ा लगाना कि अब किस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो ये होगा कि हम हर वक्त परेशान रहेंगे और सोचेंगे कि यार ये मैं ऐसे कर लेता तो अच्छा था, और अगर ऐसा ना करता तो शायद और अच्छा हो जाता।

वेल जस्ट वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. आवाज़ सुनाई था आमिर ज़की की, और आमिर ज़की की जो ट्रैक्स हैं वो इतना है, साल इतना टाइम गुजरने के बाद भी जनाब उन्हें जब भी सुना जाए वो एक जो उनका एक तासुर है, जो उनका एक इमेज है, वो ज़रूर अपना क्रिएट करते हैं, और जो उनकी लेगेसी है वो कम नहीं होती उसमें. एनीवेज जी, आप तमाम लोग कैसे हैं कि जनाब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे जहाँ तक मेरी बात है. अल्लाह ताला का शुक्र और आपने उनकी दुआएं, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ. वेल जी, जो लोग आज वेरी फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं आपको हम कहते हैं वेलकम. वेलकम टू माय शो, वेलकम टू एफएम 101, वेलकम टू द प्लेस ऑफ मैजिक मिस्ट्री एंड म्यूजिक. मुझे कहते हैं मसूद अहमद. मैं काम गम और छुट्टियां ज्यादा करता हूँ. ये हमारे एक दोस्त थे, उनका एक पेट सेंटेंस हुआ करता था. दोस्त तो खैर अभी भी हैं, लेकिन अभी आजकल रेडियो पे नमूदार नहीं होते. वो कहते थे कि मैं काम कम और बातें ज्यादा करता हूँ. वैल जी, बात होगा तो होता है कि इंसान को परेशान करने के लिए या परेशान होने के लिए किसी बहुत लंबी चौड़ी बात की, किसी बहुत लंबी चौड़ी तमीद की ज़रूरत नहीं होती. कोई एक छोटी सी बात भी जो है, कोई एक छोटी सी चीज़ भी जो है, वो इंसान को परेशान करने के लिए काफ़ी होती है. और इंसान का कमाल क्या होता है? इंसान का कमाल ये होता है कि वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करता है. वो इंग्लिश में कहते हैं कि इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक लेमनेड. कहने को तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो इस काम को करना है ना, जो इस प्रोसेस को करना है, वो बहुत मुश्किल होता है. बहुत सारी एनर्जी लेता है, बहुत सारी आपकी कंसंट्रेशन लेता है, बहुत सारी एफर्ट लेता है. लेकिन अगर हम एक दफ़ा इसको ओवरकम कर लेते हैं और इस प्रोसेस को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर बाकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो काफ़ी आसान हो जाते हैं. एनी वेज, 111 हमारा नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं. 4471 हमारा एसएमएस का नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. आपने अपने राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, वहाँ लिखना है आपने 101, उसके बाद आपने खाली जगह देनी है, और उसके बाद खाली जगह देकर फिर आपने अपना खूबसूरत सा नाम लिखना है, और खूबसूरत सा नाम लिखने के बाद आपने एक और खाली जगह देनी है और अपना पैगाम लिखकर सेंड कर देना है 4471 पर. कभी कभी दिल करता है कि बस मैं तो मेला दिल पर जानी हुए.

मौसम तो बेईमान नहीं हो रहे आजकल, मौसम तो जनाब फुल टाइम अपनी ताकत दिखा रहा है। पेशेंगोई तो है कि जी कुछ दिनों में बारिशें, बारिशों का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा।

0: 101, the best variety. Continuous hit music now.
1: Today's hit music.
0: Q101.
2: वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. और समझ तो जो है वो कुछ थोड़ी थोड़ी इसमें आ रही थी, लेकिन सारी समझ जो है वो नहीं आ रही थी. और कहते हैं कि बाज़ुकत चीज़ों को सारा समझना भी ज़रूरी नहीं होता, जितनी ज़रूरत की समझ है बस वही आ जाए तो वही काफ़ी होती है. तो जितनी हमारी ज़रूरत की समझ थी वो हमें आ रही थी, तो इसलिए कह रहे ट्रैक है वो बहुत अच्छा था. एनी वेज, टॉपिक के हवाले से मैं बताता चलूँ कि टॉपिक मैंने जो शेयर किया है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जनाब सबसे बड़ी कंजूसी कब की थी और उस कंजूसी का आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ. 11 बजे के बाद आप लाइव कॉलिंग सेशन में शामिल हो सकते हैं. उससे पहले अगर आप ऑफर कॉल्स हैं वो मैं नहीं लेता. अब इसको आप मेरी अच्छी बात समझ लें, बुरी बात समझ लें. आपको ये बात बुरी लगती हो, नहायत बुरी लगती हो या अच्छी लगती हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कुछ करना चाहता नहीं हूँ इसमें. और उसके अलावा ये है कि अगर आपने मैसेज करना है हमें 44741 पर मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पर हमारा पेज है FM101 लाहौर, उस पर जो हमारी पोस्ट है, पोस्ट भी बल्कि बताता चलूँ कि एक नई पोस्ट भी मेरे लिए किसी चाहने वाले ने बना दी है, लेकिन वो पोस्ट है उसको मैं अभी लगा नहीं सका क्योंकि मैंने जब अदील भाई को मैसेज किया कि शाह जी हमारा जो है वो जो हमारी पोस्ट है वो ऑन एयर कर दें, तो वो शाह जी ने हमारी जो पुरानी वाली पोस्ट थी वो लगा दी. मैं भी उनको नई पोस्ट जो है वो देना भूल गया. तो एनी वेज जी, अब पुराने लोग हैं हम, पुरानी चीज़ों पे चलते हैं तो नई की कोई इतनी कोई ख्वाहिश को तमा नहीं होती, लेकिन फिर भी चलें बन गई है तो मेहरबानी है आपकी, शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नई पोस्ट के साथ आ जाएंगे और उसको हम ऑन एयर कर देंगे. तब तक मौसम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि उस पोस्ट में जो पिक्चर लगाई है ना उन्होंने, वो पिक्चर भी सर्दियों वाली लगाई है, तो सर्दियों के मौसम में सर्दियों की पिक्चर और गर्मियों के मौसम में गर्मियों की पिक्चर, क्या ख्याल है, ठीक है ना. और जी मैसेज आपके मैं पढ़ता चलूँ कि जो फेसबुक पर हमें मौसूल हुए हैं. हमें जनाब साजिदा जहूर साहिबा ने मैसेज किया फैसलाबाद से, और सोबतपुर से नज़ीर खोसो साहब ने मैसेज किया है, हमदुल्ला माला खेल साहब ने मैसेज किया है, और रियाज भट्टी साहब ने किया है मैसेज हमें शाहदरा से. इसके अलावा जो हमें रज़ा चौधरी साहब ने मैसेज किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर. चॉइस साहब कैसे हैं आप, काफ़ी दिन हो गए आपकी कॉल छोल नहीं आई. चॉइस साहब सब खैरियत है. और एहसन भाई कैसे हैं, उनसे भी काफ़ी दिन हो गए कि बातचीत नहीं हुई, हमारी तरफ से उनको भी हमारा दुआ सलाम और खैरियत जो है वो पहुँचा दीजिएगा. और गुल यासिन ना साहब ने मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों को आपने सलाम कहा, आपने रेडियो लिसनर्स क्लब को मैसेज कहा मुल्तान की तरफ से, तो बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में शामिल हुई. हमदुल्ला माला खेल साहब कह रहे हैं कि अगर कभी किसी पर कोई एहसान करो तो अपनी शान बढ़ाने के लिए इस एहसान का कभी ऐलान मत करना, वरना वही ऐलान तुम्हारे नाफरमान होने का सबब बन जाएगा. वाह वाह वाह, बेशक जनाब बिल्कुल ऐसे ही है. कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, तो बिल्कुल दरिया में डाल देनी चाहिए नेकी, और उसको फिर जताना जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैंने ये नेकी की है कभी किसी पर. और मोहम्मद हफीज़ साहब ने मैसेज किया भक्कर से, बहुत शुक्रिया. बरकत रमदानी जमाली बलोच साहब ने मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया. रज़ा चौधरी साहब खुश आमदेद कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया. नज़ीर खोसो साहब भी कह रहे हैं कि मैं सोबतपुर से शामिल हुआ हूँ, बहुत शुक्रिया. और भी आप लोगों के बहुत सारे मैसेज हैं वो मैं ऑन एयर करता चलूँगा साथ साथ, सारे अभी कर दिए तो फिर बाकी प्रोग्राम के लिए जो इंटरेस्ट है वो नहीं रहेगा. और सब लोगों तक आपका सलाम भी पहुँच गया, जिस जिसको सलाम पहुँचाया था. और क्योंकि कंजूसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर ज़िंदगी में कंजूसी ना हो तो तब भी जो है वो लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा सखी है, इसको जैसे चाहो लूट लो, इसको जैसे चाहो लपेट लो, जैसे चाहो इसको जिस तरह की बातों में चाहो फंसा लो, जिस जाल में चाहो इसको फंसा लो. तो इसलिए सब चीज़ों को साथ साथ ही लेकर चलना चाहिए है, लेकिन उसमें अपने ख्यालात जो हैं उसका इजहार तो अभी हमारा हमने नहीं करना. अभी हमने प्ले करना है म्यूजिक और करनी है बातें. आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी कंजूसी क्या की थी ये हमें जरूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि उस कंजूसी करने के बाद आपने कंजूसी करना छोड़ दी थी कि नहीं छोड़ी थी, ये अभी भी वैसे ही मजीद पक्के हो गए हैं उस पर. खाने शाने का क्या प्लान है जी आज आपका, खाना शाना खा चुके हैं नहीं खा चुके, मैं तो आज दाल चावल खा के आया हूँ, आप लोगों ने क्या खाया है ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्या खाने का प्रोग्राम है। इस मौसम में ऐसे मिर्च मसाले खाने को तो दिल नहीं करता, नरम नरम हल्की फुल्की मज़ेदार किस्म की चीज़ हो, उसके बाद ठंडा ठंडा कुछ हो,

0: cutting your listeners off.
1: Oh, thank you so much.
2: Oishku be parva. Oishku be parva. Jehda karda wafa te onnu milni saza.
0: From your station for hot music and hot fun.
3: Nobody plays more classic rock and roll.
0: Music FM.
4: Yo, Music Manny and the Click, we staying so fresh.
5: It's not just a radio. It's a sound factory.
6: वेल जब 10:00 हो चुके हैं 44 मिनट और आज का प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजियाँ मेरा आपका साथ है ठीक है बिल्कुल ठीक 12 बजे तक आपके मैसेज में मुझे मौसूल हो रहे हैं लेकिन उन्हें मैं ऑन एयर अभी नहीं करूँगा अभी मुझे बात करनी है जनाब अपने टॉपिक के हवाले से कि जिन लोगों ने अभी अभी 101 ट्यून किया उनसे हम कहते हैं वेलकम वेलकम टू माई शो वेलकम टू FM 101 वेलकम टू द प्लेस ऑफ मैजिक मिस्ट्री एंड म्यूज़िक मुझे कहते हैं मसूद अहमद हर हफ्ते के रोज़ मेरी आपसे मुलाकात होती है आज के प्रोग्राम के हवाले से बताते चलें कि जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कंजूसी कब की ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे और उस कंजूसी के बाद की क्या हालात हुए उसके पहले के क्या हालात थे कंजूसी करने की नौबत क्यों आई वजह क्या बनी ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और शेयर करेंगे इंशाल्लाह 10 बजे के बाद क्योंकि कंजूसी हम बहुत सारी जगहों पे मार जाते हैं और कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ कंजूसी मार ली जाए तो काम चल जाता है और कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ कंजूसी मारने की जगह नहीं होती लेकिन हम वहाँ पे भी कंजूसी मार जाते हैं और जब कंजूसी मार जाते हैं तो लोग उस मौके पे हमें फिर बहुत सारी और भी अल्फाज में याद करते हैं जो मैं ऑन एयर कहना मुनासिब नहीं समझता हम तो समझते हैं कि हमने अकलमंदी की है लेकिन दरअसल वो अकलमंदी नहीं होती वो जहाँ ज़रूरत होती है जिस काम को जिस बात को करने की वो हम नहीं करते और इधर उधर के जो मामलात होते हैं उसमें हम वक्त भी ज़ाया करते रहते हैं अपनी एनर्जी जो है वो भी ज़ाया करते रहते हैं अब वक्त हो जनाब क्या कह लेंगे टाइम ऐसा हो कि कोई आपका बहुत ही करीबी दोस्त हो बहुत ही प्यारा हो बहुत ही चाहने वाला हो और बहुत ही ख्याल रखने वाला हो और उस मौके पे किसी ख़ास मौके पे उसके आप जनाब कंजूसी मार जाएं तो ऐसी कंजूसी मार कर फिर जो नुकसान है वो नाकाबले तलाफ़ी भी हो सकता है और तलाफ़ी जो है वो बहुत मुश्किल भी हो सकती है माफ़ी मुश्किल हो सकती है आपके साथ कभी ऐसा क्या हुआ ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वक्त मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा जी आतिफ असलम की आवाज़ और आतिफ असलम जनाब मुझे तो ये लगता है बाज़ुकात कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले ना कि कोई एक शो किसी एक आर्टिस्ट पर करने का मौका मिले ना कि आपने सिर्फ इसके ट्रैक्स प्ले करने हैं तो आई थिंक सो कि वो आतिफ असलम होंगे और आतिफ असलम के इस ट्रैक के बाद मैं जो सॉन्ग प्ले करूँगा ना
7: तू जाने
6: वो सुन के मैं सिर्फ हैरान हो गया था कमाल
7: कोई ना
6: इसको कह लेना अखीर हो गई
7: फिर क्यों है ये तन्हाई
6: लेकिन उससे पहले
7: कैसी है ये रुसवाई
6: आतिफ असलम द ग्रेट

0: yo, yo.
1: Play more of your favorite songs every hour.
2: Yes!
1: Great.

रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकाती कमेटी की निशानदही पर 8 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुल्क माशी इस्तेहकाम और बैन-उल-अक़वामी तशख़्ख़ुस में नुमायां बेहतरी आई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की वजीर ने कहा है कि मुल्क में कैशलेस अदायगियों के फरोग के जरिए डिजिटल मईशत को मजबूत बनाया जा रहा है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने कल से जुमा तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इंतबाह जारी किया है। डिजिटल मईशत को मजबूत बनाया जा रहा है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने कल से जुमा तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इंतबाह

0: This is FM
1: 101.1. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

0: सबसे पहले तो ये जो पेयरिंग थी, अमेजिंग पेयरिंग थी ये दो, बाकी में पावर हाउस हैं हमारे पाकिस्तान आइडल के।
1: It's not just a radio. It's a sound factory. It's not just a radio. It's a sound factory.

0: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 10 to 12 thousand ਰੁਪਇਆ ਭਾਈ ਲੱਗਾ।
1: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪੈਂਚਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਸੀ?
0: ਸਰ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਬੰਦੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਰਗੋਧੇ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਬੰਦੋ।
1: ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ 1000-2000 ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ?
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੰਜੂਸੀ ਅੱਜ ਕਰੀਆ, ਅੱਜ ਜੈਨ ਮਰਗਾ ਲਈਏ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਰਜ਼ਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ।
1: ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।
0: ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਆਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ,
1: ਪੂਰੀ
0: ਟੀਮ ਸਰ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਰ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ,
1: ਜੋ ਬਾਤ ਥੀ ਵੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਵੋ 10-12 thousand ਕਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾ ਦੀਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੋ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਪੇ ਲਗਾ ਲੋ ਪੈਸੇ ਤੋ ਸਹੀ ਰਹਿ ਜਾਤਾ ਇਨਸਾਨ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
2: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ?
2: ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੂੰ, ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੋਦੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਜੀਤੇ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ।
1: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਤੋ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਲੇ ਕਿ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਆਪਕੀ ਅੱਜ ਤੋ, ਵਰਨਾ ਹਾਂ ਆਪ
2: ਹਾਂ ਬਸ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਕੋਈ
1: ਨਹੀਂ, ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕੇ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ
2: ਚਮੜੀ
1: ਜਾਏ ਪਰ ਦਮੜੀ ਨਾ ਜਾਏ।
2: तो कुछ काम थे, मतलब जैसे कि कुछ किचन की कैबिनेट थी वो खराब हुई हुई थी, और उसके अलावा कुछ एक दो जो टीवी की अलमारी थी वो टीवी लाउंज में। अच्छा खैर, हमने उसको बुलाया, हमने उससे एस्टिमेट लगवाया चीजों का कि भई ये जो अगर हम नया सब कुछ लगवाते करते हैं सारा सिस्टम ये वो, तो उसने भी हमें छोटे छोटे काम जो थे अभी उनका उसने हमें 1.5 lakh रुपए का एस्टिमेट बना के ना बता, हम दोनों परेशान, मैं और मेरी मियां ने कहा एनए वाले पैसे सस्ते हैं, काम के इतना ये सिर्फ चौकटे लगाने और उसको कहा कि वो जो प्लाई है चीजें तो हमने लेनी लेनी है चलो, लेकिन नया सामान लगाना कहते हैं, मगर ये तो बहुत ही महंगा बता रहा है अपनी बीच में दिहाड़ी वगैरह डाल डूल के ना। फिर उसके बाद हमने कहा चलो बताएंगे, तो आगे से कहता है कि आपको ना मैं एक और हल बताता हूँ, सस्ते में जान छूट जाएगी, आप सस्ते में आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। लो भी अंदा क्या मांगे दो आके, हमने कहा हाँ बताओ। वो हमें कहते हैं जी ये जो आपकी अलमारियों के जो दरवाजे हैं ना, इन्हीं को मैं ना नई प्लाई ऊपर लगा के ना तो इनको सेट करके लगा देता हूँ, और चौकटे सेट करके लगा देता हूँ, तो आपके खर्चे भी कम होंगे, इसको टीवी की अलमारी को भी इसको स्प्रे कर देता हूँ जो दीमक का है, और इसको सेट कर देता हूँ।
1: फुल उसने आपके मतलब की बात की है।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, हम भी बड़े खुश, हमने कहा लो जी। अच्छा इसमें क्या एस्टिमेट कर रहे, 20-25 thousand में काम हो जाएगा। है वो वेरी गुड एड, बहुत सस्ता काम है। हमने बड़ी खुशी खुशी ये कंजूसी वाला काम करवा लिया। और उसके बाद 6 months बाद पहले कैबिनेट एक का दरवाजा गिरा किचन में, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी कैबिनेट का गिरा, 3 जो कैबिनेट थी ना वो धड़ाम धड़ाम नीचे, शुक्र है मेरे पाँव बचे 2 times। और उसके बाद टीवी की जो अलमारी है उसकी दूसरी साइड से दीमक हमें बता रही है मैं आ गई है, मैं आ गई है।
1: ये तो फिर ये,
2: अरे आप यकीन करें, मैं हर दूसरे दिन जब ये चीजें देखती मैं परेशान होती थी कि ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने कहा भाई ये जो है ना कंजूसी बहुत ही किफायतशाली वाला थी,
1: बड़ा आप पैसे बचा रहे थे ना अपने, ये देख लेने दीजिए पैसे बचाने का,
2: पड़ गया ना डबल स्यापा, पड़ गया
1: डबल स्यापा, पड़ गया ना। फिर ये नई भी जाएंगी साथ और पुरानी भी साथ ही जाएंगी अब
2: जी, और नई भी लगनी है, और फिर ये कि ये मसला खराब हो गया, यानी 1.5 years में ना चीजों ने अपना आप दिखा दिया। बहरहाल अब सोचा नहीं, अब नहीं, हरगिज नहीं, सॉरी। इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं ना, उनको बुलाओ ना जब काम के लिए, तो मतलब उनको अगर आप उसी वक्त कुछ पैसे देके ना बेचे तो अगली दफा तो लिफ्ट ही नहीं कराते।
1: ओ सर बिल्कुल ऐसे ही है नीलापा, अब तो मतलब लेबर का ये हाल है कि अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी कम्प्रोमाइज करने का कह देना पैसों पे, तो वो जनाब आपको तो मतलब सिर्फ अपनी हद तक नहीं, फिर वो अपने इर्द गिर्द के जो बाकी जो उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें भी कहते हैं यार रोना करना चाहिए, बड़े कंजूस हैं। हाँ
2: नहीं वैसे शुक्र है कि मैंने कभी ये चीज नहीं की, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी कभी करते थे ना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसे दो तीन काम करवाया, उसको थोड़े से पैसे दिए, उसे कहा चल फिर नए वाले कम ने तू आई फिर तन कुछ कर
1: बड़ा काम होएगा तो फिर तन बाकी पैसे ना कर लेंगे तेरे।
2: अच्छा ऐसे हुआ, उसके बाद हमने एक दो दफा उसको बुलाया, वो बंदा ही नहीं आया। मैं समझती, मैंने कही जो आपने अपना हर पास माया ना वो बंदा इसलिए हाथ से निकल गया, मैं खबरदार आपने ऐसी हरकत की।
1: अच्छा और बंदे आजकल अब यकीन माने कि ये हाल है कि आप थोड़ी सी भी बात कर दें तो वो आपके हाथ से ऐसे निकलते हैं कि आप बाद में अपने हाथ ही मलते रह जाते हैं, सिर्फ
2: मलते रह जाते हैं। और पता है बाज दफा कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है बिजली वगैरह के मामले में, तो हमें इलेक्ट्रिशियन की बहुत अशद जरूरत होती है और वो हाथ में नहीं आता। इसके मैंने तो जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन स्पेशली इन लोगों को तो मैंने स्पेशली याद में रखा।
1: बिल्कुल नहीं, बहुत जरूरी होता है ये, आपकी अकलमंदी है अगर आप घर के अपने मामलात को सही तरह से चलाना चाहते हैं तो इन लोगों के साथ बना के रखनी बहुत जरूरी है।
2: 500 ज्यादा देते कोई बात नहीं।
1: हाँ मतलब आप उसको खुश रखें, मतलब उसको आए उसको आप चाहे पानी पूछें, उसको आप इज्जत से पूछें कि भाई कुछ खाना पीना है कुछ, तो मजदूरी एक अपनी जगह होती है वो तो देनी देनी है, लेकिन जो आपका अखलाक है जो
2: रवैया अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल बल्कि जब हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ तो अक्सर चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसको डेफिनेटली पूछी जाती है, क्योंकि भाई हम उसी के मरूने मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या है मतलब वो बात फिर लंबी से लंबी हो जाती है, बहरहाल ये सब भी हमारे भाई होते हैं और बस
2: बिल्कुल बेचारे मेहनत करने मजदूरी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन स्पेशली अल्लाह ताला सलामत रखे सब ये इलेक्ट्रिसिटी के काम करने वालों को, इन्होंने तो जान अतेली रखी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का ऐसे होता है भाई, ये जो हुनरमंदी जो अच्छा उन्हें पता है, उन्हें भी एक खौफ होता है, उन्हें भी एक डर होता है कि कहीं हमसे कहीं ये हमारा हुनर ले, यानी हुनर हमारा काम करवा के कहीं हमें कम पैसे ना दे दें।
2: हाँ,
1: तो इस वजह से वो भी थोड़े से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा ना हो कि हाँ जी। तो बहरहाल वो
2: ये एसी ही आप देख लेना, एसी वाले को बुला लो तो कैसे कैसे वो घातक होते हैं, उनको पता होता है उतना काम नहीं होता जितना वो
1: बता देते हैं। अच्छा और अगर आपकी बनी अच्छी भी हो ना एसी वाले के साथ ही किसी के साथ भी, तो वो आएगा
2: वो थोड़ी छील जरूर लाना।
1: हाँ वो बल्कि मुझे भी इत्तेफाक हुआ
2: जी,
1: कुछ ऐसे काम करने का, तो उसमें मैंने ना अपने मैकेनिक से पूछा, मैंने कहा यार मतलब मैं चक्कर किए तुसी ताड़े लोकां दे बारे मतलब लोकां दे ताड़े बारे व्यू इन्ने खराब क्यों हुंदे ने कि वो कहंदा सर जी पहली गल ते है कि सानू उस्ताद जड़े ने ना वो दो नंबरी सिखांदे ने पहले
2: ते काम
1: सिखांदे ने बाद च, ते सानू जड़ा ना मतलब वो एक आदत साड़ी बन जांदी है कि असी पहले जड़ा ना दाल आना सीखने ते काम करना उस तो बाद सीखने।
2: उस्ताद भी ना उस्तादियां मार देने ना। हाँ, वो पहले उन्होंने दो नंबर ही सिखा देने पक्का करते
1: हैं कि आया कि ये शागिर्दी में बैठता है नहीं बैठता है, इसको हम अपना हुनर देंगे नहीं देना, इसको हमने किस हद तक देना है किस हद तक नहीं देना, वो भी पहले ठोक बजा के चेक करते हैं उसको।
2: हाँ यहाँ पे ना ये सीन होता है मसूद भाई, जिसने सीखना ना उसने खुद ही सीखना है।
1: बिल्कुल ऐसे ही
2: वो सिखाते नहीं है इतना, शायद ही कुछ कोई होते हैं जो बता सिखा दो, ज्यादातर बंदे ने शागिर्द ने सीखना खुद ही होता है। और मेरे जितने बहन भाई आते हैं उन सबके लिए बहुत सी दुआएं, प्रवीण साहब आए, शमीम आपी हैं, और जितनी मेरी बहने आती है सादा मदीना जो भी आती है सब, कईयों के नाम भूल जाते हैं मैंने कुटन दिया फड़के, और मेरे जितने भाई परी आपकी आती है तारिक तारिक तारिक तीनों मेरे तारिक भाई और बाकी भी जितने आते हैं सब सबके लिए। रजा भाई रजा तू क्या मारे कप तो के थकिया नहीं कॉल करूं
1: चल बहुत शुक्रिया पा
2: देखो डांड में भी ये चाय बनाता रहता है। अच्छा तू पता क्या करता है ये अब स्ट्रॉ से चाय पीता ताकि दांत सही रहे, मैंने दंदियां कड़के बखानियां ने।
1: ठीक है माशाल्लाह आप बातें करने में भी कंजूसी नहीं करती आप वैसे तो।
2: नो नेवर, बिल्कुल नहीं, खुल के बातें करो नहीं तो करो ही ना।
1: ठीक है
2: मैं सर ऐसे करती हूँ, मैं बिल्कुल चुप साध के बैठी होती हूँ।
1: हाँ।
2: मेरे मियाँ मजाक उड़ाते हैं, कई दफा कहते हैं है
1: आई तो बोल नहीं रही, आई तो ठीक है,
2: खामोशी में बैठी है। तो कई दफा मैं कहते बड़ी गल है मान से। अच्छा स्पेशली रेडियो सुनते हुए मैंने टूटियां कानों पे लगाई नहीं, मैं चुपचाप काम करी जा रही होती हूँ लेकिन बोलती कुछ नहीं हूँ। तो कहते हैं यार अल्लाह खैर हो गया, वैसे रेडियो कमाल है भाई। बेगम ही कैब हो रही होंगी है।
1: हाँ वो कहते हैं रेडियो कमाल है, तेनू भी चुप करा देता है।
2: क्योंकि यहाँ पे करने क्या आई हूँ मैं।
1: मुझे आप क्या करने आए, यहाँ बातें करने आए ना,
2: कॉल कर दें किस लिए आई हूँ कॉल करके। मसूद भाई आए हैं वो बातें करें, हम क्या करने असी की आए, मैंगो लेना है।
1: बिल्कुल हम सिर्फ बातें सुनने थोड़ी आए हैं, बातें करने आए हैं।
2: करनी भी तो होती है। बाकी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजे का और बड़ा ही मखसूस किस्म का टॉपिक आप ढूंढ के लाए हैं।
1: चलिए बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिए।
2: हो रहे हैं लेकिन ऐ वाले दी मन कोई समझ नहीं सी आई।
1: चले कोई बात नहीं,
2: टेक केयर जी,
1: बहुत शुक्रिया।
2: वो फेवरेट लगाए वो तो बीजीएम लगाते होते थे ना, वो वाला बड़ा मजे का, वो जो इंग्लिश म्यूजिक का आप लगाते थे ना,
1: इंग्लिश म्यूजिक
2: में पांव हिलने शुरू हो जाते हैं खुद। मैं गाड़ी में भी फुल आवाज पे लगाती थी, मैंने आपको बताया था।
1: कोई नाम उसका याद है आपको?
2: नहीं मेरे नाम मुझे दिमाग में बिल्कुल नहीं इस वक्त आ रहा, लेकिन बहुत जबरदस्त था।
1: चले मैं एक दो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाऊंगा, फिर मुझे बताइएगा कि कौन सा था इसमें से, ठीक है? हमारे साथ। और इससे साबित होता है कि ये कंजूसी जो है वो किसी भी मामले में नहीं करती, ना पैसों के मामले में और ना बातों के मामले में। एनीवेज जी हमें बढ़ना है प्रोग्राम में इस वक्त एक ट्रैक की जानब, और ट्रैक हम आपको जनाब सुनवाएंगे ये वाला, और इस वाले ट्रैक के बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे। स्टिक अराउंड 101, मुझे कहते हैं मसूद अहमद, मेरा आपका साथ रहेगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक, 12 बजे तक। कंजूसी हमारा आज का टॉपिक है जी।

हमें कंजूसी तो नहीं थी लेकिन जल्दी ज़रूर की थी हमने शो स्टार्ट करने की। आँखों को आँखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं टूट जाए ना।

0: There's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: Well, listen, welcome back. FM 101 Radio, Pakistan, Lahore ke studio se awaaz sun rahe Masood Ahmed ki hamare saath hai next caller. Assalam alaikum.
2: Ji walaikum salam ki hal hai janab, theek thaak ho to jaa ja rahe chhat te baithe tada program sunne pe ji.
1: Kamal ho gaya ji, badi badi tusi gall milai jahaz de naal sade program. Chalo jahaz kalle hi ja rahe ho, tusi naal te nahi ja rahe.
2: ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ।
1: ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ।
2: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ?
2: ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
1: ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
2: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ,
1: ਅੱਛਾ,
2: ਤੇ ਓਹਨਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੇ, ਓਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ ਲਿਆਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਓ।
1: ਅੱਛਾ,
2: ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਦੇ ਸਾਲਣ ਗੇ, ਚਣੇ ਚੁਣੇ, ਆਂਡੇ ਸ਼ਾਂਡੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜੀ।
1: ਅੱਛਾ,
2: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ।
1: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ,
2: ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਲੋਕਲ ਚ ਬੱਸਾਂ ਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਚ ਪੈ ਕੰਜੂਸੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਗਏ ਜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆਓ।
1: ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਂਝ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ,
2: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਮਾਰੀ
1: ਜਾਣੀ।
2: ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਲਾ ਪੀ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨੀ
1: ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀ ਜੋ ਰੁਦਾਤ ਥੇ ਵੋ ਹਮੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਬਸ ਜੀ ਐਸੀ ਕੰਜੂਸੀ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾ ਬਰਕਾਤੁਹ। ਕੌਣ ਭਾਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ?
3: ਫਰਹਾਦ ਬੋਲ ਰਹੇ।
1: ਫਰਹਾਦ, ਫਰਹਾਦ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਆਪ?
3: ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਫਰਹਾਦ ਆਪ ਬਤਾਏ।
1: ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਫਰਹਾਦ ਅਭੀ ਆਪ ਸ਼ਰੀਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੈਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈਂ?
3: ਸਾਥ ਹੀ।
1: ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਕੇ? ਕੰਜੂਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕਾ ਤੋ ਅਕਸਰ ਚਲਤਾ ਰਹਤਾ ਹੋਗਾ।
3: ਟੂ ਮਚ
1: ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪਕੋ ਫਿਰ?
3: ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮੁਝੇ ਯੇ ਮਿਲਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਬਕੋ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਸਬਨੇ ਰਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ।
1: ਅੱਛਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਹੋਤਾ ਹੈ?
3: ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਗਤਾ ਹੈ।
1: अगली दफा फिर उससे ज्यादा कंजूसी करते हैं या कम करते हैं?
3: नहीं कम नहीं होता
1: है। अच्छा ज्यादा किस मामले में करते हैं?
3: यार मैं अपना जूता वगैरह जो है ना वो नहीं मैं देता किसी को। दूसरा जब मेरी मम्मी पराठा बनाती है ना आलू मेथी वाला।
1: ओए ओए ओए ओए ओए ये तो जो है ना ये तो मामला बनता है कंजूसी वाला। पर
3: बस देख लो बस देख लो। दूसरा ये भी तो कंजूसी चल रही है ना। किसी बंदे ने मुझे कहा था ठीक है यार हम प्लान बनाते हैं खाने का।
1: अच्छा
3: अभी तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
1: ओहो वो कौन है बंदा?
3: बस उसी से बात हो रही।
1: अच्छा देखें अगर आप कंजूस हो सकते हैं तो हम नहीं हो सकते।
3: मैंने ऑफर की थी सामने से आपने अभी प्लान ही नहीं किया भाई।
1: रियली प्लान इंशाल्लाह बनाते हैं। मैं इंतज़ार में हूँ कि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए ना कि बैठने का जो है वो मज़ा भी आए क्योंकि ऐसे मौसम में बस कह लें कि ज़्यादा देर किसी के साथ आप सेटिंग कर नहीं पाते।
3: वो यहाँ पे बैठाऊँगा आपको वो एयर कंडीशन होगा वो।
1: नहीं
3: एयर कंडीशन जैसे आप एयर कंडीशन में बैठे हुए
1: ना। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बैठे
3: हुए माहौल होगा।
1: चलें वो फिर कोई टाइम यानी कि बना लें फिर कुछ सोचें इस बारे में।
3: ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं।
1: चले ठीक हो गया। मैं ज़रूर सोच के तो फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा इस हवाले से। तो और किसी को मैसेज देना चाहेंगे? तो कंजूसी का कोई वाक्या सुनाया नहीं आपने? आपने बताया आपकी शीरीं भी आपके साथ हैं लेकिन आपने कोई वाक्या सुनाया नहीं ऐसा बताया नहीं।
3: छोड़ो पर यार की बता कभी।
1: नहीं नहीं जी तुसी छड़ दंदे सी उन्हां कोलों पूछ लेने। अच्छा चले बताएं बताएं जी करवाएं बात उनसे उनसे पूछते हैं कि आपकी कंजूसी का कोई वाकया वो सुनाएं हमें। ठीक है
3: बोल नहीं सकता ना वो बोल नहीं सकता मसला ही है।
1: ये कैसा दोस्त है जो बोल नहीं सकता?
3: फिर आप जो काम करते हैं भाई वही वाला मामला है।
1: अच्छा ऑफर वाला है
3: वो वाली शीरी है।
1: चलें जी अल्लाह ताला आपको खुश रखें सलामत रखें और जो कंजूसी के जो हल्का बात है वो हम कहेंगे इसी तरह प्यार मोहब्बत से आपको मिलते रहे। ठीक है चले बहुत शुक्रिया फराज अपना ख्याल रखिएगा। वालेकुम सलाम थैंक यू जीते रहें खुश रहें। वेल जी ये थे फरहाद अपनी शीरीं के साथ और उन्होंने कहा कि जी मेरी शीरीं जो हैं वो बोल नहीं सकती जैसे आप ऑफर वाला मामला रखते हैं ना वैसे वो भी ऑफर वाला मामला रखती हैं। तो अच्छा जवाब दिया आपने आपकी अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। वालेकुम सलाम खुश आमदीद कैसी हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र आप बताएं ठीक ठाक हैं?
4: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बात ये थी कि जो हमारी अनिल आपकी आई थी ना
1: जी
4: वो गलती से वो घर का इन्वर्टर नहीं होता वो खुल के आ गई थी बाद में रोना पै गया पानी भर गया टप भर गया तो वो बेचारी को भी पता नहीं चला जब अभी गई है ना तो उसे अलग पता गया कि वो पानी की जो टैंकी थी ना
1: वो
4: तो होगी खाली और लाइट भी चलेगी साथ।
1: वैसे आजकल से बड़ा मसला बना हुआ लाइट काफी आ जा रही है ऐसा ही है?
4: हाँ जी लाइट बस यही आ रही है तो बस अब नीला पाजी जो है ना वो अब गेट करे लाइट का तो भांडे तो हो गए सोने ने पाजी तुम्हें आज मैं तो कापत तो मैं भांडे पुणे सारे तो हो गए ना सोने तरीके ना मुआत होगे फेल सोने जो तो बाद। अरे बंदा ना चीज को रजा चौधरी कहते हैं बड़े प्यार से लोग
1: बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बीच में जो है ना बिल्कुल आपकी वो जो फोन बजा ना मेरा तो मैंने कहा आपके उससे मुझे एहसास हुआ अच्छा मेरा फोन साइलेंट पे नहीं था आज।
4: सर मैं ना काफी क्या कहते हैं कि 4-5 माह से आपके शो में नहीं आ रहा इसलिए नहीं आ रहा कॉल ही नहीं लगती एक तुसी नहीं मिलते दूसरा कॉल नहीं लगती। दोनों काम जिंदगी के साथ जब हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़
1: हो जाता है बिल्कुल ऐसे।
4: तो कंजूसी की यहाँ तक आती कि जो मेरी फैमिली वाले ना वो शॉपिंग खुद करते थे ना एक दिन उन्होंने मुझे मैंने कहा ये तुसी की रोला पा लेंगे हो जो जिन्हें भी कलो उडवर जाते हैं चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाना नहीं तुम रह नहीं दो मैं नहीं ठीक है तुम रही हो तो बड़े शेख हो कंजूस हो तो मैं नहीं नहीं मैं पता आइडिया होगा ना कि किए शॉपिंग की जाती है लेकिन मुंह किसी के फेडा किसी का वींगा जब वापस आए ना तो तफाकन हुआ मेरे के साथ मेरे जो ससुराल वाले ना खैर ना वो पूरी टीम आ गई
1: मैं
4: रजा चौधरी हूं कंजूसी करने के कुछ स्टाइल होते हैं कुछ तरीके होते हैं हर जगह पे कंजूसी चलती नहीं है, जैसे ये कुछ बातों में भी कंजूसी कर जाते हैं।
1: बिल्कुल,
4: जैसे फरहाद भाई आए पूछते पूछते रह गए आप, लेकिन नहीं बताया उन्होंने तो मुझे तो पता था आज ये छोड़ेंगे नहीं, ये जो हमारे आ रही है बड़ी शर्मीले आ रही है, ये दिल की बातें काट लेंगे जेब से, जिन्हें जेब कतरे पैसे नहीं काट लेंगे कुछ काट लेंगे गन्ना बंदे जो
1: बस ऐसे ही है, कोशिश
4: होती है। तो सर मेरे लिए आज ये बड़ा दिन अहम है, इसलिए कि मेरी आज कॉल लगी काफी अर्से बाद।
1: आपकी मोहब्बत है कि अगर आप इसको बड़ा दिन समझते हैं, आप कॉल मिलने को बड़ा दिन समझते हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है। चाहत है रजा भाई और बाकी भी जो लिसनर हैं आपके साथ होते हैं, एहसन भाई बाकी सब लोग, उन सब
4: भाई हैं, अब्दुल अमीर है, बोधी जाट है, ये भी मेरे ग्रुप के ही है।
1: अच्छा,
4: तो सर आपको भी मैं इन्वाइट कर सकता हूँ कहीं, तो मेरे लिए भी आपके लिए फख्र होगा कि अगर आप जैसे खूबसूरत हसीन जुमा लोग मेरे पास आएंगे थोड़ी सी जहमत करके, तो लगता नहीं है कि साहब हमारे हाथ चढ़ जाए।
1: जहमत जहमत तो मैं जरूर कर लूंगा, जहमत में कि मुझे कोई
4: सर मैं आप आपको भी ये खुला बताई दो कि मैं अपना ग्रुप यानी कि शमशी रेडियो लिसनिंग क्लब एक छोटी सी पार्टी रखा जाता हूँ।
1: अच्छा,
4: तो पार्टी में ये होगा कि मेरा कोई एक आरजी वन वन का आएगा जिसकी वजह से मैं हूँ या जिनकी वजह से हमारा ग्रुप है, जिनमें से मैं एक आरजी को इन्वाइट कर चुका हूँ, तो दिल करता है कि आप भी आए।
1: तो देखिए मैं तो ना कोई बड़ा आरजे हूँ, ना मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, ना मैं कोई बड़ा हाँ, ये आपकी मोहब्बत है, अगर आप मोहब्बत से बुलाएंगे तो मैं जरूर कोशिश
4: करूंगा।
1: काम नहीं करना, बाकी ये कि आप जब कोई प्लान करेंगे ऐसा तो बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक,
4: इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। पहले कोई 15-20 मिनट तेरे लिए तुम्हारे लिए पंजाबी दा शेर कि इक्को तू ते कमाल नहीं सोने वाला कोई काल के नहीं,
1: वाह
4: तेरे बिना भी लंघ जाएगा एडा लम्मा कोई सियाल के नहीं, पागल पागल किनू कमा एडा मैं कोई बाल से नहीं, जी करदा है कि मैं रज के रोवां किसी तो कोल रुमाल से नहीं जबकि पाके मिले बाजी ये कोई ओंदी चाल से नहीं, ये कोई ओंदी चाल से नहीं। आए मुझे लगता है इन्हें रूह के लिए आप वादा कीजिए, हम ये भी जानते हैं सर तुम्हें आना नहीं।
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अगर हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। आप
4: हाँ सर हमारे ना मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारी जो लिसनर है फाइजा नसीर वो थोड़ी सी बीमार है,
1: अल्लाह पाक
4: तो सबके आगे रिक्वेस्ट है कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें, जो भी बीमार है अल्लाह पाक उन सबके लिए सेहत वाली जिंदगी दे, जो इस दुनिया में चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मदद करे। अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी हो ना लगी हो तो इसमें मैं हाथ जोड़ के माजरा चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो जनाब मैं गल करना किसी जुत्ती लानी है डंडा पड़ना रोटी पालनी पाल लो मैं कार कट
1: लगा
4: अल्लाह
1: ये। तो रजा चौधरी साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया रजा भाई आपकी मोहब्बत का आपकी चाहत का। तो देखें चाहत से मोहब्बत से कोई बुलाए तो जाना ज़रूर चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, लेकिन बस कुछ अगर तो मजबूरियाँ ऐसी ना हों कि हम उन मजबूरियों को छोड़ नहीं ना सकते हों, तो फिर हमें किसी भी ऐसी दावत में ज़रूर शामिल होना चाहिए और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत मुख्तसर है और बहुत गैर यकीनी है और कुछ इसके बारे में हमें इल्म नहीं होता। तो बहरहाल ये कि अभी हमने प्ले करनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और इसके बाद हम बढ़ेंगे ट्रैक की जानिब, और उस ट्रैक के बाद हम फिर एक दफ़ा आपके साथ होंगे अपने कंजूस प्रोग्राम के साथ।
5: मां दा दूध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गजा है, माओ अपने बच्चे नू पैदाइश दे पहले घंटे विच ही दूध पिलाना शुरू कर दियो, पहले 6 महीनों तक बच्चे नू सिर्फ अपना दूध दियो, इथों तक के पानी भी ना दियो, 6 महीने बाद मुनासिब अजाफी गजा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक अपना दूध पिलाना जारी रखो, बिला वजह डब्बे दे दूध ते फीडर दी वरतों तों परहेज करो, क्यों जे मां दे दूध दा कोई बदल नहीं। सेहतमंद बच्चा रोशन पाकिस्तान, ए पैगाम रेडियो पाकिस्तान वल्लों मफादे आमा लई पेश कीता गया है।
6: मां दा दूध बच्चे दी पहली मुकम्मल ते सब तो बेहतरीन गिज़ा है, मां अपने बच्चे नू पैदाइश ते पहले घंटे विच ही दूध पिलाना शुरू कर देवे, पहले 6 महीने तक बच्चे नू सिर्फ अपना दूध दियो, इथों तक कि पानी भी ना दियो, 6 महीने बाद मुनासिब इजाफी गिज़ा दे नाल नाल 2 साल दी उम्र तक ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਬਿਲਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਮੁੱਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਫਾਦ ਆਮਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7: ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਾਦੇ ਆਮਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8: I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back.

0: Well, just welcome back after this beautiful track. FM 101 Radio Pakistan Lahore ke studio se awaaz sun rahe hain Masood Ahmed ki aur hamara aapka saath rahega mazeed taqreeban 17 minute ka. Baat hum karein janab kanjusi ke hawale se aur aapke jo messages hain offered wo bhi mujhe mausool ho rahe hain 4471 par hame janab message kiya. Assalam Alaikum Masood bhai, show acha lag raha hai aapka mujhe aur topic ke bare mein main soch rahi hu ki maine kab ki kanjusi. Ye bhi sochna hai, ye bhi agar aap sochenge to phir hum kya sochenge. सोचने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई सोचने वाली बात है भला, ये तो हम रोज़ करते हैं. और जनाब सोनी कह रही कि नहीं आवारी आवारी ही है, सो प्लीज़ हो सके तो प्ले कर दीजिएगा, अगर ना हो सके तो फिर कोई भी इंग्लिश सॉन्ग कर दीजिएगा बट अच्छा सा. वैसे तो मैं अपनी तरफ से ना मैं आपको बात बताऊँ, एक वैसे एक सीक्रेट है, बिज़नेस सीक्रेट है ये कि मैं कभी अपने शो का जो टॉपिक है ना उसकी मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, इतनी ज़्यादा मैं उसकी तैयारी नहीं करता कि मेरा टॉपिक जो है कोई बहुत ही हाई फाई किस्म का हो, बहुत ही गहराई में जाने वाला हो. हाँ लेकिन मुझे बस सॉन्ग्स का ज़रूर होता है कि सॉन्ग्स जो मुझे अच्छे लगते हैं ना मैं वो प्ले करूँ, और जो मेरा ख़ुद को सुनने को दिल कर रहा होता है वो मैं प्ले करूँ, ताकि उससे मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट है ना प्रोग्राम में मेरा वो और डेवलप हो जाता है, बजाय इसके कि टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँ मैं. बहरहाल अपनी अपनी हर किसी की क्या कहते हैं स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, मेरा थोड़ा सा ऐसा है. एनीवेज जी, और क्या बहुत शुक्रिया कह रही हैं कि हाँ ना ये सॉन्ग बहुत अच्छा है और मैंने भी सुना था कुछ दिन पहले, आपकी प्लेलिस्ट अच्छी होती है जोनी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जोनी अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो. और कह रही हैं कि जी जी आप बहुत अच्छा करते हैं, जो ऑफर कॉल नहीं लेते मैं तो शुक्र नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है, ये आपने गुस्सा किया है, यहाँ आप गुस्सा कर गई हैं. एनीवेज जी 4447111 पर आपकी कॉल जो हैं वो मैं मौसूल हो रही हैं. और लेट्स सी, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप?
0: अल्लाह का शुक्र. तारिक भाई आप बताएं, ठीक ठाक हैं?
1: पहचान लिया आपने मुझे
0: फिर से, क्या मुराद है?
1: मसलन ये काफी देर वक्त बात हुई आपसे
0: मेरी. अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं लास्ट प्रोग्राम में तो मैं नहीं आ सका, लेकिन जो उससे पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें मेरी आपकी बात हुई थी.
1: लेकिन माशाल्लाह वेलकम टू रजा चौधरी, आए हैं काफी अच्छे बार.
0: हाँ जी रजा भाई, काफी दिनों
1: के बाद. जितने भी कॉलेज हैं सभी के नाम याद रखते हैं. एक्चुअली पता क्या, नीला पी हमारे बस वो कहते हैं ना कि वो जेल में वही बाहर रहती हैं, नीला पी आए हर शो हमें अच्छा लगता है.
0: बिल्कुल वो आती हैं तो अपने साथ बाहर लेके आती हैं ना.
1: जैसे ना आपको चाहिए आज डॉग्स तो चाहिए उस हिसाब से कि हमें जो कॉलर्स हैं हमें इनवाइट करें. ऐसा ये वैसे तो अभी मौसम नहीं है बुलाने का, अभी तो शक्लें ठीक होते हुए 2 महीने लगेंगे.
0: इसमें सबसे बड़ा मसला टीम को आने में होता है.
1: ठीक है, आना चाहिए, बुलाना चाहिए, नवंबर में बुलाएं.
0: हाँ
1: अलहमरा में अरेंजमेंट कर लें, हमें जितने हमारी आएगी कॉस्ट आएगी हम पे करेंगे. तो इसका ये कि कुछ होना चाहिए प्रोग्राम.
0: बिल्कुल जी, इंट्रैक्शन होना चाहिए आरजेस का और लिसनर्स का इंट्रैक्शन होना चाहिए. और बाकी आपकी सजेशन वैसे भी ऑनर चली गई, और अगर मेरी मुलाकात हुई सर से इस दौरान कहीं ऐसे तो मैं भी ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि सर ये रिक्वेस्ट.
1: मैं स्पेशली आऊँगा इंशाल्लाह मिलने, थोड़ा सा वेदर ठीक होता है ना एक्चुअली.
0: इंशाल्लाह
1: फिर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ा अच्छा लगेगा
0: जी इंशाल्लाह. तो टॉपिक के हवाले से बताएं ना सर, कंजूसी. हाँ
1: कंजूसी बड़ी अजीब सी है पर बता देता हूँ मैं ना गाँव जाता था खाला के पास, वो ना हड्डियाँ बनाती थी इस पर मिट्टी वाली ना हांडी में. तो मैं रात को खाना वो छुपा लेता था कि सुबह पराठे के साथ खाऊंगा. तो मेरे कजन कहते थे यार तू कितना कंजूस ही है यार, तो छुपा के रख लेना. भैया मुझे बड़ा अच्छा लगता है.
0: अच्छा तो क्या बनाती थी हांडी में जो आप छुपाते थे?
1: उनकी ना दाल भी अच्छी थी, ये मसूर की दाल नहीं होती,
0: मूंग मसूर की दाल होती है,
1: बड़ी जबरदस्त बनती थी.
0: बिल्कुल.
1: तो मेरे कजन कहते यार तू की कंजूस वाला काम करता रहना खा लेना. मैं भैया मैंने पराठे ना सुबह खाने का मजा ही कुछ और
0: था. तो वो पराठे जो बनते थे वो भी गैस पे बनते थे या लकड़ी पे बनते थे?
1: नहीं लकड़ी पे बनते थे, मक्खन ऊपर लगाती थी खाला ना, ऐसे देसी घी में बनाती थी लेकिन मैं ऊपर मक्खन लगाता था चौपड़ के. उनके हमारे उनके उनके जो ससुर थे ना मेरी अम्मी के भी चचा लगते थे, वो कहते हैं चौपड़िया इन्हें देना तो चौपड़िया खाना. वो मैं 2-3 दिन पराठे खाए थे बिलीव करें.
0: लेकिन देखिए उन्होंने कंजूसी नहीं की तो आज आप उनका जिक्र कर रहे हैं. अगर वो भी कंजूसी करती मक्खन थोड़ा थोड़ा लगाती
1: नहीं, तो फिर बड़ा था हमारा बहुत प्यार था खाला के साथ. अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे,
0: आमीन. अच्छा ऐसे भी कभी हुआ है कि किसी दोस्त को बड़ी शदीद जरूरत हो बैलेंस की कॉल करने की, तो आपने कहा नहीं यार मेरे पास मेरे भी मोबाइल में बैलेंस नहीं है?
1: नहीं वो तो खैर ये चीजें तो खैर छोटी हैं, पैसे भी दे देते हैं, सम टाइम वापसी नहीं मिलती, बिलीव करें
0: पैसे
1: देना नहीं मिलती फिर। हाँ अभी भी एक फ्रेंड आया था मैंने थोड़े दिन पहले, मैंने उसको दे दिया लेकिन मैंने जेन में था इसने वापसी नहीं देने और बाकी नहीं दिए उसने, 2 महीने हो गए। पता है लोग ना खा लेते हैं, सेविंग नहीं करते,
0: ऐसे ही है
1: लोग जो आया खा गए खा लिया उड़ा दिया, सेविंग भी तो करनी चाहिए ना।
0: अच्छा सेविंग का कंजूसी से कोई ताल्लुक है?
1: देखें कंजूसी अगर आप नहीं करेंगे या सेविंग नहीं करेंगे तो ये एक जैसी है, कंजूसी और सेविंग मैं समझ एक जैसी है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आप फ्यूचर में तो बड़ा हाथ फैलाने से बेहतर नहीं कि आप थोड़ी सी सेविंग कर लें, कंजूसी करके कर लें बेशक।
0: अच्छा अब क्या लगता है आपको कि जब हम किसी मामले में कंजूसी बरतते हैं कि जहाँ पे नहीं बरतनी चाहिए तो उससे बरकत पड़ती है काम में, या कुछ उस चीज़ का कोई उस इसका कोई ताल्लुक होता है उसके साथ?
1: नहीं उसके साथ तो कनेक्ट नहीं है, मैं नहीं समझता।
0: अच्छा
1: तो जैसे कि मेरे घर में क्या करते हैं फैमिली में ना, जिस कमरे में जाएंगे फैन चला देंगे, एसी चला देंगे, मैं बंद करता रहता हूँ पीछे पीछे, मैं बंद करके आओ बिल आना है।
0: अच्छा ये कंजूसी होती है या ये समझदारी होती है?
1: मैं तो समझदारी समझता हूँ, घर वाले कहते हैं कंजूसी कंजूस
0: तो देखें कंजूसी तो तब हुई ना तारिक भाई कि जब पंखा आप वहाँ बैठे हुए हैं कमरे में और पंखा आप नहीं चला रहे, ठीक है आप
1: नहीं, वो तो कंजूसी,
0: वो कंजूसी है। लेकिन अगर आप साथ वाले कमरे से उठ के आए और वहाँ पंखा बत्ती चलता छोड़ा है तो फिर वो बेवकूफ़ी है, वो गलत है। हाँ
1: अब ये इसको कंजूसी तो नहीं कहना चाहिए ना।
0: एग्जैक्टली इसको कंजूसी नहीं, इसको समझदारी और कफायत शुआरी कहना चाहिए। ऐसे ही है। चलिए बहुत शुक्रिया तारिक भाई, अपना ख्याल रखिएगा, जीते रहें खुश रहें,
1: सभी को सलाम दीजिएगा।
0: जी वालेकुम सलाम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे जी बस यही जो पॉइंट था ना डिस्कस करने का, जो कि हमें किफ़ायत शुआरी में, कंजूसी में और समझदारी में कुछ थोड़ा सा फ़र्क जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ अवक़ात होता है कि हम जिस चीज़ को समझदारी समझ रहे होते हैं या कुछ दूसरा जिस चीज़ को कंजूसी समझ रहा होता है, हमारे नज़दीक वो समझदारी होती है, हमारे नज़दीक किफ़ायत शुआरी होती है। कि अब अगर एक काम हम अपने घर की मिसाल ले लें कि सालन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, बाज़ अवक़ात ज़्यादा बना लेते हैं हम, कि अच्छा चलो हम एक टाइम की बजाय 2 टाइम का बना लेते हैं ताकि गर्मी का मौसम है और किचन में जाना, किचन में काम करना भी आसान नहीं होता, तो उसके लिए अगर हम ये करते हैं कि जी ये करते हैं कि हम जो एक टाइम के लिए खाना बनाया है उसको हम 2 टाइम चला लेते हैं या 3 टाइम चला जो है वो यूज़ कर लेते हैं कि एक सालन ख़त्म हो जाए उसके बाद हम जो है वो नया सालन बना लेंगे, बजाय इसके कि अभी एक सालन मौजूद हो हमारे पास और हम जनाब एक नया सालन फिर बना लें और फिर करते करते थोड़े थोड़े करके फ्रिज में या फ्रीज़र में जो है इकट्ठे होते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कंजूसी नहीं रहती कि हम एक चीज़ को मुकम्मल ख़त्म कर लें उसके बाद नई चीज़ फ़्रेश बना लें, तो ये मेरे ख्याल में तो ये समझदारी में बात आती है, इसमें कंजूसी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आजकल जैसे सिचुएशंस चल रही हैं सोशली, लोगों की फाइनेंशियली भी कह लें कि बहुत अर्निंग जो है वो डिफ़िकल्ट हुई हुई है, तो उसमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके तो हम चीज़ों को ज़ाया होने से भी बचा सकते हैं और अपनी पॉकेट का जो बोझ है उसको भी कम कर सकते हैं। एनीवेज वी हैव द नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।
0: आप भी आप
2: कंजूसी नहीं है? जी मैं
0: नहीं नहीं आप
2: तो... मैं आपकी बात सुन रही हूँ कि कंजूसी नहीं है, ये किफायत शारी है मसूद।
0: बिल्कुल
2: जो आप बातें कर रहे हैं ना कि सालन बच गया तो ये बहुत अच्छी बात है, उसको जाया क्यों करें भाई,
0: बिल्कुल
2: है दूसरे टाइम खा ले और जब खत्म हो जाए तो दूसरा बना ले,
0: दूसरा बना ले।
2: जाया करने वाली बात अच्छी नहीं है, बहुत बुरी बात है, रिस्क है।
0: बिल्कुल
2: है, या तो आप अगर कोई आप घर आती हैं खातून वगैरह ऐसी काम करने उनको दे दें या खुद खा ले, इसमें कोई मसला थोड़ी है, ऐसी बात नहीं है।
0: अच्छा आपकी बात से मैं थोड़ा सा ये भी देखा कि अब जो घर में काम करने वाली ख़वातीन जो आती हैं या कोई भी लोग ऐसे आते हैं, अगर उन्हें भी हम बचा हुआ सालन दें ना तो वो भी बड़े नखरे करते हैं, कहते हैं कि बाजी आप तो खुद नहीं खाती हैं और हमें दे रही हैं आप ये।
2: नहीं नहीं मैंने ये पूछा भी ना कि ऐसा तो नहीं भाई तुम इधर उधर फेंक देती हो या कुछ, तुम लेके ही नहीं जाओ। कहनी नहीं नहीं बाजी आप कैसी बात कर रही हैं, हम तो खाते हैं, हमारे बच्चे तो इंतजार में रहते हैं। भाई मुझे इतना तरस आया, मैंने कहा वाकई अगर नहीं खाती तो हम खुद ही खा लेंगे। तो
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुमने भी बाहर जाके फेंकना है तो भाई फिर रहने दो, फिर हम दे दो, हम खा लेंगे।
2: वो है बेबरकती और बड़ा गुनाह है। वैसे कंजूस लोगों को तो पसंद भी नहीं किया गया हमारे मजहब का भी यही कहना है मसूद, ये कंजूसी ना अच्छी बात नहीं है थोड़ा सा आपका। लेकिन अभी जो रजा ही नाम था ना जो भी गए कॉलर आप,
0: जी जी
2: नहीं तारिक साहब थे,
0: जी जी।
2: तो तारिक साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, जहाँ जरूरत है वहाँ इस्तेमाल करें, अब कमरे में कोई नहीं है, पंखा चल रहा है, लाइट चले, तो ये तो बिल्कुल फजूल खर्ची हो गई। एक और इस दौर में तो हमें किफायत शारी की बहुत जरूरत है,
0: बहुत जरूरत
2: है। एसी तो अब तो चलाना ही बहुत कम हो गया, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं पैसे ना, चल रहा होगा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन आजकल तो हमारी कराची का मौसम इतना प्यारा हुआ है, ये पंखा हाँ बहुत प्यारा, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया।
0: थोड़ा सा हमारी तरफ भी भेज दें, लाहौर में तो बड़ा हब
2: मौसम है आजकल। तो आप लोगों ने तो पहले इतने अच्छे अच्छे मौसम गुजारे हैं, अब हम गुजार रहे
0: ये आधी ठीक है
2: आपके यहाँ का भी ठीक हो जाएगा, जैसे आपने तो बताया भी ना नेक्स्ट वीक से है बारिशों का।
0: हाँ बिल्कुल, बारिश
2: अल्लाह ताला सबको ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा रखे, दिमाग और दिल भी ठंडे ठंडे रहे,
0: जिस जिस की बारी आती जाएगी उस उसको अच्छा मौसम मिलता जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो अल्लाह मियाँ के है काम होंगे हमारा, हमारे अल्लाह ताला भी तो बड़े इंसाफ से चलते हैं ना, वो नहीं कंजूसी करते,
0: वो नहीं कंजूसी करते, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
2: तो कंजूसी जो ये है, आप कह रहे थे ना,
0: आपने कभी की थी?
2: मैंने, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कंजूसी की, बल्कि मुझे कंजूस लोग बहुत ही मुझे बुरे लगते हैं सच्ची में, बहुत ही मुझे चिढ़ाती है, जरा जरा सी चीजों पे ले दे करना मचाना।
0: तो जब हमारे तो अंकल ने कहीं कंजूसी की हो, आपने उन्हें टोका हो, वो कुछ
2: नहीं,
0: याद
2: नहीं, नहीं कभी नहीं? भी नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा खुले हाथ हैं।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जैसा मैं सोचती थी वैसे ही है, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी मेरे दो बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों की यही आदत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये हुक्म भी है मैं मसूद के, एक बंदा आया आपके पास वसल्लम के पास के, या रसूलुल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, वो सॉरी मैं हुजूर का नाम ले लिया, हजरत अली करम अल्लाह वजह की बात है, वो कहने देना शुरू कर दो। मैं क्या दूँ हजरत, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, अगर एक खजूर भी पड़ी ना तो आधी रख लो और आधी दे दो, तो वो तो आप सदका दें उससे बढ़कर आपको मिलता है, लोग सदका देते हैं कतराते हैं, भाई बढ़ाओ अगर अपना रिस्क बढ़ाना है, आप इतनी सी दोगे अल्लाह ताला उसके बदले पता नहीं कितनी दे देगा,
0: ज्यादा दे देते हैं।
2: तो हाथ इंसान का इतना फालतू ना खर्च करे, ये इससे भी मुझे चिड़े, बिना जरूरत ना पैसा फेंके, लेकिन जहाँ जिसको जरूरत है वहाँ जरूर अपने हाथ को खुला रखना चाहिए, मदद जरूर करनी चाहिए जो आपको नजर आ रहा है कि हाँ
0: जहाँ आप कर सकते हैं, जहाँ आप कर सकते हैं,
2: हाँ जो हम कर सकते हैं और जिसको जरूरत है, बिला वजह नहीं पानी में पैसा बहाएं खाम खा अपना दिखाने के लिए, मैं इसके साथ खिलाफ हूँ, हमें सिर्फ अपने अल्लाह को दिखाना है, बंदों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और ना कोई शौक है, और वो किसी काम का भी नहीं है। अच्छा मसूद एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे, ये कल मुझे पता चला था, रहमान आए थे कल ना, अचानक आ गए थे, डॉक्टर ने आए थे तो उन्होंने बताया कि जिया अंजुम की तबीयत बहुत खराब है, और मुझे इतनी फिक्र लगी हुई है जब से, मैंने कल कैसे पता करूं कहां से करूं, अगर आपकी मुलाकात हुई आपको पता हो तो बताइएगा कैसी तबीयत है,
0: मैं इंशाल्लाह जरूर, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे आपसे ही पता चला है, तो
2: अच्छा,
0: मैं
2: मेरी तरफ से ही
0: पूछिएगा,
2: बहुत बहुत मेरा सलाम और दुआएं
0: कहिएगा,
2: तो आपका हमेशा अच्छा ही होता है, खुश रहें, आबाद रहें, निमरा के लिए भी बहुत सारी दुआएं, देखिए उन बेचारी से आज तक मेरी बात नहीं, लेकिन आपकी वजह से वो मुझे याद रहती है, कैसा खूबसूरत ही रिश्ता है, जब मसूद का नाम आएगा निमरा का भी आएगा, जब निमरा का आएगा तो मसूद का भी आएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह,
0: बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में हमें याद रखिएगा,
2: बिल्कुल सबके लिए, सब सुनने वालों के लिए, नीला के लिए भी बहुत सारी दुआएं,
0: बहुत शुक्रिया,
2: और ये चौधरी साहब दो हैं, सबको मेरा सलाम, जो भी है
0: सब चौधरियों को सलाम पहुंच गया आपका,
2: सबको सबको अल्लाह हाफिज, जीती रहे, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज। वेल जी ये थी हमारे साथ आपा परवीन, जो हमें कराची से कॉल करती हैं और कह रही हैं कराची का मौसम बड़ा अच्छा हुआ है आपा, कराची आने को दिल तो बड़ा करता है लेकिन बस क्या करूं, मेरा कोई रिश्तेदार जो है ना डायरेक्ट वहाँ पे नहीं है, तो मैं इसलिए आ नहीं पाता, कराची अभी तक चक्कर नहीं लगा। एनीवेज जी, ज़िया भाई का आपने ज़िक्र किया तो वैसे तो बड़ी बात है कि गलत अपनी जगह है कि हम एक जगह काम करते हुए भी अगर हमें एक दूसरे के बारे में इतना पता ना हो तो ये हमारी भी गलती है और हमें आगे बढ़ चढ़ के पूछना चाहिए। बहरहाल मैं ज़रूर इस हवाले से अपडेट लूँगा आपा, कि अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखें। वेल जनाब, अब वक्त है कि हम आपसे लें इजाज़त, और प्रोग्राम का जो हमारा आज का टॉपिक था वो बेसिकली कह लें कि कंजूसी नहीं था ये तो जस्ट हमने एक बहाना बनाया था आपसे बात करने का।

बस ये कि जनाब कंजूसी में और समझदारी में जो है बहुत कम फर्क होता है, तो इसका ख्याल रखते हुए चलिएगा। थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को समझ लेना कि हमें कहाँ कंजूसी करने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं, और दूसरे के लिए जो रूम है ना वो ज़रूर रखना चाहिए कि जिस चीज़ को हम दूसरे की कंजूसी समझ रहे होते हैं, हो सकता है कि वो अपने नज़दीक वो उसको समझदारी समझ रहा हो और अपनी तरफ से वो उसको बहुत बेहतर करने की कोशिश करना चाह रहा हो, लेकिन उससे उतना बेहतर हो ना पा रहा हो। तो थोड़ा सा हमें रूम ज़रूर देना चाहिए, फ़ौरन से उसको कंजूस का ताना या उसको मशहूर जो है वो इस तरह से नहीं कर देना चाहिए। उसके जज्बात को, उसके एहसासात को, ख्यालात को भी समझना चाहिए, और जब किसी को समझाने की ज़रूरत पड़े तो कहते हैं कि उसको अलहदगी में, तन्हाई में आराम से समझाना चाहिए। एनीवेज जी, अगर इन सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते को रात 10 से 12 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और हमें दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह एंड हैज़ द बेस्ट।

ट्राइनिंग फ्रिक्वेंसी होगी दोस्तों आपकी FM 101। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े FM रेडियो नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन आप सुन सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके साथ शेयर करता चलूँ, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, 101 का ऑफिशियल फैन पेज, उस पर प्रोग्राम के हवाले से पोस्ट मौजूद होगी, आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। 12:30 तक बैक टू बैक जबरदस्त किस्म का आपको म्यूजिक सुनवाएंगे और इस ट्रैक के बाद आज का टॉपिक क्या होगा, किस हवाले से हम गपशप करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करना है। लास्ट फ्राइडे प्रोग्राम के बाद बहुत तेज बारिश हुई थी, ऑलमोस्ट प्रोग्राम के दरमियान में ऑलमोस्ट 1:35 या 40 में बारिश का आगाज हुआ था और काफी जगह पर लाइट गई थी, बल्कि रेडियो में भी जब एकदम लाइट ऑफ हुई तो मैंने ऑनर कहा था गई ना बत्ती तो उसके बाद काफी ज्यादा दोस्त कॉल्स भी नहीं कर सके, तो उसकी रीजन यही थी लाइट ना होने की वजह से। अब चुके टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो सियाड़े हो चुके हैं जी, अब वहाँ जो है वो मोहल्ले में अगर 10-12 टावर लगे तो एक टावर में डीजल डालते हैं, बाकी में कहते हैं बस जान दो जी गुजारा चल रहा है। नजम शराज की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, बड़ा जबरदस्त ये ट्रैक है और बड़ा ब्राइट सा इसका म्यूजिक है, अगर आपको नींद आ रही है तो प्लीज सो जाए आप, और अगर जागने का मूड है तो आज हमारे साथ 2 घंटे गुजारिएगा। ड्राइव करते प्लीज ध्यान से ड्राइविंग करें, अपना ख्याल रखें और अपने से मुंसलिक अफराद का ख्याल रखिएगा। तेज रफ्तारी जो है वो उससे सख्त परहेज करनी है आपने, जैसे आप सब झूठ से परहेज करते हैं ऐसे तेज रफ्तारी से परहेज करनी है।

एसएमएस करने के लिए जी अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देंगे और खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर। और अगर आप पहली दफा मैसेज कर रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे अपने रेगुलर कॉलर जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा दूसरे दोस्तों को मौका दें। फर्स्ट टाइम अगर आप कॉल करेंगे तब भी आपने हमें बताना है। आज हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम नए लोग जो हैं वो अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकें। 0511111001 ये हमारा नंबर होगा, इस पर इंशाल्लाह हम कॉल्स जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे 12:35 या 40 के बाद प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कॉल्स। और उससे पहले आपके 4471 के मैसेजेस होंगे। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैसेजेस आपने 4471 पे लाजमी करने हैं दोस्तों। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और जहां जहां हमारी आवाज़ सुनी जा रही है तमाम दोस्तों को कहेंगे खुश आमदीद। बंदा नाचीज को कहते हैं जी गजनफर महमूद ज्ञानी, ताल्लुक मेरा जी जन्नत नज़ीर से जिसे कहते हैं कश्मीर। 12 बजे से लेकर 2:15 तक आप तक आपका साथ रहता है आपके साथ, और 1:45 से ऑनवर्ड जो है वो हम हल्की फुल्की पोइट्री जो है जो लोग बहुत अच्छी शायरी पढ़ते हैं वो हमें सुनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खूबसूरत सी महफिल सजती है। सजाद भाई जब रेगुलर अपना ऊंचा शौक शुरू करेंगे तो फिर 15 मिनट हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर हमारा टाइम 2 बजे तक ही रहा करेगा क्योंकि उनका ऑनवर्ड जो ऑफिशियली प्रोग्राम की टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने ढेर सारे मैसेजेस करने हैं 4471 पर, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपके पास एक्सेस है तो आपने 4471 पर मैसेजेस ज़रूर करने हैं। इसके अलावा फेसबुक पे एक अदद पोस्ट मौजूद है, आपने वहाँ पर भी कमेंट करने हैं। मौसम जो है अच्छा खासा, जो लास्ट कुछ दिनों में बारिशें हुई थी काफ़ी ठंडा हो गया था, रात भी बड़े सुकून की गुजरती थी, लेकिन ये तीसरा या चौथा दिन है गर्मी ने ऐसा कि वापस डेरे डाल लिए और गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। वो कह रहे हैं ना सोड़ा ना, हम तो यहाँ से नहीं जाने वाले। कल भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में अचानक बारिश शुरू हुई, लेकिन उस बारिश के बाद भी हब्स का जो मामला है वो काफ़ी तेज़ रहा। काफ़ी ज़्यादा लकी लोग हैं जो कि मरी, कश्मीर, एबटाबाद और इन जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, काफ़ी खुशनसीब लोग हैं। एक तो ये भी है ना कि हमें हर दूसरे शख्स की ज़िंदगी आसान लगती है, अपनी मुश्किल लगती है, दूसरा बंदा हमें लगता है खुशनसीब है। हालाँकि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब जैसे पहाड़ों पे जब कभी आप लोग जाते हैं ना वहाँ रिलेटिव्स के घर, वो जब आग पे खाना बना रहे होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी तारीफें करते हैं यार आग तो पक्या तो बड़ा मज़ा आता है, आग के पके खाने का जो टेस्ट है वो क्या टेस्ट है जी। आग मतलब लकड़ी वाली आग की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो खाना लकड़ियों में बनता है इसका जो टेस्ट है वो कहीं गैस वाली आग का तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ पे अपने यहाँ पे इस्लामाबाद में पिंडी में जहाँ भी रह रहे हैं, छत पे छोटा सा आग वाला सिस्टम आप रख लें लकड़ियों का, बना लिया करें। हमेशा दूसरों की जिंदगी हमें आसान और मजेदार लगती है। अल्लाह लियो खेड़े पास टुर पे हो दाने पे दाना जी। चलें जिस ट्रैक के दौरान आज का टॉपिक भी आपको बताते हैं कि आज किस हवाले से हम गपशप करेंगे, किस चीज़ पे आप मैसेज करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि आने वाले जो 1-2 महीने हैं सख्त शादियों वाले हैं जी, अगस्त के एंड, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने जो हैं सख्त शादियों वाले हैं, तो हमने कहा कि आज इस पर गपशप करते हैं। आई थिंक काफ़ी अर्सा पहले प्रोग्राम शबगम में मैंने ये टॉपिक रखा था, आज मैंने कहा फिर दिल कर रहा है इस पर बात करने का, क्योंकि अनकरीब एक बड़े अजीज़ी दोस्त की शादी है, अजीज़ दोस्त की शादी है। मैं तो मशवरा देता हूँ कि अभी भी टाइम है सोने बच जा। दोस्तों आपने ये बताना कि पार्टनर पसंद का होना चाहिए या ऐसे भी चलेगा। इस टॉपिक को बहुत सीरियस आप लोगों ने नहीं लेना, ये बस हल्की फुल्की चिट चैट के लिए आपके लिए मैंने रखा है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें जो हम इस प्रोग्राम में करेंगे, बस ये मुझे बता दें कि पार्टनर पसंद का होना चाहिए या ऐसे भी चलेगा।

क्या जबरदस्त म्यूजिक था दोस्तों, आप लोग काफी गिले शिकवे करते रहते हैं कि आप रीजनल म्यूजिक जो है वो शामिल नहीं करते। मैं पश्तो ट्रैक भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, काफी दफा हम सराइकी म्यूजिक को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा ये बलोची बड़ा जबरदस्त म्यूजिक था, इसको आज हमने प्रोग्राम में शामिल किया। टॉपिक ये है, इस पर हम गपशप करेंगे, और एक दफा मैं पहले भी आपको बता चुका, आई थिंक शबगप में हमने इस हवाले से गपशप की थी, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में शादियों का सीजन है, तो आज इस हवाले से हम हल्की फुल्की बातचीत करेंगे कि दोस्तों पार्टनर पसंद का होना चाहिए या ऐसे भी चलेगा। इस हवाले से आपने मुझे अपनी जो राय है वो हमसे शेयर करनी है। इसके अलावा हम और भी गपशप करेंगे आखिरी प्रोग्राम के जो 15 से 20 मिनट है उसमें हम शायरी भी शामिल करेंगे। तो आज सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि मशवरा जो है, हम काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ना कन्फ्यूज़ एक चीज़ को लेके होते हैं। वो इस तरह कि मैं अगर आपको ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी आदत बहुत अच्छी है, कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो, कोई भी चीज़ सेल करनी हो, मतलब फ़रोख्त करनी हो, उस हवाले से वो मशवरा ज़रूर करते हैं। लेकिन वो एक नहीं, तीन चार लोगों से मशवरा करते हैं, और उनकी हमेशा से फिर बार बार उनको ये शिकवा रहता है, कॉल्स आती हैं कि यार समझ नहीं आ रहा, आपने ये कहा है, उसने ये कहा है, मैं क्या करूं, बड़ा कंफ्यूज़ हो गया हूं। तो ऐसे जो दोस्त हैं उनके लिए एक तो ये कि आप लाजमी मशवरा करें, लेकिन हर किसी से मशवरा करना मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, जितने ऑप्शंस आपके पास आते जाएंगे ना, इतना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। इसलिए जब आपने कुछ सोचा है, एक मशवरा जो आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त से करना चाहते हैं, उससे करें। हर किसी के पास मत जाएं कि जी मेरा ये आइडिया है। हर बंदा जब अपने ख्यालात की चटनी बनाएगा ना, तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि बस एक या दो, मैक्सिमम दो जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट है, उन लोगों से मशवरा किया करें, ताकि आपकी जो सारी प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो सके। किसी भी कारोबार के हवाले से अगर आप मशवरा करना चाहते हैं, तो कोशिश करें उस कारोबार में जो लोग कामयाब हैं उनसे आप मशवरा करें। वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे, आपको बेहतरीन मशवरा ही देंगे। और अगर किसी आप फेलियर पर्सन के पास जाएंगे जो ऑलरेडी फेल हो चुका होगा, वो आपको ये कहेगा छोड़ दे यार, इसका मैं कुछ नहीं रखे है, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कोशिश ये करें कि जो सक्सेसफुल पर्सन है उस फील्ड में या किसी भी हवाले से आप मशवरा ले लें, जो उस तजर्बे से गुजर चुका है या उसकी ज़िंदगी काफ़ी इन मामलात से गुजर चुकी है। तो ऐसे ही बंदे से आप मशवरा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें जो आसान हो, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। बाज़ लोग जो हैं वो बड़े सख्त किस्म के मशवरे देते हैं, तो आपके लिए ना चीज़ें जो हैं बाज़ूकात काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो 4471 के आपके पैगामात हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, साथ facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पे जो कमेंट्स हैं। अब्दुल नूर हाशमी साहब ने फेसबुक पे हमें मैसेज किया है, हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अमीना हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच जी, आपके आपने एहसास दिलाया कि आप साथ हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ फेसबुक पे देखते हैं जो कमेंट हमें मौसूल हुए हैं, 051-111-0101 पे। दोस्तों आपसे कुछ ही देर बाद आपकी लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमारा जो ऑफिशियल फ़ैन पेज है फेसबुक का, उस पर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर पोस्ट मौजूद है। और इसके अलावा 4471 पे आपके जो पैगामात होंगे उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अदनान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सीलेंट आपने लिखा है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ताहिर अजीज, अस्सलाम वालेकुम मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रदर, कैसे हैं जी? मैं बहुत ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र जी। आरजे राहत बानो मुअज्जम फ्रॉम रावलपिंडी से आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। इसके अलावा डॉक्टर रबीहा हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपने इस्लामाबाद से मैसेज किया, आपने कहा जी काफ़ी अर्से बाद आपको प्रोग्राम सुना जी, पसंद का होना चाहिए जी आजकल के दौर में। अमीना कहती है क्या नहीं भाई, आजकल के दौर में पसंद होनी चाहिए, ऐसे वैसे नहीं चलेगा। 12:27 हो चुके दोस्तों, एक और जबरदस्त ट्रैक आपको सुनवाएंगे। आप जानते हैं कि 12:30 तक हम बैक टू बैक बड़ा जबरदस्त म्यूजिक सुनवाते हैं, और ये आतिफ असलम का ट्रैक मेरा बहुत फेवरेट है, और इसके लिरिक्स क्या कमाल क्या था, आपको बड़ा अच्छा म्यूजिक सुनवाएंगे। अगर आप ड्राइव करते हो हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो प्लीज यहां से ड्राइविंग करें, और थोड़ा सा वॉल्यूम इस ट्रैक का इंक्रीज कर दीजिएगा, और जब हम दोबारा बोलना शुरू करेंगे तो बेशक आशा कर दीजिएगा आप कहीं हमारी आवाज से तंग ना हो जाए। अल्लाह ले ओ किड़े पास टुर पे हो।

0: पास
1: कॉल्स फिलहाल दोस्तों आप लोग अभी मत करें, कॉल्स हम शामिल करेंगे 12:45 के बाद। नंबर मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा जब हम कॉल्स शामिल करेंगे। तो कॉलर्स के साथ ना हम डिफरेंट किस्म की गपशप करेंगे। कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बैक टू बैक आपने दोहराने हैं। मेमोरी चेक आज हम करेंगे कि कितनी जल्दी आपको चीज़ें याद होती हैं। और मैं खुद अगर अपने हवाले से बात करूं, मुझे तो बिल्कुल चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन आज देखते हैं कि हमारे जो लिसनर हैं वो जहां जहां से हमें सुन रहे हैं जब कॉल करेंगे तो वो कितनी चीज़ें याद रखते हैं। इस पर आज हम कॉलर के साथ गपशप करेंगे। अदरवाइज आप लोग भी इस पर कॉमेंट कर सकते हैं, जो फेसबुक है 4471 है, कि पार्टनर जो है वो पसंद का होना चाहिए या वैसे भी चलेगा। साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक भी आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। उस पर भी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। ट्रांसमिशन के हवाले से अगर किसी किस्म की कोई कंप्लेन है, आप तक आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही या ट्रांसमिशन नहीं आ रही, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा थ्रू कॉल्स, SMS एंड फेसबुक। हमारी टेक्निकल टीम मास्टर कंट्रोल रूम जो है वो इस वक्त 24 घंटे हर वक्त मौजूद रहते हैं ट्रांसमिशन क्लियर एंड क्रिस्टल आप तक पहुँचाने के लिए। पाकिस्तानी ड्रामास के OST काफ़ी ज़्यादा सुने जाते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी। ना सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामास बल्कि इन OSTs को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का OST आपको सुनवाने जा रहा हूँ, ये आप सुने, लौट के वापस आते हैं, करेंगे ढेर सारी बातें। अमीना तलगंग से हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जी मैसेज किया है।

0: देखिए
1: 12:39 हो चुके हैं जी, आपने देखना नहीं है ये चूंकि हम एडिट नहीं कर सके आपसे कुछ ही देर पहले, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे के करीब ये ट्रैक जो है मैंने देखा था, बल्कि एक जगह सुना था आपको। लास्ट टाइम भी मैंने प्रोग्राम में बताया था कि कभी कभी ना काफ़ी ज़्यादा जो आपके बहुत करीब एक सर्कल होता है वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं देखते हैं। तो एक बहुत अजीज़ हैं, उन्होंने अपने स्टेटस पे ट्रैक पोस्ट किया था, तो मैंने वहाँ से सबसे पहले इसको देखा कि ये पाकिस्तानी ट्रैक है, पाकिस्तान एक फेमस ड्रामे का OST है। फिर हमने इसको डाउनलोड किया एंड से जो देखिए है वो एडिट नहीं कर सका था, तो वो शुक्र है आखिर से हमने उसको पकड़ लिया। दोस्तों टॉपिक जो है वो चूंकि आने वाले वक्त में शादियों का सीज़न है तो उससे रिलेटेड मैंने कहा हल्की फुल्के हम इस पर गपशप करेंगे, बाकी कॉलेज के साथ एक डिफरेंट मामला होगा। टॉपिक ये है क्या लाइफ पार्टनर आपका जो है वो पसंद का होना चाहिए या फिर ऐसे ही चलेगा या ऐसा भी चलेगा, इस पर आप लोग कॉमेंट करें। बिलाल झंग कैंट से आपने मैसेज किया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया, आपने कहा जी मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप कहते हैं कि आपका स्पोर्ट्स का शो बहुत अच्छा होता है, मेरे दोस्त ये अच्छा नहीं लगा आपको, चलें स्पोर्ट्स की तो आपने तारीफ की, इस हवाले से भी ज़रूर बताइए कि सेकंड मैसेज है बिलाल जेहलम से आप मैसेज कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। राना नज़ाकिर साहब उकाड़ा से मौजूद हैं, ब्रदर पोइट्री भी शामिल किया करें मेरे भाई। हम 1:45 से ऑनवर्ड वक्त काफ़ी ज़्यादा चुके हैं, ऑब्वियसली हर बंदा 2 घंटे का जो है प्रोग्राम नहीं सुन सकता और मसरूफियत होती है, इंसान सो जाता है, लेकिन आपने अगर कभी पोइट्री सुननी हुई तो 1:45 से ऑनवर्ड ज़रूर सुनिएगा, हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसके अलावा समरा मैसेज कर रही है इस टॉपिक के हवाले से, आपने कहा वो पार्टनर नहीं होता जो आपका मन पसंद ना हो, अब वो तो सिर्फ ज़िंदगी भर का कॉम्प्रोमाइज होगा, बाकी आप बेहतर जान सकते हैं। मैं कैसे बेहतर जान सकता हूँ, मैंने ये तो दोस्तों अल्लाह ले खेड़े पास टुर पे हो। आपसे कुछ ही देर बाद दोस्तों आपके लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फिलहाल हम आपके जो फेसबुक के मैसेजेस हैं, बिलाल कहते हैं जी सर जिस दोस्त की शादी उनका नाम अजीज है सच्ची बताना, जी जी अजीज ही है, कजन है मेरे मेरे भाई, आप क्या सोच रहे हैं इसीलिए मैं कहता ना अल्लाह ले खेड़े पास टुर पे हो, जैसे आप सोच रहे हैं अगर उनकी शादी हो तो मैं इतने खुशी से बताऊं कि उनकी शादी होगी बिलाल साहब बहुत शरारती हो गए हैं आप।

डॉक्टर किश्वर आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से, कहते हैं लाइफ पार्टनर पसंद का होना चाहिए और सॉन्ग्स कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। इसके अलावा उस्मान बिन इमदाद जद्दा से हमें सुन रहे हैं जी, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, और मैं और मेरे बेटे अब्दुल्ला और आयान सुन रहे हैं जी ड्राइव करते हुए, गॉड ब्लेस यू आपने लिखा है, बहुत शुक्रिया उस्मान बिन इमदाद, आप हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आपको भी जी, आपके बच्चे आपके साथ उनको ढेर सारा प्यार, ध्यान से ड्राइविंग कीजिएगा जी। इसके अलावा रोजी शेख हमारे साथ मौजूद हैं, शो अच्छा है, लाइफ पार्टनर अल्लाह ही चूज़ करता है और दुनिया में उसको हमें हमारी पसंद बना देता है जी, बिल्कुल ठीक का रोजी आपने इस हवाले से कहा, थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। इस पोस्ट को दोस्तों अपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे जो इस वक्त पोस्ट हमें मौसूल हो रही है। इसके अलावा दोस्तों आजकल सोशल मीडिया जब आपको याद होगा जब 2009-10 के बाद इसका काफ़ी ज़्यादा राइज आया था तो लोग इसको काफ़ी फ़न के तौर पर इस्तेमाल करते थे और एंटरटेनमेंट का एक ना बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया होता था, जब आप कहीं पे किसी भी चीज़ में स्टक हो चुके हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से परेशान हैं या टाइम पास करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट वाली सिलसिला होता था सोशल मीडिया। लेकिन आजकल बड़ा डिप्रेसिंग किस्म की चीज़ें, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं चीज़ें और आपको ना हर कुछ मिनट्स बाद एक बड़ी डिप्रेसिंग वीडियो नज़र आती है, कुछ कमेंट्स इस तरह के, कुछ स्टेटस इस तरह के, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पैरेलल में भी हमारे इर्द गिर्द भी होती हैं और हमारी चूँकि हम इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें लाजमी इस हवाले से बातचीत करनी चाहिए। ये रिसेंटली आपने देखा होगा आप छोटे बच्चों के हवाले से, बच्चियों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस सामने आए हैं और अभी रिसेंटली हरिपुर में भी इस तरह का एक वाक़ा है जो बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है कि इंसान सोच भी इस हवाले से सोचे भी तो रूह काम जाती है। अल्लाह ताला सब वालिदैन को जो है वो हिम्मत दें, ये इतने जो गहरे दुख उनको मिलते हैं। और इसके अलावा एज ए सोसाइटी हमारा जो है वो फ़र्ज़ क्या है, वो ये है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो फैलाई जानी चाहिए, अब सबको ये पता होना चाहिए, सब लोग इस हवाले से बातचीत करते हैं कि बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा ना केयर करनी चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आप किसी के। अभी रिसेंटली कई ऐसी स्टोरीज़ हैं कि आपके घर के लोग जो हैं उनसे जो है वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है, तो बच्चों के मामले में ना ज़ीरो टॉलरेंस रखें जी, किसी भी जो पेरेंट्स के अलावा जो रिश्ते हैं उनसे आप अकेले में मिलना, कहीं दूर आने जाने देना, इस पे सख्ती से ना आप लोगों को अमल करना पड़ेगा क्योंकि आगे वक्त इस तरह का आ रहा है। देखें एक दफ़ा कोई चीज़ नुकसान हो जाए फिर उसके बाद आप सवाए जो है वो परेशानी के या काश इस तरह ना होता, तो ये चीज़ें जो है वो हमें ख़त्म करनी चाहिए। और इसके अलावा आप इस हवाले से कानून भी हैं, सख्त सज़ाएँ भी दी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ जब आपसे दूर चली जाती है, बिछड़ जाती है, फिर उसके बाद मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि तकलीफ़ और दुख सिर्फ उसी को है जिसके घर से कोई फ़र्ज चला जाए या खुदा ना ख्वास्ता किसी के साथ इस तरह का मामला हो। अल्लाह ताला सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन ये चीज़ें एज ए सोसाइटी आप लोग अगर टीचर हैं या अगर आप किसी भी प्रोफेशन में काम करें तो वहाँ पर ज़रूर इस हवाले से अवेयरनेस दिया करें कि बच्चों के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। स्कूल अगर वो जा रहे हैं किसके साथ जा रहे हैं, वैन वाले हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट करें, उनका बिहेवियर देखें बच्चों के साथ कैसा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता चूँकि हम सुबह जब मैं ऑफ़िस के टाइम ऑफ़िस जब हम जा रहे होते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वैन करवाते हैं बच्चों के लिए और बच्चे अपनी मर्ज़ी से कोई कहाँ लटक रहा होता है, कोई किस सीट पे बैठा होता है, तो ये चीज़ें देखा करें, ऑब्ज़र्व किया करें कि बच्चों को कैसे स्कूल लेके जाया जाता है, वापस कैसे लाया जाता है, और बिहेवियर उस शख्स का जो आपके बच्चों की गाड़ी चला रहा है या जिसके साथ पिक एंड ड्रॉप वाला आपने मामला सेट किया हुआ है उनका लाजमी देखा करें। ये एज ए पेरेंट जो है वो हमारी सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये इन चीज़ों को ना लाजमी देखा। इसके अलावा एक और ये बच्चों की परवरिश के हवाले से या इस तरह जो देखें आजकल हम वैसे भी बच्चों से प्यार करना जो हमारे कल्चर में है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का हो चुका है, वो जी आप ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा आपके बड़े ज़रूर होते हैं जो कैसे प्यार करते हैं, बच्चों को बुला के उनको तंग करना, उनको टीज़ करना, उनको छेड़ना, नोचना, नोचना इन सेंस के बस गाल खींच लेना, ये प्यार करना। और हमारे भी जो वो हैं डराते हैं जी, मैं आपको ये ना कहा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इसके अलावा बच्चों का जो कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा शेक होता है वो ये कि आप एकदम से जी फैमिली के 10 बंदे मौजूद हैं उनके सामने जी बच्चों चलो जी
एबीसी सुनाए जी, चलें जी आप टेंथ का टेबल सुना दें, चलें जी आप आयतुल कुर्सी सुना दें, तो बच्चे जो हैं वो बाज़ुकात एकदम से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें ना छुपाने शुरू हो जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो चला जाता है। तो छोड़ दें उनको अपनी लाइफ में जैसे वो हैं, और बस ख्याल रखा करें उनका। और ट्रस्ट के हवाले से दोस्तों मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, बजाय इसके के बाद में हम किसी के खुद रोएं, किसी पे किसी किस्म की बात करें, तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। 12:48 हो चुके हैं, आज कॉल थोड़ी लेट हो गई हैं, एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी जानिब से ये आपके लिए, आप लोग सुने वापस आते हैं। मेरे जुशान भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे ड्यूटी ऑफिसर हैं, प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी एक, अब 50 मिनट बाद आए, पता नहीं कितने चले गए थे, अल्लाह ने थोड़ा ध्यान किता करो। धड़क

0: चलें जी दोस्तों, अब आपकी लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे 0511111001 FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है। बंदा नाचीज को कहते हैं जी गज़नफर महमूद क्यानी। हफ्ते में तीन दिन दोस्तों आपसे मुलाकात रहती है, 8 से 10 जुमरात और जुमा, वो हमारा लोकल प्रोग्राम होता है सिर्फ इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द उसकी आवाज़ जो पहुँचती है। लेकिन हफ्ते की रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो हमारा प्रोग्राम है ये वर्ल्ड वाइड भी सुना जाता है। इसके अलावा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में FM 101 की फ्रिक्वेंसी जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ हमारी आवाज़ जाती है। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो भी इस वक्त हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं। आप लोग हमें फेसबुक 4471 के ज़रिए अपने होने का एहसास दिला रहे हैं, तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेजेस हैं लेकिन उससे पहले जो है मैं आपकी कुछ लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, चूँकि आज वक्त हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं कि आज की पहली कॉल हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: नज़ीर साहब कैसे हैं
1: आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप खैरियत से हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ नज़ीर भाई। लास्ट टाइम मुझे लगता है कि बिजली जाने की वजह से आप भी कॉल नहीं कर सके।
1: बस यही बात आप समझ गए।
0: मैंने इंतजार किया था, मैं हालांकि ऑनर उस दिन तो मैं 2:25-30 पे मैंने ऑफ साइन आउट किया, मैंने कहा चले अभी कॉल आ जाती भी आ जाती।
1: जी बिल्कुल ऐसे ही था जी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा।
0: सुनाए नज़ीर साहब, एक गेम खेलते हैं छोटी सी, ये कोई बहुत ज्यादा वो परेशान करने वाली नहीं है।
1: जी जी।
0: वो इस तरह के मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, वो आपने मेरे जैसे मैं मुकम्मल करूंगा उसी सीक्वेंस से आपने मुझे बताने हैं कि ये क्या जुमले थे। टाइम शॉर्ट होगा।
1: जी जी।
0: चले स्टार्ट करते हैं। मतलब चार जुमले होंगे, 4 या 5, तो आपने उसी सीक्वेंस से बोले। मैं आपके लिए 2 दफ़ा, चूंकि आप हमारे सीनियर कॉलर हैं तो मैं आपसे के लिए 2 दफ़ा सुनिएगा। किताब, चम्मच, बादल, साइकिल और मोम। एक दफ़ा फिर बोल देता हूँ। किताब, चम्मच, बादल, साइकिल और मोम। अब आपके पास शॉर्ट टाइम है, जल्दी से आपने ये दोहराने।
1: किताब, चम्मच, साइकिल।
0: आगे पीछे हो गया सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं तोड़ना है नज़ीर साहब।
1: ठीक है, किताब, चम्मच, साइकिल, आगे चीज ही भूल गया।
0: ओ बिच्चू बादल तुसी छोड़ के अल्लाह ले, बादल कितने रह रहे। ठीक है, अच्छा नज़ीर भाई आज सेकंड सेगमेंट में कॉल कीजिएगा। ठीक है
1: जी, जरूर करूंगा। और एक बात मैंने कहनी थी, बताया भूल ही गया हूं।
0: भूल के चले, माजरत बुला दी आपको।
1: हाँ मैं सलाम देना चाहूंगा और अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, इश्तियाक साहब, मतलब इश्तियाक साहब और एजाज मुगल,
0: ठीक है,
1: दोनों को अल्लाह ताला से कामला था फरमाए उन्हें अदाबाद।
0: आमीन
1: सर। तमाम काम तमाम लेसन को मोहब्बत बुला।
0: ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं जी 0519202540, ये भी हमारा टेलीफोन नंबर है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तोकीर मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमारे साथ मुजाहिद और मंसूर, मुजाहिद मंसूर का सॉन्ग प्ले कर दें। मैं कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी पहले अपना नाम तो दसी छोड़ो।
2: हाफिज अब्दुल्ला मलकन।
0: हाफिज अब्दुल्ला, कहाँ से? मलकन से कॉल कर रहे हैं।
2: मलकन, ये सालों के मैं ट्राई हर हफ्ते स्पेशल ट्राई कर दूं चैनल साहब आपकी आवाज क्लेम कर रहे
0: हैं। अच्छा, यानी आप रेडियो पे भी नहीं सुन सकते मेरी आवाज?
2: रेडियो पे सुन सकते हैं लेकिन कॉल नहीं मिलती आपकी।
0: कॉल नहीं मिलती लाला, मैं माजर चाहता हूँ। वैसे देखें कॉल तो मैं बैक टू बैक शामिल करता हूँ लेकिन वो कभी कभी नहीं होता। तो बताएं सेहत कैसी है आपकी लाला?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी आज भी आपके लिए जाग रहे हैं सर।
0: आज आप जाने नहीं देंगे मुझे
2: जी?
0: क्या कहा आपने, मुझे समझ नहीं आई।
2: मैंने कहा आज भी आपके लिए जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सर क्या बात है जी, मोहब्बत है आपकी, आप मेरे लिए जाग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लाला
2: आपकी मौजू पर?
0: मौजू पे बता दें, शादी पार्टनर पसंद का होना चाहिए या ऐसे ही चलेगा?
2: सर ये तो आपको पता है मुसलमान मेरी तकदीर की होती है और दोनों अच्छे होते हैं, या तो इंतखाब करें कि हद तक इस हमारे जो मतलब है उसके अंदर एक हद तक खुद भी इंतखाब की जरूरत है।
0: बिल्कुल
2: सर, शादी अच्छी रही थी सर, मैंने शादी अच्छी रही थी।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपना ख्याल रखना लाला ढेर सारा, ठीक है?
2: मेहरबानी,
0: बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जी। 57 मिनट हो चुके हैं जी 12 बज के, बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, तुम्हारी चुप और हमारा लहजा कभी मिलेंगे तो बात होगी, प्ले कर दे बाय आतिफ असलम। क्या बात है बिलाल साहब, आतिफ का एक ट्रैक प्रोग्राम में शामिल है, आज एक नया ट्रैक आया आतिफ का, मैं आपको वो सुनाता हूँ, वो भी इश्क से रिलेटेड है, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है, तो वो भी आप सुनकर इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
3: अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। मैं तो आपसे किसी बात कर रही हूँ।
0: मैं पहचान लिया मैडम आपको, तो मैम आपसे क्या कहेंगे पर आप बता दो,
3: आप क्या फिश कर सकते हैं?
0: आप टॉपिक सुना है आपने?
3: जी टॉपिक सुना है।
0: एक वो हमारे पास टॉपिक ऑप्शन वाला भी है, दूसरा ये हम छोटी मोटी गेम खेल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आपके साथ गेम खेल के आप डांट ना दें कि एक ही कर रहे हैं तो
3: ठीक है।
0: चले हम टॉपिक पे बता दें।
3: मैं आपको बात बताऊं कि जब हमारा जमाना था ना तो हमारे माँ बाप भी काम करते थे हमारे लिए,
0: ठीक हो गया,
3: तो वो हमें भी काम थे फिर
0: ठीक हो।
3: जमाने में बहुत जरूरी है बसम की शादी,
0: आजकल के जमाने में,
3: आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है बसंत की लाइफ पार्टनर बसंत होना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर जरा इधर उधर हो जाए तो कहते हैं माँ आपने करवाया था रिश्ता, पापा आपने करवाया था, मसला बन जाता है ना।
0: और जो पसंद की शादी करने के बाद भी थोड़े से इश्यूज होते हैं, फिर वो कहते हैं चलो साड़ी अपनी पसंद ही से होना, गुजारा करना है किसी न किसी तरीके ना।
3: वो तो है ना, वो तो माँ बाप के सर से उतर जाते हैं ना।
0: सही है,
3: माँ बाप कहते हैं आप जाने और आपका काम जाने।
0: अच्छा, इसका मतलब है माँ बाप अपने सर से उतारते हैं।
3: यही बात है ना बेटा कि आजकल बहुत मुश्किल है, वो भी ऐसी है कि सास ससुर के साथ गुजारा मुश्किल होता है उनका।
0: अच्छा,
3: हम लोगों के जमाने में हम लोग डरते थे, सास ससुर से डरते थे, बात करने से डरते थे, हर काम आगे आगे करते थे कि ये ना हो खफा हो जाए। आजकल तो बहुएं अपनी मर्जी से काम करती हैं।
0: बिल्कुल सही, ठीक है, चले अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है,
3: बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया,
0: जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ जी। राना नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद है जी, आप कहते हैं जी लाइफ पार्टनर बेहतर हो यही कि जिससे मोहब्बत हो, अगर वो नहीं फिर कोई भी ना हो, यानी कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। और आपने साथ साथ कहा कि बट लवर जो है वो जो वर्ड आपने लिखे है वो तो मैं ऑनर नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा कि वो बाद में काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम भी देते हैं, जो समझे नहीं तो ज़िंदगी मनाते ही गुजर जाती, मतलब एक दूसरे को समझने में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। इंसान की फितरत है कि जब इसे पता चल जाए कि कोई रह नहीं सकता सुकून से तो भी चैन छीन लेते हैं। मतलब बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है राना नज़ाकत साहब, आप कहाँ से मैसेज आपने किया, अपना नाम के साथ साथ प्लीज़ शहर का नाम लाजमी लिखा करें ताकि हमें पता चल सके हमारी आवाज़ कहाँ सुनी जा रही थी। रात के एक बज चुके हैं जी, आप FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल, मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी, दामने को के पहाड़ियों के दामन में है जी हमारा ये बहुत ही प्यारा सा स्टूडियो। और नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, क्याने भाई कहते हैं?
0: और जी कैसे हैं आप?
4: अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो नज़ीर अंकल आए थे, इनको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। यार ये बहुत ही स्वीट कॉलर है, क्या यार इनकी गुफ्तगू में मजा होता है।
0: क्या बात है जी, क्या बात है, चले जी आपसे तो गेम ही खेलेंगे।
4: आपको भी कहूँगा और तमाम लिसनर से भी कहूँगा कि मेरी सेहत के लिए दुआ करना, क्योंकि ना मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रही।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत दें जी, अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी दें, आप किसी बहुत अच्छे बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाएं, अल्लाह पाक खैर करेगा, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज ना, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है
4: जी। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन तो मजबूरी होती है तो मैं टॉपिक से बात करूं या कोई?
0: नहीं नहीं आपसे गेम खेलेंगे, छोटा टॉपिक की करना।
4: अच्छा।
0: मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा उसके आपने बैग पे जो ये मेमोरी चेक गेम है सीक्वेंस वही रखना है आपने, ठीक है?
4: ठीक है,
0: चलें जी सुनिएगा। सेब, घड़ी, कुर्सी, दरिया और मोबाइल। एक दफा फिर आपके लिए, सेब, घड़ी, कुर्सी, दरिया और सीक्वेंस वही रखना है आपने, ठीक है?
4: ठीक है,
0: चलें जी सुनिएगा। सेब, घड़ी, कुर्सी, दरिया और मोबाइल। एक दफा

0: चलो चलो फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखे ठीक है।
1: चलो जी, तमाम करने वालों को सलाम आपके लिए ढेर सारी।
0: चलो जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों चांद वैसे देखते हैं आप लोग, मैं कल एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने लिखा था हमारे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं कि जब वाईफाई नहीं हुआ करता था ना, मतलब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो ये सबसे एक फैसिनेटिंग चीज़ हुआ करती थी, आसमान को देखना रात के पहर, तारे देखना, चांद को देखना, और बिलखसूस गर्मियों की ये जो आखिर की कुछ रातें, जो कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि रात के इस पहर छत पे जाना, अब तो छत पे जाना भी एक मतलब रिवाज ख़त्म हो चुका है, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, या उनकी आदतन खाना खाने के बाद जाके वॉक करना, तो ना आप 10-15 मिनट अपनी ज़िंदगी से निकाला करें, आप फ्रेश हो जाएंगे। अगर तो सेल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं तो एक चलो खैर, अगर आप किसी भी किसी इंसान से बात कर रहे हैं या बहुत ज़रूरी काम है आपका, तो अदरवाइज़ 5-10 मिनट लगा कर ज़रूर आप जाकर आसमान पे देखिएगा। आजकल जो चांद, आज तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरा चांद है, और बहुत प्यारी उसकी वाइब्स आती हैं, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं 5-10 मिनट के लिए ना, जहाँ बाकी ढेर सारे काम करते हैं, अल्लाह ले भी कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: क्या हाल भाई जान, ठीक है?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं अपना बहुत मीठा सा नाम बताएं पहले।
2: मीठा सा नाम आबिद सती।
0: आबिद सती साहब, आप रात की करो जाग रहे हैं, आज खैरियत है? एक हो गया अल्लाह ले, बिजली तो नहीं गई किधर?
2: बस आपकी वजह से कह रही भाई, आपकी वजह से।
0: बहुत शुक्रिया जी, आप मेरी वजह से जाग रहे हैं, मैं कारल है मेरी वजह तो नहीं जाग देने। सर बहुत मोहब्बत का शुक्रिया, आप गेम खेलेंगे रात ही एक बार?
2: नहीं भाई जी, मैं उससे डिस्टर्ब हो जाता हूं, बाकी जो आपने टॉप पे रखा है ना
0: जी जी, उस पे बात
2: करो, उस पे टॉपिक जो है ना, वो टॉपिक पे बात करूंगा कि पार्टनर जो है ना वो पसंद का होना चाहिए।
0: पसंद का होना चाहिए,
2: अभी हमारे जमाने में तो क्या नहीं भाई ये बात नहीं होती थी, लेकिन अब जो है ना मौजूदा दौर जो है इसमें सब कुछ ये सामने आ रहा है कि मतलब पार्टनर जो है वो पसंद का होना चाहिए,
0: पसंद ऐसे नहीं
2: चलेगा। ये एक बात मैं आफियर आपसे कर रहा हूँ, आप इजाजत दें आफियर हो जाए ताकि आपसे एक बात,
0: मैं बस मैं आप मुझे एक सेकंड दे, मैं बस एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करने लगा, फिर आपसे कर लेते हैं बात। दोस्तों आप इस वक्त कुछ एक बड़ा जबरदस्त ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, राहत फतेह खान की आवाज़ है, आंखों के हवाले से बड़ा प्यारा ट्रैक है, आप ये सुने, लौट कर वापस आते हैं, फिर गपशप करेंगे। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्या नहीं, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। स्टे विद अस।

0: हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त और बहुत ही प्यारे से आरजे जी सलमान खान साहब ने बड़े अरसे बाद मैसेज किया, कहते हैं पहली शादी पसंद की ही करनी चाहिए। तो सलमान भाई दूजी दारत की ख्याल है तुसी अपना ना, तुसी पहली तो वलीमा खिलाया ना दूजी का तो जरूर सलमान भाई कभी कभी याद कर लिया करें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और नेक्स्ट कॉल दी, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? आप मुझे पहचाने, मैं कौन बात कर रही हूँ?
0: आप अगर बता देंगी तो आसानी होगी, चूंकि बादाम महंगे हैं और याददाश्त कमजोर है।
1: ओहो, मैं रिम्शा बात कर रही
0: हूँ। बात कर रही हूँ, ये तो टॉपिक आपसे मिलता जुलता हो गया फिर तो।
1: जी बिल्कुल, मैंने आज तक मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं आपको सुन रही हूँ अनिल आपकी, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी कितने दिनों के बाद मैंने अनिल आपकी की आवाज सुनी है।
0: अच्छा, काफी दिनों बाद आपने उनकी आवाज सुनी। चले रिमशा, पहले आपसे गेम खेलते हैं, ठीक है?
1: जी बिल्कुल, खेलिए।
0: तो चार एक पांच वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपने ना उसको सीक्वेंस में दोहराना है, ठीक है?
1: बिल्कुल सीधा सीधा।
0: हाँ सीधा, सीक्वेंस वही रखना जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा।
1: ओके
0: चले, मैं एक दफा बताऊं या दो दफा?
1: आपकी मर्जी है, चल, दो
0: चले मैं दो दफा आपको बता दूं। स्टार्ट करते हैं जी, पहला वर्ड है अनार।
1: अनार
0: कुर्सी। पहले मुझे सुन ले, आपने बोलना नहीं तो याद हो जाएगा। अनार, कुर्सी, बादल, घड़ी, जूता, चांद। एक दफा फिर बता दे तो आपको। अनार, ठीक है, अनार, कुर्सी, बादल, घड़ी, जूता और लास्ट वाला है चांद। चलें, टाइम शॉर्ट है रिमशा।
1: अनार, कुर्सी, बादल, जूता।
0: रह गया बीच में से, एक मिस कर दिया। एक मिस हो गया। एक मिस हो गया। चले ये तो रह गया, आप मुझे बाकी बता दें जो टॉपिक है उस पर भी बात कर लें कि आपकी तो माशाल्लाह अभी रिसेंटली ताजी ताजी शादी हुई, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। नहीं मुझे आप ही ना बोले, आप सारा दिन किसी आप ही के साथ नहीं रहती आप?
1: क्योंकि मेरे घर में आप ही है ना, तो मैं उनको आप ही अभी बुलाती हूँ, इसलिए मेरी जुबान पे आप ही चढ़ गया है। अगर मैं सही बताऊं भाई आपको,
0: नहीं सुने,
1: अगर पसंद की शादी, अगर माँ बाप का भी एक होना चाहिए कि हाँ माँ बाप भी अगर औलाद को अगर कोई पसंद है तो माँ बाप भी साथ दे। मगर सबसे ज्यादा जो रोता है ना वो मर्द होता है। अगर मर्द औरत का साथ दे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा होता है ना कि प्यार जब दोनों तरफ से हो, गहरा हो, कि हाँ लड़का भी कहे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो फिर बात बनती है। अगर ये ना हो कि एक तरफ से प्यार और दूसरा आपको छोड़ जाए, इस पर कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि अगर मेरी लव मैरिज हुई है तो जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई है और मेरी मामा ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी होगी। मैं अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुश हूं।
0: माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। ढेर सारी दुआएं आपको, लेकिन हस्बैंड को आप ही ना कह देना, ठीक है?
1: नहीं, मैं
0: तो उनको ही बुलाती हूँ।
1: मैंने कहा आप इस्लामाबाद आ गए, मैंने कहा आप जरूर मुझे अपने रेडियो लेके
0: जाना है। तो उन्होंने
1: बोला ठीक है, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा।
0: चलो जरूर आप रेडियो आए, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है?
1: सलाम
0: दे
1: सकती हूँ, इतने दिनों बाद आई हूँ।
0: जी जी दें सलाम।
1: अब तो मेरी कॉल नहीं कटने वाली, क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ।
0: नहीं, आप दे दें सलाम को, मसला नहीं।
1: ठीक है, अनिल आप भी तो मेरा बहुत सलाम, बांगी आपिया, अनिल आप, मशाल आप, बहुत प्यारी बहन और इश्तियाक को का मेरा खसूसी इस्लाम बस्ती वाले अंकल, शहजाद अंकल, सभी सुनने वालों को मेरा इस्लाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी कॉल पिक की और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपको सुन रही हूँ।
0: चलो जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है?
1: ठीक है जी, अल्लाह
0: हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। सलमान भाई कहते हैं जी सोच समझ के पसंद से करनी चाहिए। सलमान भाई आजकल का फॉर्मूला बस एक हो जानी चाहिए बस।

0: नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं जी कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। आज हमारे साथ कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: प्यारे भाई कैसे आप?
1: क्या हाल है आपका?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक।
1: मिल गई है कॉल।
0: जी जी सर, नाम बता दें।
1: जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ पेशावर से।
0: मोहम्मद अली बात कर रहे हैं पेशावर से। अली भाई क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बस पहले तो टॉपिक के बारे में बात करता हूँ।
0: जी जी अली भाई,
1: टॉपिक जो था आपने अच्छा चूज किया है। आजकल के दौर में जो ये टॉपिक है चाहिए, ऐसी बातें भी होनी चाहिए। और भी जो मैं डेली 12 से 2 बजे का हर एक का प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: ठीक है,
1: और कॉल लाता हूँ लेकिन बाजे की मिल जाती, बाजे के साथ बात हो जाती, बाजे के साथ बात नहीं होती।
0: चलो सर बहुत शुक्रिया।
1: तो टॉपिक पे ये बात कर रहा हूँ कि आजकल के हिसाब में जो पहले भी एक दो कॉलर से बात की है कि लव मैरिज होनी चाहिए कि वालदैन टू बी वोन हो, तो ये हकीकत बात नहीं है। क्योंकि पहले तो सब माँ बाप की पसंद से कर लेते थे और वो अच्छा भी होता था।
0: ठीक है,
1: लेकिन आजकल का दौर ऐसे जा रहा है कि लव मैरिज होनी चाहिए, लेकिन लव मैरिज भी ऐसी होनी चाहिए कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि ज्यादातर हमने मेरे जो जिंदगी मैंने मेरी 45 पे जा रहा हूँ मैं, तो मैंने ज्यादातर देखी है कि लव मैरिज में काफी हद तक टूटी है।
0: ठीक हो गया।
1: और काफी ऐसे भी देखे हैं कि मिल नहीं है, लेकिन वो जो पहला प्यार होता है आपस में बातें करते हैं फोन पे हो गप शप हो, ऐसे इजहार होते हैं आपस में क्या कहेंगे, बस एक दूसरे के बगैर ये रह नहीं सकते।
0: रोटी भी नहीं खाते एक दूसरे के बगैर।
1: हाँ वो तो वक्त ही नहीं गुजर सकते हो जाती है, तो बाद में फिर उनका आपस में ऐसा हिसाब हो जाता है, समझ नहीं पड़ती। मेरा खुद एक फ्रेंड है, लव मैरिज उसने की है, लेकिन अब जो है वो पीटते अपने आप को। शुक्र है अल्लाह का कि आपस में रह रहे हैं, दो बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो रह भी रहे लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी खुश नहीं है।
0: चले जी, अल्लाह ताला जी सबको खुश रखे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पेशावर से आपने कॉल किया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। शायान कियानी आज हमें सुन रहे हैं, मेरे साहबजादे, और उन्होंने बताया कि आज दादी अम्मा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि मेरी वालदा पहली दफ़ा मेरे ख्याल से उन्होंने रेडियो ट्यून किया है। जब आगाज़ में मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था तो उस वक्त एक दो दफ़ा शायद उन्होंने सुना था, तो बहुत शुक्रिया माँ जी। और शायान आपका भी बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त, चूँकि मैं हमेशा गिला शिकवा करता रहता हूँ ऑनेरी कि ना तो कारण सुनते ने ना मेरी वजह तो जागते ने, बहरहाल बहुत शुक्रिया बेटा आपका, और माँ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1:37 हो चुके हैं दोस्तों, आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। आज हमने टॉपिक रखा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो पसंद का होना चाहिए या ऐसे भी चलेगा। तो मैं अमूमन एक फ़नी तौर पे एक बात कहा करता हूँ कि आजकल का जो ये दौर चल रहा है, जितना फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह टेक्नोलॉजी का दौर, सोशल मीडिया की एक्सेस छोटे बच्चों तक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वालदैन चेक एंड बैलेंस रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि बच्चा आपका फ़ोन पे लैपटॉप पे क्या देख रहा है। और जो बहुत ही मॉडर्न आप सर्कल में अगर चले जाएँ, वहाँ पे बहुत छोटी एज में बच्चों के रूम भी सेपरेट कर दिए जाते हैं और उनके पास वाईफाई का एक्सेस, मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन के एक्सेस जो है, ये मेरे ख्याल से जो है सोसाइटी के लिए काफ़ी एक हैवी और टफ किस्म का जो है वो एक जो है चैलेंज बन चुका है। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो सख्ती रखते हैं, बेतहाशा ऐसी एप्लीकेशंस आ चुके हैं कि आप अपने बच्चों का मोबाइल जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे वो ऐप्स कर सकते हैं कि आपका बच्चा कोई भी ऐप तक एक्सेस करता है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है, अगर वो कोई चीज़ डाउनलोड करता है, कोई गेम भी डाउनलोड करता है, तो उसकी फ़र्स्ट जो पेरेंट ईमेल है वो आपके सेलफ़ोन की होनी चाहिए। आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस फ़ोन पे फ़लानी गेम या फ़लानी ऐप जो है वो इंस्टॉल होने जा रही, तो आप उसको ओके या डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो चेक एंड बैलेंस दोस्तों आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अदम बर्दाश्त की वजह से جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہیں. آج کل ینگ جنریشن میں جو بچیاں ہیں, جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, ان کی ریئیکٹیو رسپانس جو ہے بہت تیز ہے, جلدی سے رسپانس کرتے ہیں. والدین کے آگے بول دینا, ان کے آگے اونچا بولنا, یا اپنی جو ہم سفر ہے اس کی وجہ سے پیرنٹ, تو دونوں رشتے جو ہیں وہ پیرالل میں لے کے چلنا ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. 051-111-0101. 1:40 ہو چکے ہیں دوستوں, یہ ہماری اس سیگمنٹ کی لاسٹ کال ہے. دین 1:45 سے آن ورڈ ہم شاعری آپ لوگوں سے سنیں گے. آپ نے اپنے بہت میٹھے میٹھے انداز میں شاعری ہمیں سنانی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دلدار صاحب لاہور سے. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ڈسٹرب تو نہیں ہو جاتا؟
1: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہنے صاحب کسی کا فائدہ ہو جائے, جو عشق ہوتا ہے نا عشق عروج پہ ہوتا ہے اور اندھا ہوتا ہے. لڑکی میں ہو یا لڑکے میں دونوں میں ہوتا ہے, لیکن یہ جو فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا اکثر ہی وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں.
0: ٹھیک ہو,
1: جو والدین کے فیصلے ہوتے ہیں نا 100% وہ درست ہوتے ہیں.
0: وہ درست ہوتے ہیں,
1: درست ہوتے ہیں وہ ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ والدین نے بچے کی تربیت کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف کوئی اور ان کے بارے میں نہیں جانتا.
0: نہیں جان سکتا, اس پہ کوئی شک نہیں.
1: خاص کر بیٹیوں والے جو ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ کسارے میں رہتے ہیں.
0: آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
1: جو بیٹوں والے ہوتے ہیں نا, ان کی نظر ہوتی ہے دولت پہ, پیسہ ہوتا ہے, گاڑی مل جائے, بنگلہ مل جائے, یہ وہ.
0: ایسے ہی
1: بعد میں آپ کو پتا ہے ریشو جو ہے نا طلاق کا بہت زیادہ ہے.
0: ایسے ہی ہے, بالکل ہے, وہی عدم برداشت اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ایڈ ہوتی رہتی ہیں نا, وہ یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. بہرحال سر اچھا لگا آپ سے بات کر کے. مجھے یہ بتائیں, دو تین ٹاپک آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کرتے؟ میں بس چاہتا ہوں ہر کوئی خوش رہے.
1: جو
0: آپ کو سوٹ کرتی ہے, اسی لیے میں نا زیادہ فورس نہیں کرتا. نہیں نہیں جی, ہمارا سیگمنٹ یہی ہے, اسی پہ بات کریں آپ. چلے, بہت شکریہ, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. دوستوں 1:42 ہو چکے ہیں, 1:45 یعنی 1:45 سے آن ورڈ آپ کے جو لائیو کالز ہوں گے اس میں جسٹ آپ نے اپنا نام بتانا ہے اور جو بھی آپ شاعری سنانا چاہتے ہیں وہ آپ سنائیں گے. مجھے بہت اچھا لگے گا. سلمان بھائی نے کہا ہے کہ محبت جو ہے بس کا سفر ہے اور شادی ہوائی جہاز کا. پریشان ہو کر آپ بس سے تو اتر سکتے ہیں لیکن ہوائی جہاز سے نہیں. اللہ لیو کہڑے پاس ٹر پہ سلمان بھائی.

चलें जी दोस्तों, अब से ऑनवर्ड आप जानते हैं कि हमारा हमने एक सेगमेंट शुरू कर रखा है। 2:15 तक आपकी हम लाइव कॉल्स बैक टू बैक शामिल करते हैं और इसमें पोइट्री का जो है वो सेगमेंट हमने शामिल किया है। अपनी खूबसूरत आवाज़ों में आप बहुत अच्छा अच्छा कलाम सुनाते हैं। थोड़ी सी कुछ पुरानी यादों के हवाले से बात करते चलो, फिर उसके बाद आपकी बैक टू बैक लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जिंदगी में कुछ चीजें जो हैं दोस्तों वो कभी वापस नहीं आती, मगर उनकी यादें वो आज भी वैसी रहती हैं। कुछ याद दहानी आपको करवाता चलो, कुछ चीजें कोशिश करूंगा आपको याद करवा सकूं, कुछ पुराने दौर में हम जा सकें। और इसकी सबसे पहली लाइन ये है कि याद करो जब सहेलियां डाकिया होती थी, जब कार्ड किसी ब्रांड का नहीं हाथों से बनाकर दिया करते थे। याद करो जब कैसेट में साइड बी में ऊपर से तीसरा गाना दिल का हाल बयान किया करता था। और याद करो जब लैंडलाइन पर 2 घंटियां बजा के फोन काट दिया करते थे और तुम समझ जाती थी कि वही होगा। याद करो जब शाम होते ही घर से बाहर जाने की इजाजत लेनी पड़ती थी और अंधेरा होने से पहले वापस आने का वादा करना पड़ता था। याद करो जब तस्वीरें कम बनती थी मगर जो एक तस्वीर बन जाती थी ना उसके पीछे एक पूरी कहानी होती थी। याद करो जब ईद पर मिलने वाले 5-10 रुपए की ईदी लाखों की दौलत लगती थी। और नए कपड़ों से ज्यादा उनकी खुशबू से खुशी मिला करती थी। आपको याद है दोस्तों ये चीज, अगर मैं आपको बताऊं कि जब ईद के नए कपड़े, आप बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, अपनी एज को 12-13 से 15 साल की उम्र तक, 6 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं, तो उसमें ये जो खुशी सबसे ज़्यादा होती थी कि ईद पे हमने नए कपड़े पहने और नए कपड़ों की खुशबू के हवाले से ये बात है कि नए कपड़ों से ज़्यादा उनकी खुशबू से ज़्यादा जो है वो इंसान खुश हुआ करता था।

0: 1:48 हो चुके हैं दोस्तों, आपकी पहली कॉल प्रोग्राम में शामिल करेंगे 0519202540। जस्ट आपने अपना नाम बताना है और उसके साथ आप जो कलाम सुनाना चाहते हैं उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: प्यारे भाई नाम बता दें अपना।
1: सर जी मैं आपकी अब्बासी बात कर रहा
0: हूँ। अब्बासी साहब क्या सुनाएंगे आप?
1: सर शायरी वाला सेगमेंट है या दूसरी गेम?
0: सर शायरी वाला। 1:45 से काम ऊपर चला गया।
1: ठीक है मैं कॉल कर रहा था, मेरे पता नहीं है उसके बाद।
0: चलें आप क्या सुनाएंगे हमें?
1: लास्ट टाइम मैंने अलीना पिंक कॉल सुनी थी, उसके बाद तो मैं कॉल ही ला रहा
0: हूँ। अच्छा अच्छा
1: कॉल शायरी सुना देते हैं।
0: जी जी सुनाए सुनाए सुनाए।
1: वह है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। करे ना जी।
0: जी जी मैं कर रहे हुआ।
1: एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे,
0: क्या बात,
1: वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके।
0: क्या बात है।
1: आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आसमान की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मट्टी के चरागों को सितारा करके। मंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद इसकी पावर है, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे खसारा करके।
0: क्या बात है। बस
1: शुक्रिया जनाब, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अनिला की मेरी कॉल तो अच्छी सी, दूसरी भी सुनते हैं।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो जब नहीं आती तो प्रोग्राम का मजा ही नहीं रहता।
0: चलो चलो बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। ठीक है
1: बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। फैज अंसारी हैदराबाद।
0: अंसारी साहब क्या सुनाएंगे?
2: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ
0: जा,
2: आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ
0: जा।
2: किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए
0: आ जा। क्या बात है अंसारी साहब।
2: अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीद है, कहने साहब आपके लिए कह रही है।
0: सर मैं सदके जाऊँ।
2: अब तक दिले खुश फहम को है तुझसे उम्मीद है, ये आखिरी समय भी बुझाने के लिए
0: आ जा।
2: दिखाने के लिए
0: आ जा। क्या बात है।
2: छोड़ के जाने के लिए आ। क्या आपके बेटे का नाम भी सयान है क्या?
0: जी जी जी अंसारी साहब।
2: और तेरी खैर, यहाँ तो अपन दोनों एक हो गए यार।
0: बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, गपशप लगाते हैं इस पे। ठीक है बहुत शुक्रिया,
2: मेहरबानी।
0: अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम
3: जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद अवैस इस्लामाबाद से बात कर
0: रहा हूं। अवैस भाई क्या सुनाएंगे आप?
3: कल दोपहर अजब सी एक बेदिली रही।
0: अरे क्या बात है।
3: कल दोपहर अजब सी एक बेदिली रही, बस्तियां जला जला के बुझाता रहा।
0: आए, आए, आए, आए।
3: और मैंने माना जुदाई मेरा मुकद्दर है। मगर ये बात मुझसे ना कहो खुदा के लिए। और कोई मुझसे कहता है कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने तोड़ डाला है। ये टुकड़े मैं नहीं दूंगा, मुझे दिल बना के।
0: अरे क्या बात।
3: सर लास्ट में है कि मैं कहता हूँ कि अपने हाथों की लकीरों को ना बदल पाया मैं। अपने हाथों की लकीरों को ना बदल पाया मैं, नसीब वालों से बहुत बहुत हाथ मिलाए मैंने।
0: क्या बात है। बहुत अच्छा ना, बहुत कमाल के अंदाज में मेरे दोस्त आपने सुनाई शायरी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
4: बराए मेहरबानी।
0: हाँ जी बराए मेहरबानी, थोड़ा वेट करते हैं असि। ठीक है इसे हस्ते बैठे हैं थे। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम सलाम। खुशन हो भी कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारा सा नाम क्या है मेरे भाई का?
4: हक नवाज से बात कर रहा हूँ।
0: हक नवाज साहब क्या सुनाएंगे आप?
5: غزل کے دو شعر سنا دوں گا آپ کو.
0: سنائے سر سنائے سنائے.
5: وہ جو ہمیں تم میں قرار تھا.
0: کیا بات.
5: وہ جو ہمیں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کرو یاد خواب سا وہ سما. کرو یاد خواب سا وہ سما. ابھی پاس بیٹھے تھے ہم شہاں.
0: کیا بات ہے.
5: لیا ہاتھ میرا جو ہاتھ میں. کئی ٹوٹی کانچ کی چوڑیاں.
0: کئی ٹوٹی کانچ کی چوڑیاں.
5: وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا.
0: قرار تھا.
5: یاد ہو
0: کہ نہ یاد. کیا بات ہے نواز صاحب. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی نواز صاحب راول پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: نذیر بھائی بہت شکریہ. کیا سنائیں گے
6: جی. ایک تو وہ انصاری صاحب نے ایک شعر چھوڑ دیا کہ جیسے تمہیں آتے ہیں نہ آنے کے بہانے. ایسے ہی کسی روز نہ جانے کے لیے
0: کیا بات ہے. کیا بات.
6: تو اب خیر لطف تو تب آئے گا جب انیلا بہن آئے گی. وہ سنائیں گی تو شاعری کا مزہ آئے گا. ہم تو ویسے چلو گزارا کرتے ہیں.
0: سر آپ سارے میرے لیے سارے بہت قابل احترام ہیں. بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ سیگمنٹ. تو سنائیں سر نذیر بھائی.
6: سر محفل منہ موڑا جنان تو نے تب سے محفل میں جانا ہی چھوڑ.
0: جانا ہی چھوڑ دیا. کیا بات ہے. کیا بات.
6: تو نے سمجھا نہ جواب قابل. ہم نے کرنا قاصد روانہ ہی
0: چھوڑ دیا.
6: تو نے اشکوں کو سمجھا سفید پانی. ہم نے آنسو بہانا ہی
0: چھوڑ دیا.
6: تو نے سنی نہ آو پکار جب سے ہم نے درد بتانا ہی
0: چھوڑ دیا.
6: تو نے سمجھا نہ محفل کے قابل قدر ہم نے سارا زمانہ ہی چھوڑ دیا.
0: سارا زمانہ ہی چھوڑ دیا. کیا بات. کیا
6: بہت شکریہ.
0: بہت شکریہ نذیر بھائی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے.
6: بہت شکریہ جی.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ.

0: नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम। मैंने आपके लिए एक शेर बोलना है जी।
0: आए जी आए सुनाए जी सुनाए
1: आपके लिए जी। मैं जो शायर कभी होता है जी
0: जी करो तो
1: आपका चेहरा कहता।
0: आए हाय हाय।
1: चांद को चांद न कहता आपको आपका चेहरा कहता।
0: अरे क्या बात है सर क्या बात है। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत पंखे ने तो ना कहीं कॉल मिला दी पंखे की आवाज ही आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। सिर्फ पंखे की आवाज आ रही है। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
2: अनिला फ्रॉम लाहौर।
0: बहुत शुक्रिया जी। काफी ज्यादा लोग आपके हवाले से पूछते हैं और मैं खुद भी चाहता हूँ कि आपकी कॉल मिले। क्या सुनाएंगे? और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर जल्दी में आप वो भी सुना सके ना, वो जाना वाली, वो खिड़की वाली हमारी
2: वाली जाना मलिक।
0: जाना मलिक पहले जो आज आपने सोच रखा है वो सुना दें, और अगर आपको अब टाइम है मूड है तो वो भी हमें सुना दीजिए।
2: इतनी सारी चीजें थी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सी सुनूं। बहरहाल बारी बारी आती रहेगी बारी सबकी। और अभी जो शहजाद भाई हमारी रौनक होते हैं जी, शाहिद भाई और मलक इश्तियाक, रिमशा शाहिद भाई, इन सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं। अगर मैं किसी का नाम भी आतिफ भाई, ये बड़ा प्यारा भाई है हमारा आतिफ अब्बासी, अल्लाह सलामत रखे इन सबको। अच्छा रिदम सर थोड़ा सा गुनगुना के भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं कैसे लफ्ज में पढ़ लूँ?
0: आपको ना जो अच्छा अंदाज लगता है आप उसमें करें।
2: ठीक है। नजीर भाई को भी मेरी शायरी पसंद आती है, उनका शुक्रिया याद रखते हैं।

बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे परिंदों के परों पर नज़्म लिख कर दूं।

0: थे जो हमसे दूर थे, लेकिन हमारी साथ रहते थे।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: इसको मैं इतना ही कहूंगी ये मैं गुनगुनाना चाहती थी, और टेस्ट लफ्ज में मैं ये कहूंगी कि नए दिन की मुसाफिर जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे हमें माथे पे बोसा दो, हमें जुगनुओं के तितलियों के देश जाना है।
1: अरे क्या बात।
0: हमें जुगनुओं की तितलियों की मैं भूल गया
1: कोई बात नहीं,
0: रोशनी के जुगनू रंगों की तितलियां आवाज देती हैं, हमें माथे पे बोसा दो, नए दिन की मुसाफत जब किरण रंगों में डूबी हवा के साथ आंगन में उतरती है, खिड़की से बुलाती है, हमें माथे पे बोसा दो,
1: बोसा दो,
0: हमें माथे पे बोसा दो। ये नैया रानू ने बड़ी खूबसूरत गाई है,
1: बिल्कुल ऐसे ही कमाल की। अच्छा आपके पास वो इजी एक्सेस है वो जाना मलिक वाली या नेक्स्ट?
0: जी, जी जी जी जी जी जी। तेज हवा के झोंके सब भर टकराते हैं पेड़ों से, कितने पत्ते आंसू बनकर गिर जाते हैं इन शाखों से,
1: इन शाखों से
0: किरने खिड़की तक आती है टूटे ख्वाब उठाने को, कितने बिस्तर तक आती हैं टूटे ख्वाब
1: उठाने
0: अंदर के दुख कब छुपते हैं इन खिड़की के पर्दों से अलमारी के एक खाने में याद किसी की रखी है और उसकी चाबी लटका दी है आती जाती सांसों से जाने वाले जैसे जाते हैं वैसे कब आते हैं जाने वाले जैसे जाते हैं वैसे कब आते हैं, आंखें वीरा हो जाती हैं बातें करती रस्तों से।
1: क्या बात है।
0: क्या
1: बात है, बहुत शुक्रिया इना आपका आपने लाहौर से कॉल की।
0: बहुत शुक्रिया, और कहना ये चाहूंगी कि जो भी आते हैं अच्छा संदेश लाते हैं सबके लिए बहुत सी दुआएं, और आपके लिए भी आप बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सजाते हैं, इसी बहाने हम सबकी मुलाकात हो जाती है। और शायद भाई भी अपने तौर पर बड़ा अच्छा करते हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। कुछ कहना था लेकिन मैं भूल गई हूँ अब। थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का।

0: मम्मा पापा को कहना चाहिए कि ये पसंद करके दे और कल को कोई मसला हो तो इनको ही सारी टेंशन हो, हम टेंशन फ्री हो, क्योंकि मेरे से नहीं इतनी टेंशन वेंशन ली जाती।
1: ठीक हो गया,
0: तो हाँ ना,
1: बहुत शुक्रिया।
0: मुझे ये बात करनी थी, पर गेम खेलनी थी आपके साथ।
1: चले विस्मा, गेम हम नेक्स्ट टाइम खेलेंगे, चूंकि इस टाइम ना वो प्रॉपर सेगमेंट डिजाइन है, चूंकि आपने कहा कि कॉल नहीं मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।
0: एक मेरी बात सुने, आप जो गाने लगाते हो ना, जो आप कहते हो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, वो अक्सर मुझे भी बहुत पसंद होता है, वो आपके पसंदीदा गाने मेरे भी पसंदीदा गाने, वो सुन सुन के ना मैं मतलब आप भी मेरे फेवरेट हो गए, मतलब गाने हमारे बहुत सेट होते हैं जो पसंद के होते हैं, मेरी भी पसंद के होते हैं और आपके भी होते हैं। दूसरा लास्ट में मैं ये कहूंगी कि आज जीशान दुरानी को मैं सलाम कहूंगी और उनको ही अल्लाह हाफिज कहूंगी।
1: ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कॉल, माजरत उन दोस्तों से जो इस सेगमेंट में सिर्फ कॉल करना चाहते हैं, हाथ जुड़े ने मेरे, प्लीज मेरे नाराज ना होए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैडम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
2: लाहौर से इरम बात कर रही
1: है। इरम क्या सुनाएंगे आप, सुनाए जी? नज़्म है,
2: सर पे जाती में है, और सबसे पहले सब सुनने वालों को सलाम, अनिल अभी को स्पेशली, और बहुत अच्छी शायरी वो पढ़ती है,
1: कोई शक नहीं इसमें,
2: और पंजाबी में है भाई
1: जी, जो कोई मसला नहीं, पंजाबी सुनाए अच्छा लग।
2: बड़ा इश्क इश्क तू करदा है, कदे इश्क दा गुंजर खोल दे सही, बड़ा इश्क इश्क तू करता है, कदे इश्क दा गुंजल खोल तसी, तेन मिट्टी विच ना रोल दे, कदे दो प्यार दे बोल बोल तसी, तुक कट के दर्द हजार मिलन, कदे इश्क नु तकड़ी तोल तसी, तेरी हस दी अख भी पिग जावे, कदे सानू अंदरों खोल तसी,
1: खोल तसी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात।
2: पर सर एक ओ पिछली बात जो रह गई थी,
1: बीच वाली बात रह गई थी,
2: जो पिछली बार
1: पोएट्री रह गई थी
2: वो
1: कॉल
2: डॉग होगी, महलो में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं,
1: हम भी नहीं,
2: और प्यार करके कहती हो कि शादी शुदा हूँ। कान खोल कर सुन लो, कवारे हम भी नहीं।
1: ये मुझे कहता है, चले बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, आखिरी वाला वैसे सबसे सही था। चलें जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, आखिरी दो से तीन कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम।
1: अरे क्या बात है, आप कहीं इंतजार था दुरानी साहब।
3: काफी देर से कॉल मिला रहा था, मिल नहीं, अपने नंबर पे कॉल नहीं मिली, देखो जरा।
1: सर क्या सुनाएंगे जीशान साहब?
3: यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला।
1: क्या बात,
3: यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला।
1: क्या बात है जी, क्या बात है जीशान साहब, छा गए आप जी, हमारे ड्यूटी ऑफिसर है माशाल्लाह, और आरजे भी हैं, और बहुत प्यारे इनकी आवाज है। जीशान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, कौन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनाएंगे? अस्सलाम ओ जी डिस्टॉर्शन, अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम अस्सलाम।
1: प्यारे दोस्त अपना प्यारा सा नाम बता दें।
4: समीर राजपूत बात कर रहा हूँ, गजनसर भाई मीरपुर से।
1: मीरपुर से समीर भाई, एक तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारी आवाज दी है, आपकी आवाज की मैं तारीफ करूंगा, और क्या सुनाएंगे आप?
4: थैंक यू सो मच गजनसर भाई, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, उस रब की देन है,
1: बिल्कुल।
4: थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगी वॉइस, और एक पोइट्री है वो सुनाऊंगा।
1: जी जी जरूर सुनाएं।
4: बोलना मेरी आदत नहीं, या दास चली जाए तो अलग बात है। बोलना मेरी आदत नहीं, या दास चली जाए तो अलग बात है, और सांसों में आती है तुम्हारी याद, अरे मेरी सांसों में आती है तुम्हारी याद, अगर सांसें चली जाएं तो अलग बात,
1: अलग बात है।
4: और वफा करना मेरी आदत है, वफा करना मेरी आदत है, अगर मौत आ जाए तो अलग बात,
1: अलग बात।
4: और अपनों को ना याद करना मेरी फितरत में नहीं, और अपनों को ना याद करना मेरी फितरत में नहीं, अगर अपने ही अजनबी हो जाएं तो अलग बात है,
1: अलग बात।
4: अगर अपने ही अजनबी हो जाएं तो अलग बात,
1: अलग बात। क्या बात है, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गजन भाई, माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है, काफी टाइम बाद सुना आपको,
1: जजाक अल्लाह दोस्त, बहुत अच्छा लगा,
4: बहुत अच्छा लगा। और इरफान सुन रहे हैं उन्हें सलाम, और ज्ञानी साहब सुन रहे हैं उन्हें मेरा सलाम,
1: जजाक सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट और लास्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
5: अस्सलाम वालेकुम ज्ञानी साहब।
1: वालेकुम सलाम सर।
5: मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से।
1: इमरान भाई शेखुपुरा से आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या सुनाएंगे सर?
5: मैं सुनाऊंगा जनाब एक शेर आपकी नजर करता हूँ
1: सर, जजाकल्ला करें सर।
5: मैं मरीज़े इश्क हूँ, मेरा इलाज तबीबों के बस में नहीं,
1: नहीं।
5: दवा में मेरे लिए दीदार यार ले आओ।
1: क्या बात है,
5: आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है,
1: बहुत शुक्रिया
5: है। और जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं,
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
5: और फर्स्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है।
1: अरे क्या बात है सर, कॉल करते रहा करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है ना कि फर्स्ट टाइम कॉल की है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है
5: जी। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह तमाम सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम
5: सलाम, आपके लिए ढेरों दुआएं,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल, थैंक यू सो मच जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। 2:15 हुआ चाहते हैं और अब इजाजत का वक्त है दोस्तों। सब धागे उसी के हाथ में है जो मालिक कुल जहां का है।

प्रोग्राम के हवाले से दोस्तों आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें। मेरा पहले इस तरह हुआ करता था कि मैं एक ही टॉपिक हम लोग लेकर आते थे जिस पे हम आपसे 4471 पे फेसबुक पे लाइव कॉल्स पे उस पर गपशप करते थे, लेकिन दरमियान में मैंने सोचा चूँकि डिफरेंट टेम्परामेंट के डिफरेंट एज के लोग हमें सुनते हैं तो मेरी ये कोशिश है कि हम सबको एंटरटेन कर सकें। और मेरी आदत है कि एक तो ये कि ना मैं किसी की कॉल ड्रॉप करता हूँ, ना ही हम किसी को बोलते हुए उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी हवाले से वो हम डिस्कनेक्ट नहीं करते। बस मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि अल्फाज का इस्तेमाल आप वो करें जो आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन के सामने वो अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। अदरवाइज़ बहुत अच्छा लगता है रात के इस पहर, ये रात का ऑलमोस्ट आखिरी पहर शुरू हो चुका है, और मैं हमेशा आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा इसलिए अदा करता हूँ कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आप रेडियो सुन के फीडबैक देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और खून में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। और यहाँ आने का जो मकसद है, आप यकीन जानिए कोई एक बंदा भी अगर इस प्रोग्राम से सेटिस्फाई हो जाए और तो बहुत अच्छा लगता है। ये आने जाने का जो फटीक कह लें, ये मेरा खुद रेडियो पैशन है, ख़ासकर ये जो प्रोग्राम है ये पूरे वीक की थेरेपी हो जाती है मेरे लिए। मेरा थर्सडे एंड फ्राइडे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है, लेकिन स्पोर्ट्स भी मेरा पैशन है, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश महसूस करता हूँ जब ये प्रोग्राम अच्छा होता है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिनकी कॉल हम शामिल नहीं कर सके, आपसे माजरत। ये सेगमेंट हमारा शॉर्ट है चूँकि 1:45 से 2:15 तक हम इसको लेकर चलते हैं शायरी के हवाले से, और इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें मिलती है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम दोस्तों के लहजे बहुत खूबसूरत हैं, कलाम बहुत अच्छा आप लेकर आते हैं। और आज सबसे मज़े की चीज़ ये भी थी कि क्या सुनाएंगे, मैंने कहा जी जो कहेंगे वो सुना देंगे, तो बहुत शुक्रिया आपका। जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात कि एक तो ये आपसे माजरत, मेरी किसी भी बात में से अगर आप में से किसी भी दोस्त की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसके आपसे माजरत चाहता हूँ। ज़िंदगी में कोशिश ये किया करें कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे, अपने असाज़ा इकराम का हमेशा एहतराम करें, वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात हम सबको इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करे, आमीन। ज़िंदगी शर्त है दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक प्रोग्राम हाउस एट में, और एक ख़ास दुआ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह की ज़ात अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

This is FM 101.

0: कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी।
1: दिस इज एफएम 101.1।